सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। आज की सुबह की सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आज सुबह की सभा में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। दोपहर 12 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो उसके पहले लीजिए हम आपको बताए देते हैं कि आज सुबह की सभा में आप रेडियो आजाद हिंद से कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से सुनिएगा ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से लीजिएगा आनंद भक्ति संगीत का आपकी अपनी पूर्वा के साथ। 8:00 का वक्त होता है हमारे कार्यक्रम वतन का राग का। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, जिनकी आज जयंती भी है। 8:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में आप जानेंगे मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला के बारे में। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा सक्सेना से चर्चा की है संदीप शर्मा ने। सुबह 9:00 का वक्त होगा कार्यक्रम टेक गुरु का। आज इस कार्यक्रम में विषय है दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। 9:30 हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा कार्यक्रम भारत विभूति। आज की भारत विभूति है के शंकर पिल्लई। 10:00 नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आएगा कार्यक्रम परिक्रमा। और क्रमशः पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट, जिसमें आप सुनेंगे जश्न आजादी का मुशायरा। सुबह 10:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन। आज काव्य गुंजन में आप सुनेंगे दिनकर जी की रश्मि रथी का भाग 10। दिन में 11:00 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज के हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दिन में 11:30 सुनिए हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। आइए सुनते हैं जीवन सौरभ।

0: जीवन सौरभ।
1: पुराने समय में एक जौहरी की मृत्यु हो गई। उसके परिवार में पत्नी और उनका एक बेटा था। जौहरी के मृत्यु के बाद उनके परिवार में पैसों की कमी आ गई। एक दिन माँ ने बेटे को हीरो का हार दिया और कहा कि इसे अपने चाचा की दुकान पर बेच दो, इससे जो पैसा मिलेगा वो हमारे काम आएगा। लड़का तुरंत ही हार लेकर अपनी चाचा की दुकान पर पहुंच गया। चाचा ने हार देखकर कहा कि बेटा अभी बाजार मंदा चल रहा है, इस हार को बाद में बेचना। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो अभी मुझसे ले लो, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम भी कर सकते हो। लड़के ने चाचा की बात मान ली और अगले दिन से लड़का अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगा। समय के साथ वो लड़का भी हीरो की अच्छी परख करने लगा। वो असली और नकली हीरो की तुरंत ही पहचान कर लेता। एक दिन उसके चाचा ने कहा कि अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, तुम अपना हीरो का हार बेच सकते हो। लड़का अपनी माँ से वो हार लेकर दुकान आ गया और चाचा को दे दिया। लड़के से उसके चाचा ने कहा, अब तो तुम खुद भी हीरो की परख कर लेते हो, इस हार को देखकर इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हो, इसीलिए तुम खुद इस हार की परख करो। लड़के ने हार को ध्यान से देखा तो उसे मालूम हुआ कि हार में लगे हीरे नकली हैं और उनकी कोई कीमत नहीं है। लड़के ने पूरी बात अपने चाचा को बताई तो चाचा ने कहा, मैं तो शुरू से ही जानता हूँ कि ये हीरे नकली है, लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें ये बात कहता तो तुम मुझे ही गलत समझते। तुम्हें यही लगता कि मैं ये हार हड़पना चाहता हूँ, इसीलिए इसे नकली बता रहा हूँ। तुम्हें उस समय हीरो का कोई ज्ञान नहीं था। बुरे समय में अज्ञान की वजह से हम अक्सर दूसरों को गलत समझते हैं। उस समय मैं ये बात तुम्हें बता देता तो तुम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते थे, इससे हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते थे, इसीलिए विपरीत समय में धैर्य से काम लेना चाहिए।
0: जीवन सौरभ।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पहले सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव, शौनक। देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
3: त्वमग्ने द्युभिस्त्व माशु शुक्षणिस्त्व मद्भ्यस्त्व मश्मनस्परि त्वं वनेभ्यस्त्व मोषधि भ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः। हे मनुष्यों के स्वामी अग्निदेव, आप द्युलोक से प्रकट होकर शीघ्र प्रकाशित होने वाले तथा पवित्र हैं। आप जल से, पाषाण घर्षण से, वनों से, औषधियों से उत्पन्न होने वाले हैं। तवाग्ने होत्रम तव पोत्र मृत्युयम् तव नेष्टम त्वमग्नि धृतायतः तव प्रशास्रम त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे। हे अग्ने, ऋत्विजों में आप ही होता, पोता, नेष्टा, आग्निध्र हैं। आप ही यज्ञ की कामना करने वाले, प्रशास्ता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा हैं। यज्ञकर्ता गृहपति भी आप ही हैं। त्वमग्न इंद्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु रुरुगायो नमस्यः त्वं ब्रह्मा रैविद ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरंध्या। हे अग्निदेव, आप सज्जनों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्र हैं। आप ही सबके स्तुत्य सर्वव्यापी विष्णु हैं। हे ज्ञान संपन्न अग्निदेव, आप उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा हैं। विविध प्रकार की बुद्धि को धारण करने के कारण आप मेधावी हैं। त्वमग्ने राजा वरुणो घृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देव भाजयुः। हे अग्निदेव, आप व्रतों को धारण करने वाले राजा वरुण हैं। दुष्ट नाशक तथा सबके स्तुत्य मित्र देवता हैं। सर्वव्यापी आप दान देने वाले सज्जनों के पालक अर्यमा हैं। आप ही सूर्य हैं, अतः हे अग्निदेव, दिव्य गुणों से युक्त अभीष्ट फल हमें प्रदान करें। त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यम् तवग्नावो मित्र महः सजात्यम् त्वमाशु हेमा ररिषे स्वश्व्यम् त्वं नराम् शर्धो असि पुरुवसुः। हे अग्निदेव, साधकों के लिए आप श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करने वाले त्वष्टा देव हैं। सभी स्तुतियां आपके लिए हैं। आप हमारे मित्र और सजातीय बंधु हैं। आप शीघ्र ही उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों को आश्रय प्रदान करने वाले महान बलि हैं। त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं प्रिक्ष ईशिषे त्वं वातैररुणैर्यासि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नुत्मना। हे अग्निदेव, आप दिवलोक के प्राणदाता रुद्र हैं। आप अन्नाधिपति तथा मरुतों के बल हैं। आप वायु के समान द्रुतगामी अश्व पर आरूढ़ होकर कल्याण की कामना वाले ग्रह स्वामी के यहाँ जाते हैं। आप पोषणकर्ता पूषा देव हैं, अतः आप स्वयं ही मनुष्यों की रक्षा करते हैं। त्वमग्ने द्रविडोदा अरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत्। हे अग्निदेव, प्रज्वलित करने वाले को आप धन प्रदान करते हैं। आप रत्नों के धारणकर्ता सविता देव हैं। हे प्रजापालक अग्निदेव, आप ही धनाधिपति भगदेव हैं, जो अपने घर में आपको प्रज्वलित रखता है, उसकी आप रक्षा करें। त्वामग्ने दम आ विष्पतिम विषस्त त्वाम राजानम सुविदत्र मृंजते त्वम विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वम सहस्राणि शता दश प्रति। हे प्रजापालक अग्निदेव, प्रजा अपने घरों में प्रकाशमान तथा ज्ञानयुक्त अग्नि के रूप में आपको प्राप्त करती है। हे सुंदर ज्वालाओं से युक्त अग्निदेव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं तथा लाखों फल प्रदान करने वाले हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पहले सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूं श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

श्रोताओं, देखा जाए तो ये जीवन एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी छेद कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे ये जीवन

जीवन में कभी उन चीजों के बारे में यदि हम ना सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि हम उन अनगिनत चीजों को देखकर खुश हो जाएं जो बिना प्रार्थना के बाद भी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो फिर देखिए ये जीवन हमें कितना सुखद और खुशहाल लगेगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, इस जीवन की सांसें हम सभी के लिए निश्चित गिनती की हैं। सुबह होती है और शाम में ढल जाती है, रात आती है तो साथ में लाती है एक नई सुबह। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता चला जाता है हम जान ही नहीं पाते, और जीवन जीवन यूं ही बीतता जाता है। तो कुछ समय परोपकार और आध्यात्म के लिए भी निकालें, ताकि जीवन बीतने पर पछतावा ना हो।

जीवन में थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन होता है तो वो बड़ा ही हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। परिवर्तन जितना कष्टकारी होता है उतना ही आवश्यक भी होता है। यदि हम अपनी योग्यता को परखना चाहते हैं तो ये परिवर्तन ही इसका अवसर देता है और साथ ही साथ और अधिक विकसित होने का हमें मौका भी प्रदान करता है। तो परिवर्तन से घबराई नहीं बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक अवसर मानें।

वैसे यदि इच्छाओं की गिनती करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे मन में इच्छाएं तो अनंत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। मगर जब ध्यान से सोचें तो हम पाएंगे कि हमारे लिए दो ही चीजें बहुत आवश्यक है, और वो है एक तो स्वस्थ शरीर और दूसरा उस स्वस्थ शरीर में

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखे, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की अवधारणा में केवल उसकी भौगोलिक संरचना ही शामिल नहीं होती, एक देश अपने इतिहास, भूगोल, साहित्य, समाज और संस्कृति में अपार विस्तार लिए होता है और साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे महान साहित्यकार की, जिन्होंने साहित्य की निबंध, आलोचना और उपन्यास जैसी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। आधुनिक हिंदी साहित्य के वो प्रकांड विद्वान, मौलिक निबंधकार और उत्कृष्ट समालोचक थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, किंतु हिंदी साहित्य जगत में वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने सन 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। सन 1923 में पढ़ाई के लिए वो काशी आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाईस्कूल की परीक्षा पास की। इसी बीच उनका विवाह भगवती देवी के साथ संपन्न हुआ। सन 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ ही सन 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। शास्त्री और आचार्य दोनों ही परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की थीं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शांति निकेतन कोलकाता चले गए और शांति निकेतन में हिंदी अध्यापन का कार्य आरंभ किया। यहीं उन्हें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन सेन का सानिध्य मिला। शांति निकेतन के अलौकिक वातावरण और गुरुदेव के भीतर उपस्थित साहित्यिक और कलात्मक निधि ने उन्हें बहुत गहरे तक प्रभावित किया।

शांति निकेतन में रहते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का गहन अध्ययन किया। यहीं से उन्होंने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन की साहित्यिक ऊर्जा ने उन्हें लेखन हेतु प्रेरित किया और शांति निकेतन के खुले वातावरण में उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा और कबीर जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान वो सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक भी रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन कार्य करने के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1950 में बनारस वापस आ गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1952 में उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था रही है। सन 1955 में उन्हें प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ वर्षों तक इस पद पर कार्य करने के बाद उन्होंने सन 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद सन 1968 से वो पुनः बनारस आ गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। यहां से सेवानिवृत्त होने के बाद वो देश की हिंदी विषयक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में भी वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में सेवाएं दे रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में साहित्य सृजन किया, जिनमें मुख्य रूप से निबंध, आलोचनाएं और उपन्यास शामिल हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विष के दांत, कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। उनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा उनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा उनकी अनेक संपादित और अनूदित रचनाएं भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान साधक थे, जो अपनी सृजन यात्रा पर अनथक चलते रहे।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें विशेष ज्ञान था। उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया। हिंदी निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथों के लेखन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वो हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के निबंधकार और उत्कृष्ट आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास आदि पर जो विद्वत्तापूर्ण रचनाएं लिखी हैं, वो हिंदी में पहले नहीं लिखी गईं। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी सभी कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी पहली रचना है जिसका प्रकाशन 1930 के दशक में हुआ था। इस रचना के प्रथम दो अध्याय राधा कृष्ण का विकास, स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप निश्चित रूप से सूचना प्रधान और शोधपरक है। हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रकाशन के साथ द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य जगत में व्यापक स्वीकृति मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते थे। उन्होंने चार प्रमुख बातों पर बल दिया। पहला, हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से संबद्ध करके देखा जाए। दूसरा, हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंतन धारा को भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। तीसरा, हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन, बौद्ध, अपभ्रंश साहित्य, कश्मीर के शैव और दक्षिण तथा पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण और लौकिक कथा साहित्य, ये सब कुछ देखा परखा जाए। और चौथा, साहित्य के इतिहास को जन चेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित किया जाए। इस तरह एक बहुत विस्तृत दृष्टि उनके पास थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर जब प्रकाशित हुई, तब उनका समीक्षक रूप उभर कर सामने आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि कबीर ने जाति पाति का विरोध, निर्गुण साधना परंपरा, योग परक उलटबासियां, ये सब कुछ अपने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया था, क्योंकि जाति भेद, ऊंच नीच तथा कर्मकांड पर प्रहार की पुरानी परंपरा भारत में रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में हिंदी के आरंभिक साहित्य संबंधी उलझनों का समाधान प्रस्तुत किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने और परखने का आग्रह करते हैं। सामाजिकता का ये आग्रह ही उन्हें मानवतावादी बनाता है। साहित्य जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। वो जब तक जीवित रहे, हिंदी की सेवा करते रहे। 19 मई 1979 को उन्होंने अंतिम सांस ली। कबीरदास आजीवन उनके आदर्श रहे और वो फक्कड़पन हमेशा उनके व्यक्तित्व और जीवन में बना रहा। नमन ऐसी महान साहित्य विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
1: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रस्तुतकर्ता यानी कि मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। और इतिहास के पन्नों से में हम पिछले अपनी दो कड़ियों में सुन रहे हैं मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि मध्य भारत वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में 16वीं सदी में गोंड राजा संग्राम शाह का राज्य था। उनके कुल 52 गढ़ थे। राजा संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह ने गोंड राज्य गढ़ा की राजगद्दी संभाली, लेकिन 1550 ईस्वी में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा वीर नारायण लगभग 4-5 वर्ष का बालक था। दलपत शाह की रानी दुर्गावती ने राजकुमार वीर नारायण को गढ़ा के गोंड राज्य का अगला शासक घोषित किया और मंत्री आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर स्वयं उनके संरक्षक बनी। 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष उन्होंने गढ़ा के गोंड राज्य पर सफलतापूर्वक राज्य किया। सबसे पहला उनका युद्ध हुआ मियाना अफगानों से। उन्हें उन्होंने पराजित किया और इन लड़ाकों को अपनी ही सेना में भर्ती भी किया। इसके उपरांत मुख्य रूप से उनका युद्ध मांडू के सुल्तान बाज बहादुर से हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती ने अनेक बार बाज बहादुर को शिकस्त दी। और इसके आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ फिर एक बार स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: पूजा जी, रानी दुर्गावती जी जिन्होंने 1550 ईस्वी यानी 473 वर्ष पहले इतिहास रचा था, एक ऐसी रानी, एक ऐसी शासिका जो आज भी 500 वर्ष बाद लोक स्मृति में है, वो निश्चित ही अत्यधिक लोकप्रिय रही होंगी तब भी। तो रानी की लोकप्रियता के क्या मुख्य कारण है?
2: आपने बिल्कुल सही कहा, हजारों साल के इस लंबे इतिहास में न जाने कितने ही शासक हुए होंगे
1: जी।
2: लेकिन लोग उसे ही याद करता है जिसने लोगों के लिए काम हुआ, बाकी को तो भूल जाता है। उसके कामों से लोगों के जीवन में यदि सकारात्मक प्रभाव हुए हों तो वो उसे अपने दिल में बसा के रखता है। उसकी कहानियों में, किस्सों में, आख्यानों में वो राजा या रानी बार बार दोहराए जाते हैं
1: जी।
2: गोंड रानी दुर्गावती भी ऐसी ही एक रानी थी जिन्हें 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका है। आज भी वह महाकौशल के अनेक आख्यानों में गाई जाती हैं। गांव-गांव में लोग उनके आख्यान गाते हैं, उनकी वीरता के किस्से, उनके लोक निर्माण के जो कहानी किस्से हैं वो गाते हैं। उनकी अनेक कहानियां और किस्से हैं, उन्हें लोग बहुत सम्मान के साथ आज भी याद करते हैं
1: जी। पूजा जी, जैसे आपने कहा कि लोग उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, तो ऐसे अनेक उन्होंने काम किए। जैसे आपने पिछली बार बताया कि उन्होंने जो गढ़ा का किला था वो इतना अभेद्य बनाया था कि बड़े से बड़े आक्रमणकारी भी वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। इसके अलावा एक और उनकी कला थी पानी से संबंधित, उन्होंने बहुत सारे तालाब बनाए। यहाँ तक कि उनकी जो विरासत को जिन्होंने संभाला, उनकी दासियों तक का ये आता है कि रानी दुर्गावती की जो दासियां थी, तो कहते हैं कि जबलपुर में कुल 56 ताल थे।
2: बिल्कुल सही, रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर जो उनकी राजधानी था, गढ़ामंडला में जो मदन महल की हम बात करते हैं वो तो जबलपुर में ही है। तो मुख्य केंद्र तो हमेशा गोंड राजाओं का वही रहा। हाँ, हालांकि राजधानियां उनकी लगातार बदलती चली गईं। रानी दुर्गावती के समय में भी राजधानी चौरागढ़ रही, पर गढ़ामंडला यानी कि मदन महल उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो जबलपुर में ही कहते हैं कि उनके बनाए हुए 56 तालाब थे
1: जी।
2: कुछ आज भी हैं और कुछ पूर गए समय के साथ में, लेकिन अब जहां तालाब नहीं भी हैं उन जगहों पर बस्तियां बस गई और आज भी वो तालाब के नाम से ही जानी जाती हैं,
1: जैसे कि आधार ताल।
2: हाँ, आधार ताल
1: जी।
2: इस तरीके के अनेक नाम जबलपुर में मिलेंगे। तो जहां कहीं भी पानी का स्रोत होता, भरपूर पानी होता, वहां संस्कृति पनपती ही है
1: जी। हाँ,
2: तालाब बनने का अर्थ से केवल इतना नहीं होता कि तालाब बन गया और पानी की आपूर्ति हो गई
1: जी।
2: आप अगर ध्यान से देखें तो जहां पानी का स्रोत होता है वहां संस्कृति और सभ्यता पनपती है।
1: बिल्कुल,
2: गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, उद्योग धंधे पनपते हैं, धन संपदा बढ़ती है और कला और शिक्षा का भी विकास होता है।
1: लेकिन पूजा जी, ये भी तो एक कला ही हुई ना कि कहाँ पानी निकलेगा ये मालूम होना, तो ज्ञान की बात हुई। तो ये कौशल, ये प्रबंधन किस तरह था उनके पास?
2: बिल्कुल सही। गोंड जनजाति या अन्य जनजातियों, क्योंकि वनों वन क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती हैं
1: जी,
2: और परंपरागत रूप से उन्हें इस ज्ञान और विज्ञान, मैं तो इसे विज्ञान भी कहूंगी, इसकी बहुत अच्छी जानकारी है कि वह यह जान लेते हैं कि भूमिगत जल कहाँ मिलेगा। हर कहीं आप तालाब नहीं बना सकते, जहां जल होगा वहीं ना बनाएंगे। तो वे इस परंपरागत ज्ञान को जानते हैं, चलते फिरते वनस्पतियों पेड़ पौधों को देखकर बता सकते हैं कि कहां से पानी की भूमिगत शिराएं हैं, तो तालाब या जल स्रोत कहां खोदना चाहिए
1: जी।
2: ये उनका ज्ञान सदियों हजारों वर्षों से हमारे बीच में है। इसलिए आप मध्य भारत में जहां कहीं भी तालाबों के किस्से कहानी सुनेंगे, तो उसमें कोई ना कोई कहानी किस्सा ऐसा होगा जिसमें कि किसी गोंड का योगदान आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आम बात रही कि हमने देखा है कि जो प्राचीन जो शास्त्र हमें मिलते हैं
1: जी,
2: उसमें एक दकारगल विद्या का वर्णन आता है। दकारगल विद्या उसे कहते हैं जिसमें पानी, भूमिगत पानी के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। तो ऐसे हमें उल्लेख भी मिला है, और उन उल्लेखों को पढ़कर भी हमें ये समझ में आता है कि हजारों साल से ये विद्या इनके बीच में थी। हम ये भी शास्त्रों से जानते हैं कि हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान में ये भी शामिल था कि आप कहाँ तालाब बनाएं, यानी कौन सी भूमि ऐसी है जो पानी को रोक सकेगी वर्ष भर
1: जी।
2: नहीं तो तालाब सूख जाएगा या भूमि उसको सोख लेगी पानी को। तो उसकी कई सारी विधियां हमको मिलती हैं जो आज भी गोंड जनजाति प्रयोग में लाती है।
1: अच्छा।
2: जैसे मैंने कुछ देखा प्रैक्टिकली भी गोंड जनजाति के बीच में जब काम किया, और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा कि मान लीजिए कि आपको पता करना है कि ये भूमि तालाब बनाने के लिए अच्छी है या नहीं। तो मैंने देखा कि जैसे आप एक पर्टिकुलर साइज का एक छोटा सा गड्ढा करना है, और आपको वहां खड़े होकर एक तीर आसमान की तरफ फेंकना है।
1: अच्छा।
2: हाँ, और जब वो तीर नीचे आएगा, उस बीच में उस गड्ढे में कितना पानी कम हुआ, यानी कुछ एमएम में भी होगा, एमएम में ही हो पाएगा, पर उसको निशान लगाना है आपको। उससे पता चल जाता है कि ये भूमि पानी को रोक पाएगी कि नहीं। इसी तरीके से मैंने एक और देखा था जब मैं जनजातियों के बीच में काम कर रही थी कि आपने एक गड्ढा खोदा जहां पे आपको तालाब की संभावना है कि यहाँ तालाब बनाना चाहिए, और उसमें पानी भर दिया मैन्युअली, है ना, खुद पानी भर दिया, और फिर आपको 100 कदम जाना है और 100 ही कदम लौट के आना है। अगर इस बीच में पानी वो सोख लेता है या फिर पानी का स्तर काफी नीचे हो जाता है, तो फिर उस जगह तालाब नहीं बनाएंगे
1: जी।
2: हाँ, तो ये सारी विद्याएं भी जो परंपरागत रूप से सीखी गई थी वो आज तक परंपरा में है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि कुछ कम हो रही है और हमें उसे संभालना है,
1: हमें उन्हें संभालना होगा, उनसे सीखना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को देना होगा। निश्चित रूप से संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओ, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, और पूजा जी ने कितनी अच्छी जानकारी बताई। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में है कि दकारकल विद्या, इस विद्या का नाम, इस विज्ञान का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं ने भी, ज्यादातर लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा कि भूमिगत जल के बारे में ये जो जानकारी दी आपने, आगे भी हम इस बारे में कुछ और आपसे जानना चाहेंगे।
2: जी हाँ, हमने पिछले बार जब चर्चा की थी राजा संग्राम शाह की
1: जी,
2: तो संग्राम शाह ने संग्राम सागर बनवाया था, और उसी के पास में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, टेकरी के ऊपर बाजना मठ भी बनवाया था।
1: अच्छा।
2: तो रानी दुर्गावती उनकी वंशज है, और उन्होंने संग्राम शाह के काम को आगे बढ़ाया। तो रानी दुर्गावती ने भी बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया, और खास बात यह रही कि उन तालाबों के आसपास मठ मंदिर भी बनवाए
1: जी।
2: तो अगर हम जबलपुर में ही देखें तो एक बहुत लंबी सूची है तालाबों की। जैसे नाम आते हैं रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल, मड़ा ताल, गंगा सागर, फूटा ताल, भंवर ताल, सूपा ताल, गलवा ताल, ऐसे बहुत से नाम है, और इस यही सूची खत्म नहीं होती, आगे भी है बहुत सारे ताल तलैया, जो छोटी तलैया है ना। तो जैसे भान ताल, श्रीनाथ जी की तलैया, हाथी ताल, महानंदी ताल, और भी आगे कोला ताल, बघा ताल, उगरी ताल, कदम तलैया, भान तलैया, तिलक भूमि, बैनी सिंह की तलैया, लोको तलैया, ककरैया और जुड़ी तलैया, इतने अभी तो सूची खत्म नहीं हुई है, पर ये कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है जो

0: हम जबलपुर में पाते हैं एक आधार ताल
1: जी।
0: तो जैसा आपने कहा कि उनके मंत्री का नाम था आधार कायस्थ, तो उन्होंने भी एक तालाब बनवाया, और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था, बहुत बड़ा तालाब था। आधार तालाब बनाने के बाद उन्होंने उसके पास एक पचमठा मंदिर भी बनाया। पचमठा एक अपनी शैली है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे
1: जी।
0: तो ये जो पचमठा मंदिर है या मठ है, इसमें महालक्ष्मी का मंदिर है और इसकी आज भी बड़ी मान्यता है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि अगर आप इस पचमठा मंदिर को देखेंगे तो इसका जो प्लान है या जो भूविन्यास है वो श्री यंत्र पर आधारित है। जैसे हम पेन कागज पे श्री यंत्र बनाते हैं, ऐसा ही पूरा की पूरा मंदिर ही श्री यंत्र पर आधारित है। तो इसके अंदर मंदिर में शिव हैं, हनुमान हैं, ब्रह्मा, सूर्य, लक्ष्मी। तो गोंड काल में इन सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर उत्कीर्ण गई की गई और बहुत खूबसूरत द्वार शाखा है, द्वार शाखा पर युद्ध का चित्र भी अंकित है
1: जी। पूजा जी, ऐसे ही किसी और तालाब के बारे में कोई दिलचस्प कहानी बताइए हमें।
0: जरूर, एक तालाब जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे हमने सुना कि रानी ताल का निर्माण रानी दुर्गावती ने करवाया
1: जी,
0: एक बिल्कुल उसके पास में ही एक और तालाब है चेरी ताल
1: जी।
0: तो चेरी का अर्थ है दासी,
1: अच्छा,
0: यानी कि रानी की दासी
1: है ना।
0: तो एक कहानी आती है कि रानी और उनकी जो चेरी थी वो दोनों रानी तालाब का काम होते देखने जाया करती थी
1: जी।
0: तो चेरी के मन में भी आया कि मैं भी एक तालाब बनवाऊं, लेकिन उसके पास तो इतनी धन संपदा थी नहीं। तो उसने क्या किया कि जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनसे ये कहा कि जब भी आप लोग घर वापस जाया करो शाम को, तो ये पास में जो खाली पड़ी जमीन है इसमें से एक पत्थर अपने साथ रोज ले जाया करो
1: जी।
0: तो मजदूरों ने उनकी बात मान ली और वो रोज एक पत्थर अपने साथ, हर एक मजदूर एक पत्थर अपने साथ ले जाने लगा। और धीरे धीरे देखते हैं कि वहां पर तो एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, बारिश आई, पानी भर गया, तो बन गया चेरी ताला। तो यदि किसी में इच्छा है तो काम हो सकता है।
1: क्या बात है, देखिए मिलजुल कर काम किया जाए तो कोई भी काम संभव। और इससे श्रोताओं में एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि आपके पास सिर्फ मन में लगन होनी चाहिए, कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, भले ही कोई सुविधा हो, कोई संसाधन हो या नहीं हो। इतनी अच्छी लोक कथाएं या कथाएं कहें, हम कहानियां कहें, जो इन तालाबों के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं। राजवंशों का जो मध्य भारत के जो राजवंश थे उनके इतिहास से कितनी सुंदर ये कथाएं जुड़ी हुई हैं, और इतने 56 तालाब बनाए। निश्चित रूप से हम 56 तालाबों की बात तो समय अवधि के कारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप संक्षिप्त में कुछ और तालों के बारे में ज़रूर बताएं।
0: गढ़ा के गोंड राज्य में यानी जबलपुर में एक और तालाब है देवताल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गढ़ा के जो तालाब हैं या कहीं पर भी तालाब होते हैं वो तो धार्मिक आस्थाओं के भी बड़े केंद्र होते हैं। तो ऐसा ही एक तालाब है देवताल, जो गोंड काल में विष्णु देवताल के नाम से भी जाना जाता था।
1: अच्छा।
0: और जब 1563 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत गोस्वामी विट्ठल दास जी ब्रज से गढ़ा पधारे, तब वे देवताल के निकट ठहर गए और वो स्थान तो पवित्र मान लिया गया। तो उनके अनुयायियों ने उस स्थान को बैठक जी का नाम दे दिया
1: जी।
0: और इसके उपरांत देवताल के निकट अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और यहाँ राधा बल्लभ संप्रदाय का ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया, और यहाँ पर भी एक पचमठा मंदिर हम देख सकते हैं।
1: क्या बात है। तो देखिए, हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि संस्कारधानी जबलपुर का कोई संबंध ब्रजभूमि से भी हो सकता है।
0: जी हाँ, बड़ा गहरा संबंध रहा है ब्रजभूमि से, हम उसको अगली बार लेंगे
1: जी।
0: लेकिन एक और तालाब है गंगा सागर। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे और दूसरे भी प्रभावित होते हैं। तो रानी दुर्गावती के वंशज बाद में जो शासक हुए गढ़ा के, वो हैं हृदय शाह। तो हृदय शाह ने भी एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम है गंगा सागर। तो यह जबलपुर नगर का एक विशाल तालाब है और आज भी अस्तित्व में है, और इसमें अब तो सिंघाड़े की खेती होती है, तो ये कई लोगों की आजीविका का साधन भी है।
1: तब के लगाए पेड़ देखिए आज भी फल दे रहे हैं।
0: जी हाँ, एक और तालाब है हनुमान ताल
1: जी।
0: तो ये लगभग वर्गाकार आकार का है और इसमें जबलपुर में ये ठाकुरवाड़ी के पास स्थित है। ये तालाब 1794 में बना। यहाँ पर पहले कोई एक छोटा तालाब रहा होगा गढ़ा के गोंड राज्य का
1: जी।
0: लेकिन बाद में जब भोंसलों का शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनाया चौकोर, जिसे हनुमान ताल के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के चारों तरफ सीढ़ियां भी हैं, एक और तालाब है फूटा ताल
1: जी
0: क्योंकि कुछ हिस्सा इसका जो आसपास का किनारा होता है वो फूट गया, तो लोगों ने नाम रख दिया फूटा ताल
1: जी।
0: तो एक जगह है घमापुर, वहाँ पर जब हम सराफा बाजार की तरफ जाते हैं तो फिर ये तालाब पड़ता है, और इस तालाब के आसपास अब तो बड़ी घनी बस्ती बस गई है, लेकिन किसी समय ये पानी की आपूर्ति का बड़ा मुख्य स्रोत रहा होगा। ऐसे ही है एक भंवर ताल नाम का तालाब
1: जी।
0: और यहाँ पर भी ये भी बड़ा काफी गहरा तालाब रहा होगा, अब काफी हिस्सा इसका खत्म सा हो गया है।
1: और अब वहाँ पर एक उद्यान है जो जबलपुर का सबसे खास उद्यान है, जिसे भंवरताल गार्डन कहते हैं, और अक्सर लोग जबलपुर की शामें गुजारने के लिए। तो देखिए रानी ने, रानी के वंशजों ने उस समय जो तालाब बनाए, ताल तलैये बनाए, आज भी कितना सुख दे रहे हैं सबको।
0: ऐसा ही एक और तालाब है सूपा ताल, उसका आकार कुछ सूप की तरह दिखाई देता है, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया सूपा ताल, और अब तो उसके पास भी बड़ी घनी बस्ती बस गई है। एक और बड़ा नाम आपने सुना होगा मढ़ौ ताल
1: जी,
0: है ना, तो मढ़ौ ताल भी जो है बस स्टैंड के पास में है, और यहाँ पर अब तो ये व्यवसायिक केंद्र बन गया है,
1: जिसे आज हम जबलपुर का मुख्य हृदय स्थल भी कह सकते हैं, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं।
0: जी हाँ, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही है गुलौआ ताल भी, और इसके पास में भी अब अभी है तो अस्तित्व में, लेकिन किसी समय ये सारे ही तालाब बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे और व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र रहे होंगे।
1: जी हाँ,
0: एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो पब्लिश्ड है जबलपुर के जो ये गोंडकालीन तालाब हैं इनके ऊपर, और इसमें उन्होंने बड़ा शानदार ये बताया है कि किस तरीके से उस काल में, यानी कि आज से 500 साल पहले जब हमारे पास मशीनें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस समय भी जो उन्होंने लैंडस्केप का की स्टडी की और उन्होंने जो भूमिगत शिराओं का अध्ययन किया, कौन से तालाब का पानी रिस के भूमिगत होते हुए कहाँ किस तालाब में जाएगा
1: जी।
0: कोई भी तालाब सूखा नहीं रहेगा, है ना। ढलान को समझना, कहाँ पर पथरीली जमीन आ रही है, कहाँ पर किस तरीके का पानी का बहाव होगा, ये सब आजकल हम टोपो शीट के थ्रू करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं टोटल स्टेशन जैसी, और या सैटेलाइट इमेज के थ्रू होता है, बहुत विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन उस समय भी उन्होंने उस पूरे आप समझिए कि अंडरग्राउंड सिस्टम को समझा और कहाँ तालाब होगा उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्लेस किया। तो ये पूरा एक विज्ञान है जिसका कि हमको संरक्षण करना चाहिए था,
1: निश्चित रूप से करना चाहिए। आज जब मशीनों और पूरे संसाधनों के साथ हमें मुश्किलें पेश आती हैं, चुनौतियां होती हैं, तो तब तो कितनी सारी रही होंगी। ये सिर्फ उनका कौशल ही था, प्रबंधन था, कि उनके पास उनका अपना विज्ञान था, कि आपने जैसे बताया कि वो महज पानी के आसपास की जगह की वनस्पतियां देखकर बता देते थे कि यहाँ पे पानी कहाँ होगा, कितना गहरा होगा। और ये एक और आश्चर्यजनक बात आपने हमें पूजा जी बताई कि किस तालाब का पानी अंदर से रिसकर किस जगह पर और जा सकता है और फिर से एक तालाब को नया जीवन मिल सकता है। तो रानी ने मतलब जिस विद्या को प्रश्रय दिया, न सिर्फ प्रश्रय दिया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया, उनके जो अधीनस्थ थे, जो अधीन उनके काम करते थे, वो भी प्रेरित हुए उनसे।
0: हाँ बिल्कुल, रानी कई मायनों में हमको बहुत प्रभावित करती हैं
1: जी।
0: उन्होंने तो विद्या अध्ययन के लिए भी बहुत काम किया। एक ये वो समय था जबकि जबलपुर लघु काशी के रूप में जाना जाने लगा।
1: अच्छा,
0: विद्या अध्ययन का ये स्तर पाया तो दूर दूर से लोग बाग यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण किया गया था। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक राधा बल्लभ पचपटा मंदिर है। पचपटा मंदिर जो है वो गोंड पीरियड की, गोंड काल की खास शैली है मंदिर निर्माण की
1: जी।
0: और ये जैसे कि नाम से पता चलता है कि मठ थे
1: जी, जी।
0: तो मठ में जो है साधु संत या विद्यार्थी रहते हैं और वो सीखते हैं। तो एक राधा बल्लभ पचपटा मंदिर था और इसमें एक अभिलेख आज भी हम देख सकते हैं। अभिलेख कहता है कि 1564 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत थे एक चतुर्भुजा दास
1: जी,
0: वो यहाँ पर पधारे थे
1: जी।
0: और जब रानी ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्कृत विद्यापीठ की रचना की, और इस रचना, इस विद्यापीठ की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली कि जबलपुर उस समय या गढ़ा राज्य उस समय लघु काशी तक कहलाने लगा। तो आज भी आप देखें तो हम उसी कारण से जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो क्योंकि जो आपने तालाबों की कहानी बताई तो वो जल संस्कार भी हो गया, ये शिक्षा संस्कार भी हो गया, और जबलपुर में कलाओं का भी आज हम देखें तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर मिलता है, चाहे वो संगीत कला हो या चित्रकला हो। इतिहास के पन्नों से एक कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और पूजा जी से हम बात कर रहे हैं, हमारी पुरातत्वविद, और कितनी अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। तो गोंड जाति, गोंड जनजाति ने जो हमारे लिए काम किया है आज तक, देखिए हमेशा से हम कहते रहे हैं कि पानी के इर्द गिर्द ही, जल के आसपास ही सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास हुआ है। और जबलपुर, आज का जबलपुर जो है, इसकी जीती जागती मिसाल है। पूजा जी ने बताया कि रानी के शासनकाल में और उनके आगे वाली पीढ़ियों के, यहाँ तक कि उनकी दासी तक ने तालाब वहाँ पर बनवाया, तो आज भी उन्हीं तालों के नाम पर जबलपुर के अलग अलग इलाकों के नाम हमें मिलते हैं कालांतर में, भले ही वो तालाब अब नहीं रह गए। पूजा जी, इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे आगे भी जारी रहेंगी हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से, लेकिन आज समय पूरा हो चुका है तो हम अपने श्रोताओं से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: नेट हो, तकनीक से हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी रोचक बातों से भी अवगत कराया जाता रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी की बारीकियों से तो युवा कहीं हद तक परिचित है, पर हमारे बुजुर्ग या कहें वरिष्ठ नागरिक जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की ज्यादा जानकारी न होने के कारण उनके साथ बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। आज हमारे बीच टेक गुरु यानी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रदेश प्रमुख हेल्पेज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। संस्कृति जी, रेडियो आजाद हिंद की ओर से आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: संस्कृति जी, वर्तमान में वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें बुजुर्गों के साथ फ्रॉड किस प्रकार से किया जाता है?
1: ये जानकारी बहुत आवश्यक है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि हमने जिस प्रकार से कोविड में देखा कि वरिष्ठ नागरिक एक ऐसा व्यक्ति थे जो हर परिवार से और अपने समाज से कट चुके थे, क्योंकि उनके पास आने जाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक ही माध्यम था जो लोगों को जोड़े हुए था, वो था टेक्नोलॉजी। और जो वीडियो कॉलिंग कर पाते थे या फिर अपने स्मार्टफोन से अगर बात कर पाते थे, सिर्फ वही अपने परिवार से संपर्क में थे। तो वहाँ से हमने इस चीज़ की शुरुआत करी कि क्या हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे कोई चीज़ ला सकते हैं जो उनको परिवार के ज़्यादा करीब ला सकता है। तो उस समय हेल्पेज इंडिया ने सोचा कि हम वरिष्ठ नागरिकों की किस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती, किस प्रकार से वो हमसे जानकारी की आवश्यकता होती उनको, उस प्रकार से हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और कोविड के बाद से पेमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, वीडियो कॉलिंग भी है और बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगे हैं। उसको एक्सेस कैसे करना है मोबाइल को, उनको वो नहीं समझ में आता था। फिर उसको एक्सेस करने पे कई बार उनकी गलतियां होती थी, उन गलतियों को कैसे सुधार पाएं। फिर उसको वीडियो कॉलिंग भी करना है या उनको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, उनको वो नहीं पता था। और छोटी छोटी सी जानकारी कि अगर उन्होंने कोई अकाउंट खोल लिया या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो वो करने के लिए पासवर्ड उनको कैसे सिक्योर करना है, सारी चीज़ें हम उनको सिखाना। तो हमने डिजिटल लिटरेसी उनको सिखाना शुरू करा। उसके बाद में हमें आवश्यकता ये पड़ी कि लोगों ने जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन, पहले वरिष्ठ नागरिकों की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5% हुआ करती थी, 2011 की बात करें तो पॉपुलेशन 8.5% हो गई टोटल पॉपुलेशन की, और अगर हम 2022 से 24 की बात करें तो अभी उनकी पॉपुलेशन 10.5% हो चुकी है एल्डरली की। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके लिए सुरक्षा के लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारे पास जिस प्रकार से कंप्लेंट आई, पहले एक दो बार लोगों ने हमसे शेयर किया, वरिष्ठ नागरिकों ने, कि हमारे पास अकाउंट है और उनकी मोस्टली सेविंग एक ही अकाउंट में होती है वरिष्ठ नागरिकों की, और बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि बहुत ही वो अपने भोलेपन से बता देते हैं कि ये हमारा अकाउंट है, इसमें पासवर्ड है, बच्चों से कई बार हेल्प ली, कैसे हम इसको करें, आप हमारा एटीएम से पैसे निकाल के दे, तो छोटी छोटी चीज़ें वो हेल्प करिए। उस वजह से उनके साथ फ्रॉड होना शुरू हुआ। तो जब ये कंप्लेंट हमारे पास में आना शुरू हुई तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पर उनको थोड़ा सतर्क करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वरिष्ठ नागरिकों को इन सब चीज़ों से बचा सकें। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण आने लगे कि जिनको देख करके हमने फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना आप हमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिसमें हम वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी से एक सुरक्षित कर सकें। तो हमने एक सुरक्षित के नाम से एक प्रोजेक्ट हमें गूगल ने सपोर्ट किया, और उस सुरक्षित प्रोजेक्ट में हमने साइबर सिक्योरिटी से लेकर के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट करा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट करा है और इसमें हम बहुत सारे आयामों को कवर कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती है वैसे वैसे हम उसको उनके पास एग्जांपल्स और अलग अलग तरह की चीजें हम
0: जी बताते हैं। आपने बताया कि आप हेल्पेज इंडिया से जुड़ी हुई हैं और प्रदेश प्रमुख भी हैं, आपके साथ जो बुजुर्ग या कहें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आप साइबर सिक्योरिटी या वृद्ध जनों के लिए जो डिजिटल सुरक्षा है उसकी जानकारी आप किस तरह से उनको परिचित कराती हैं, किस तरह से उनको जानकारी देती हैं?
1: सबसे पहले तो हमने उनके लिए गाइड बुक बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बनाई है, जिसमें हम लोग उनको किस प्रकार से हर एक एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप एक तो उनके साथ में कि पासवर्ड कैसे बनाना, क्योंकि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जिसे लोग पासवर्ड बना लेते हैं, और पासवर्ड एक पासवर्ड वो हर जगह यूज करते हैं, और हर जगह पासवर्ड जब यूज होता है तो उनको अगर एक जगह का पासवर्ड उनका क्रैक कर लिए तो सभी जगह से उनका पासवर्ड क्रैक हो जाता है। तो उनको पहले तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाना वो हमने, कहने के लिए बहुत छोटी बात है लेकिन वो बहुत गहरी चीज है जो हम भी शायद आजकल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिकों को जरूर एडवाइस देते हैं कि वो करें इम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल की हम जैसे उनको एक सेंटेंस बताते हैं कि जैसे हरी हैज टू डॉग्स नेम टॉम एंड जेरी, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाती हैं, एच कैपिटल आता है, हैज का एच स्मॉल आता है, टू में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डी में कैपिटल डी आ जाता है, नेम में एन स्मॉल है, देन टी कैपिटल और एंड का सिंबल वाला एंड आ जाता है। तो उस तरह से उनको हम सेंटेंस के थ्रू सिखाते हैं ताकि उनको याद रहे और वो भूले नहीं, क्योंकि ये चीजें हम लोग भी कई बार पासवर्ड रख के भूल जाते हैं अगर हमने बहुत दिन यूज नहीं करा तो ये कॉमन चीज है जो भूल जाते हैं, उसको हम किस प्रकार से याद रखें उस तरह से भी उनको सिखाते हैं। दूसरा जो हमारे पास वॉइस कॉल आता है मोबाइल पर, वॉइस कॉल आने के बाद में उसको क्लोनिंग की जाती है और आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके फिर आपको उसके लिए फिर थ्रेफ्ट किया जाता है। कुछ आते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू आते हैं कि वीडियो कॉलिंग आपको कर रहे हैं व्यक्ति और आपका फिर वीडियो बना रहे हैं, देन आपको फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं
0: जी।
1: तीसरे एक तरह का जो हमारे पास इसमें जो केसेस आते हैं वो है वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से आता है, जिसमें वो एल्डरली के साथ में आजकल जो कॉमन होने लगे जो पहले कभी नहीं होता था कि उनको फीमेल कॉल कर रही है और फिर उसका वीडियो बना के फिर वो ब्लैकमेलिंग करती है
0: जी, जी, जी।
1: और उसके अलावा हमारे पास में आपने भी देखा होगा कि अगर हमारा एमपीबी से कॉल आ गया कि एमपीबी से आपका आज ये बिल पे करें इस पे और नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, और ये बहुत कॉमन हो गया, तुरंत वो फ्रॉड जो करते वो कॉल करते हैं जबकि एमपीबी से कॉल नहीं आता है। एक और ऑप्शन है कि बच्चे को उन्होंने बोला आपका बेटा इस समय कहाँ पर है, तो वो बताएंगे हमारा बेटा कहीं बाहर गया है, तो वो बोलेंगे नहीं आपका बेटा हमारे पास बैठा हुआ है और उसने कहीं ड्रग्स में फंस चुका है और आप हमें इतने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उसको किसी को नहीं बताएंगे, रिलीज कर देंगे, वो हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। कहीं से भी वो अपनी एक डिग्निटी बताते हैं और उस तरह से बात करते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमें बचाना उसको कैसे भी करके, और वो कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास में केसेस आते हैं। अब उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये हमारा एक दूसरा,
0: जो आपकी पुस्तक है उसमें और भी चीजें जो बताई गई होंगी उसके बारे में आप बताइए ना कि
1: इसमें हमने एक तो किस प्रकार से आपको किस तरह की लिंक को क्लिक करना है कि जैसे HTTPS होता है HTTP होता है, तो HTTP अगर है सिर्फ तो उसको आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती है। जब तक HTTPS नहीं होगा तब तक आप उसको क्लिक नहीं करें, वो सिक्योर साइट नहीं होती है
0: जी।
1: दूसरा इसमें कई चीज़ें हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का है। तीसरा हमने इसमें मेंशन किया हुआ कि आपको किस प्रकार से डिजिटली एक्सेस करना है कि मोबाइल के ऑपरेशंस कैसे करना है
0: जी, जी।
1: चौथा हमने इसमें डाला हुआ है कि क्या क्या ऑप्शंस है, अगर आप कभी फंस जाते हो तो आप किसको हेल्प के लिए अप्रोच करेंगे, वो हमने इसमें डाला हुआ है। इस प्रकार से हमने 5-6 पहलू को इसमें डाला हुआ है। और यदि आप कोई ऑनलाइन स्कैम में फंस रहे हैं तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे, हमने जो सिक्योर पासवर्ड की बात करी कि सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए इसमें, फिर बैंकिंग में अगर ऑनलाइन यदि आप करें तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है, बिल्स आपको कैसे पे करना है वो हमने इस नोटबुक में कवर किया हुआ है, फिर प्रोटेक्शन कैसे करना है अपने पासवर्ड का, फिर आप स्कैम यदि हो रहा है तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे, व्हाट्सएप आप कैसे यूज करें जिसमें आप सेफली रहें और आपके साथ कोई थ्रेफ्ट ना हो, और कैब बुकिंग यदि करना है तो कैब बुकिंग में भी कई बार
0: फ्रॉड
1: हो जाता है फ्रॉड, तो वो आप कैसे सिक्योर करते, हमने मेजरली ये चीजें कवर करी है इसमें।
0: वृद्ध जनों के साथ हुए फ्रॉड के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या जिस पर वे तत्काल बात कर अपनी समस्या बता सके?
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है और जिसका नंबर है 1930
0: जी।
1: जब भी कभी भी किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल जो गोल्डन आवर्स हम कहते हैं कि तुरंत आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इस नंबर पर है। इस नंबर पर जब भी आप कॉल करें उसके पहले जिस प्रकार का आपके पास फ्रॉड हुआ है उसकी पूरी जानकारी पहले आप एक पेपर में लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया
0: जी।
1: तो उसका अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट गया है, किस डेट को गया है, किस बैंक से गया है, कि बस कोई लिंक अगर आया था जिस पे आपने क्लिक करा उसके बाद गया है, या किसी पर्सन पे आपको लगता है कि किसी पर्सन ने भेजा था, तो आप उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आप पूरी पहले एक पेपर पे लिख ले, फिर उनको कॉल करें क्योंकि आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप वो जानकारी लेने के बाद में तुरंत आप उनको कॉल करें तो वो फिर पूरा कोशिश करते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए। और साइबर क्राइम का जो गवर्नमेंट का साइट है उसका cybercrime.gov.in वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करके बहुत सी आप जानकारी गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी हेल्पलाइन, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं।
0: संस्कृति जी, आपके साथ में या आपके साथ जो वृद्ध जन है उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, फ्रॉड हो गया, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
1: जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉड कई तरह के होते हैं, तो जैसे हमारा वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से एक फ्रॉड होता है। तो एक वरिष्ठ नागरिक ने, जब ये हम डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करते हैं तो कई लोग अपनी अलग अलग केसेस सुनाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया। पैसे निकलना तो एक बहुत कॉमन चीज है, जो कम से कम हर वर्कशॉप में कम से कम 4-5 एल्डरली हमें बताते हैं उनके साथ हो चुका है। ये वर्कशॉप होने के बाद में किसी एल्डरली के पास में, जबकि सब कुछ प्रिवेंशन सब कुछ बताया था, फिर भी कम से कम 15-20 दिन बाद एक एल्डरली का कॉल आता है। उन्होंने बताया कि किसी फीमेल ने उनको वीडियो कॉल किया, कुछ 2-3 मिनट बात करी और उसने कॉल रख दिया। उसके बाद में उसने उनका पिक विक लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हीं के वीडियो बना करके उनको भेजा गया। और वो एल्डरली इतना डर चुके थे कि वो फैमिली को बता नहीं पा रहे थे कि उन्होंने एक नॉर्मल टॉकिंग करा था, लेकिन उसको उन्होंने मोल्ड करके AI के थ्रू बहुत उसको एनिमेटेड कर दिया था। मतलब उनका ये स्थिति हो गई थी, वो सुसाइड करने के मूड में आ गए थे। फिर उन्होंने हमारे यहाँ जो डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं राकेश, उनको कॉल किया कि ऐसा सा हुआ है मेरे साथ में, क्या कोई बचाव है इसमें? तो उन्होंने बोला कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही परिवार से आपको छुपाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें बाहर का व्यक्ति यदि आपको परेशान कर रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में जाएं, वहां पर कंप्लेंट करें, रिटर्न में कंप्लेंट दें, और उसके बाद में फिर आपको सहायता दी जाएगी। तो तब जाके वो थोड़ा सा उनको एश्योरेंस मिला कि नहीं, हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से भी उन्होंने हेल्प ली, प्लस जाकर के उन्होंने पुलिस कंप्लेन उसमें साइबर सिक्योरिटी करी। तो ये चीजें भी ऐसी है, तो जो एल्डरली सोचते उनके साथ ये चीजें नहीं होंगी, या यंग जनरेशन सोचती उनके साथ में होगा, लेकिन होता है ये चीजें। इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ एल्डरली के केसेस आए थे जिसमें वो वॉइस को लेकर के था, उनका बेटे की वॉइस में किसी एल्डरली को कॉल कर रहे हैं, पापा मुझे अभी अर्जेंट में, मतलब मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, अब मैं अपने दोस्त के फोन से लगा रहा हूँ, आप मुझे इतना इतना अमाउंट पे कर दो, मेरे अकाउंट में अभी नहीं है। अब पिताजी हैं, उन्होंने तुरंत उसको भेज दिया अकाउंट, पता पड़ा बेटे ने कॉल ही नहीं किया था, क्योंकि बेटे की वॉइस रिकॉर्ड करके उन्होंने खुद कॉल किया था। तो जो पैसा हमारा हमारी गलती से चला जाता है उसको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा यही एम है डिजिटल सेफ्टी से कि हम किस प्रकार से उनको प्रिवेंट कर पाए, पहले ही हम गलती करने के पहले उनको रोक पाए, ताकि वो इस स्टेज पे जा ही नहीं पाए।
0: जैसे बुजुर्ग जो है आम साइबर सिक्योरिटी के खतरों से खुद को वो कैसे बचा सकते हैं,
1: उसके लिए कुछ डोंट एंड डूज हैं कि क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि ये मत करो, चलोगे गिर जाओगे, लेकिन ये चीज ऐसी जिसको आप इमेजिन नहीं करते हो। आज आपके पास में कोई थ्रेफ्ट सामने आया, आपने उसको प्रिवेंशन कर लिया, कल को कोई नई चीज आ जाएगी, तो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। और क्योंकि वरिष्ठ नागरिक, तो AI एक ऐसी चीज है जो बहुत टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही, दिन पे दिन नई नई चीजें आती जा रही है। तो हमारी अगर एज ग्रुप की बात करें, मिडिल एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप की, हर चीज हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, जबकि हम डेली उस चीज को यूज करें, हम डेली लैपटॉप पे बैठते हैं, काम करते हैं, हम मोबाइल पे एक्सेस करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हो जो हम भी नहीं समझ पाते। तो उसको इजी बनाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ चीजें उनको एडवाइस जो है वो होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे साइट्स हैं, जैसे हमने कोई भी साइट यदि वो सर्च भी कर रहे हैं, कई बार किसी को लर्निंग की आदत होती है कि एल्डरली है तो लैपटॉप बैठ कर कुछ सीखना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो URL जब भी क्लिक करें तो वो सेफ है या नहीं है उस साइट को देख करके करें, जिसमें HTTPS हो तो ही देख करके वो उस पर क्लिक करें। दूसरा, यदि कोई आपको कॉल करके, मिस कॉल करके छोड़ रहा है या बार बार आ रहे हैं, तो वो आप कॉल बैक ना करें। अगर अर्जेंट होगा तो आपको दोबारा कॉल बैक करेगा, और उसको अगर अननोन पर्सन है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फोन काट दें, जब तक वो अगर अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं बता रहा है। तीसरा एक ये होता है चीजें कि जब व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल यदि अननोन नंबर से आ रहा है तो आपको कॉल उठाना ही नहीं है उसको। तो वीडियो कॉल जब आते हैं और हम उसको बिल्कुल देख करके करते हैं, तो वो चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि हम उस चीज को, वीडियो कॉल है उसको नहीं उठाएं। अगर हमारे कोई परिचित भी कर रहे होंगे तो फिर हम टेक्स्ट करें पहले कि हाँ मैं हूँ या कुछ है उसके बाद, और यदि आपको दिख भी रहा कि अननोन पर्सन, तो तुरंत उसको, गलती से आपने अटेंड भी कर लिया तो तुरंत उसको काट दें। दूसरा एक ऑप्शन है कि OTP होता है। OTP यदि आपके पास में आ रहा है तो OTP आप पहले देख लें, सिक्योर है नहीं है। यदि आपको किसी बैंक का, यदि आप ट्रांजैक्शन करें तो आप बैंक में कंफर्म भी कर सकते हैं फोन करके कि हमने ये ट्रांजैक्शन करने के लिए किया था, क्या आपके ये भी सिस्टम है या नहीं है, आपको श्योर है तो ही करें, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। हर जगह हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं और दे विल रिस्पॉन्ड। कुछ होता है कि जैसे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, तो वेरिफिकेशन के लिए कॉल के लिए आप वो बोलेंगे हम मिसेस बैंक से बोल रहे हैं, हम आपका डाटा वेरीफाई करना है, तो आप पहले उस बैंक को कॉल करेंगे कि क्या आपने किसी व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग पे लगाया हुआ है। हम वेरिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही देना चाहेंगे, हम किसी भी अननोन पर्सन को वेरिफिकेशन के लिए नहीं दे सकते। तो एल्डरली मना कर सकते हैं साहब कि हम वेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। और लिटरेसी की बात, कोई भी पेपर्स है तो यूजुअली कई बार आते हैं कि किसी ने कुछ अप्लाई कर दिया है कि आपके बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया, और वो आपके पास आगे साइन करवाने कि बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ साइन करना, तो आपको किसी को एंटरटेन ही नहीं करना है, कोई भी अननोन पर्सन एंटरटेन किसी और के नाम से आपको कॉल कर रहा है, तो आपको बोलना नहीं पहले हम खुद आप खुद उससे उसी के नंबर पर बात करें, उसके बाद ही उसको एंटरटेन करें, किसी और के नंबर से आप एंटरटेन ना करें। और बाकी मेन हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो OTP शेयर कर देते हैं कि जैसे हमसे नहीं हो पा रहा तो हमने किसी और को बोला, तो आप किसी मतलब किसी भी चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे इनमेट्स हो, चाहे आपको कोई भी, उसको OTP कभी शेयर ना करें। अधिकतर ये गलती करते हैं कि उनसे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा तो बोलते अच्छा बेटा मैं OTP भेज रहा हूँ तुम कर दो, क्योंकि उनको वो प्रोसेस करने में तकलीफ हो रही है, तो हम वो प्रोसेस को सीख लें बजाय कि उसको हम शेयर करने के।
0: संस्कृति जी, जैसा कि बहुत से मोबाइल्स में हमारे पास में भी मैसेजेस आते हैं, आज ये कंपनी इतने इतने फलाने का इतना इतना रिचार्ज आपको उपलब्ध करा रही है, तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये किस कारण से होते हैं, या सही होते हैं या फ्रॉड होते हैं?
1: ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी की तरफ से अगर मैसेज आ रहा है, तो कोई भी कंपनी हो सकता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी का भी है, तो बेटर है कि आप पहले अपने ही जिस कंपनी का है उसको आप कॉल करें और उनसे वेरीफाई करें बजाय कि उस पर भरोसा करने के। और हर चीज आपको वेबसाइट पर जो है वो करेक्ट लिंक करेक्ट फोन नंबर्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू आप उसको एक्सेस करें।
0: नहीं, जैसे कि बुजुर्गों के पास में भी मोबाइल है, आजकल सब एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, या छोटे मोबाइल भी है, कीपैड मोबाइल्स भी है, उनके अंदर भी जैसे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं कि आप इसको दबाइए, इसको प्रेस करने से आपके खाते में इतने इतने लाख रुपए पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे इनसिक्योर चीज यही लिंक होती है। किसी भी प्रकार के लिंक पे हमें क्लिक करना ही नहीं है, और यदि हमने क्लिक कर दिया तो हो सकता है उसके तुरंत बाद ही आपके अकाउंट से पूरा पैसा चला जाए। और एक और चीज इसमें होती है कि जब हम लिंक कोई भेजता है तो अगर वो सिक्योर जगह से नहीं आई है तो हमको वैसे भी उसको एंटरटेन नहीं करना है, और यदि सिक्योर आती है तो भी नहीं होता। कई बार एक एग्जांपल ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट के साइड हमने देखी, वहीं से एक नंबर लिया और कॉल किया, लेकिन वो व्यक्ति फ्रॉड निकला, उसने हमें लिंक भेज के और पैसा निकाल लिया हमारे अकाउंट से और हमें पता नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमने नंबर जो लिया था गवर्नमेंट की साइट से लिया था। तो हम पहले ये भी वेरीफाई करें कि क्या ये उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नंबर है या नहीं है। तो आजकल मोबाइल नंबर के चेंज हो जाते हैं, पहले सिर्फ लैंडलाइन नंबर होते थे तो हमें भरोसा होता था कि ये लैंडलाइन नंबर पर्टिकुलर ऑफिसर्स का ही है या गवर्नमेंट के जितने नंबर है उस पर दिया हुआ है। आजकल मोबाइल नंबर होने से एक इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हमें किसी भी चीज को लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है।
0: मान लीजिए अगर किसी ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में उसके साथ जो फ्रॉड होता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है?
1: उसके लिए सबसे पहले तो जिस बैंक का अकाउंट है वहां पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अकाउंट को ब्लॉक करवाना पड़ता है, और दूसरा जो हमने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर वो कॉल करें, ताकि वो अपने लेवल पे उसको कुछ एक्शन ले पाए। अगर कैसे हो भी गया किसी के साथ तो तुरंत ही 1930 पर कॉल करें, और वो जो गोल्डन आवर आपका जो रहता है 1 घंटे, उसके अंतर्गत वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प दे पाए, क्योंकि पैसा निकल जाने के बाद में हमारी गलती से थोड़ा मुश्किल होता है वापस आना।
0: अच्छा, संस्कृति जी, हम अपने मोबाइल कंप्यूटर को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं?
1: उसके लिए कुछ तरीका आप अपना सकते हैं, खास करके हमारे वरिष्ठ नागरिकों को हम ये सलाह देते हैं कि आप हमेशा एक तरह का लॉक ना रखें अपने मोबाइल पर। कभी आप पिन नंबर डालें उसमें पासवर्ड का, कभी आप फिंगरप्रिंट रखें, कई बार आप फेस रिकॉग्निशन के हिसाब से आप उसको डाल के रखें, या उसका पैटर्न वाला लॉक करें, तो समय समय से उसको चेंज करते रहें, सो दैट आप सिक्योर रहेंगे। और दूसरी चीजें जो अक्सर वरिष्ठ नागरिक नहीं करते हैं वो है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन, कि अपडेट्स जो आते हैं मोबाइल पे वो हम लोग नहीं करते हैं, तो उसकी भी उनको सलाह देते हैं कि आप लोग समय समय पर जो अपना मोबाइल जिस कंपनी का उसके अपडेट्स आते हैं वो आप उसको अपडेट कर दें, ताकि आप सिक्योरिटी से बच सकते हो।
0: जी जी जी। यदि किसी को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप करानी है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है?
1: डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप जो हम करवाते हैं उसमें हम अधिकतर जो हमारा भी फोकस रहता है सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस, कि जितने भी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनको हम संपर्क करते हैं, और हम एक बैच जो रखते हैं 35 से 40 लोगों का, ताकि अच्छे से हम एक एक सीनियर सिटीजन तक पहुंच सकें। और उनको हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कराते हैं। तो ये हमारा सेशन करीबन 1.5 से 2 घंटे का रहता है, जिसमें हम 1 से 1.25 घंटे का सेशन रहता है और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं। एक एक व्यक्ति हमसे कई चीजें पूछता है कि ये मोबाइल पे मेरे इसमें ये सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा, आपने बताया करना था, हम कैसे करें। तो हम अपने वॉलंटियर्स भी साथ में रखते हैं ताकि कुछ उनको गाइड करते जाए। तो ये वर्कशॉप जो हम करते हैं 2 घंटे का, इसमें उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते जाते हैं साथ साथ में। और ये सब एक बार यदि हो जाता है, दूसरी बार हो सकता है कि आधे लोग ऐसे जो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, उनको लगा हमने समझ लिया, लेकिन जब ये घर पे जाके कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाए। उसके लिए हम इनसे बोलते हैं आप दोबारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हम दूसरी बार भी आप लोगों के लिए रख सकते हैं, या हम जिस जगह दूसरी वर्कशॉप कर रहे हैं तो उनको इनवाइट कर लेते हैं जिनको रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है कि हमें कुछ चीजें और समझनी है। एग्जाम्पल जैसे हमने एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, उनको हमने ये डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के संपर्क में एसोसिएशन वालों के, कम से कम हमारे पास में 20 और ट्रेनिंग के रिक्वेस्ट आई कि हर एरिया वाइज अलग अलग होते हैं, एसोसिएशंस बने होते हैं।
0: जी।
1: तो लगता है कि हमारे पास तो इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं और हर व्यक्ति चाहता है इसकी ट्रेनिंग लेना, तो हम हर व्यक्ति को समय और एक निश्चित स्थान अपना फिक्स कर लेते हैं और उनकी सुविधा के अनुसार हम लोग करते हैं, वरिष्ठ नागरिक जब सुविधाजनक रहे और वो हमसे संपर्क करें। दूसरा इसमें हम ये करते हैं कि हम इनके साथ में एक फीडबैक सेशन भी रखते हैं कि जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो उनको एक फीडबैक फॉर्म हम फिल करवाते हैं, उसमें उन्होंने जो सीखा है वो क्या समझ में आया उनको और क्या वो नई चीज और सीखना चाह रहे हैं जो हमने नहीं एड ऑन करी थी, या उनको लगता है कुछ एग्जाम्पल है जिनको लगता है ये हमारे संपर्क में आया ऐसा केस और आपने नहीं इसके बारे में बताया, तो वो भी हम उसको एड ऑन कर लेते हैं। उनका हम 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाते हैं कि उनका फीडबैक कैसा रहा, बहुत उनको अच्छा लगा। तो अधिकतर सब सीनियर सिटीजन बोलते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग हमें फीडबैक हमें मिलता है और वो चाहते हैं कि ऐसी वर्कशॉप लगातार हम करें। और संपर्क करने के लिए हमसे यदि आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्पेज इंडिया के वेबसाइट पे जब मध्य प्रदेश डालेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि आप एक नंबर लिखना चाहें तो आप एक नंबर लिख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के ही राज्य प्रमुख का नंबर है 9973-01230। ये नंबर पर आप संपर्क करके और हमें कॉल कर सकते हैं। फीडबैक जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद में जब लोग चले जाते हैं अपने घर में तो हो सकता है 10 दिन बाद किसी के साथ में कुछ कॉल हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे जिसमें हमने एक वीडियो कॉलिंग वाला एग्जांपल भी दिया था कि उनके साथ में वीडियो कॉलिंग हुआ पर वो अपने आप को डर के और सुसाइड करना चाह रहे थे, तो उनको प्रिवेंट हमने किया, नहीं तो वो व्यक्ति परिवार से समाज से और लोगों से डर के सुसाइड कर रहे थे क्योंकि उनको ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से इस उम्र में उनके साथ में इस तरह की गलत घटना हो जाएगी कि महिला आपको वीडियो कॉल कर रही है फिर आपके लिए उल्टे सीधे वीडियोस आपके बना के भेज रही है और वो बोल रही मैं आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसा डालो नहीं तो मैं कि आपके संपर्क के लोगों को भेज दूंगी वीडियो, अगर वायरल हो जाएगा तो वो किसी मतलब उनको लगता मैं समाज के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा गिल्ट फीलिंग आ गई थी कि वो सुसाइड करने को जा रहे थे, तब उन्होंने हमें संपर्क किया कि मैंने आपकी ट्रेनिंग की थी आप लोग हमें गाइड करो। फिर उनको हमने गाइड किया था आप पहले साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन करें, डरने की जरूरत नहीं है, वो गलती आपने नहीं करी है, कोई और व्यक्ति आपको फंसा रहा है तो उसके लिए आप ना डरें, और उस तरह से हमने उनको प्रिवेंट किया था। ऐसे ही हमसे एक लिंक जैसे भेज देते लोग, किसी ने लिंक भेजी तो वहां से उन्होंने हमारे एम्प्लॉय को फोन किया कि ये वाली लिंक मेरे पास में आई है क्या इसको क्लिक करके मैं भेजूं, और वो उनके काम की थी लिंक
0: जी।
1: तो हमारे व्यक्ति ने उनको साफ मना कि नहीं ये आप पहले जिस डिपार्टमेंट का है जिस जगह का बैंक का बोल रहे हैं पहले आप उस बैंक में संपर्क करें उनसे बात करें श्योर हो जाएं कि क्या आपके अधिकारी ने हमें भेजा है। तो उन्होंने बोला था नहीं ये किसी थर्ड पर्सन ने भेजा था बैंक से नहीं आया था। तो ये इस तरह से हम उनको प्रिवेंट करते हैं। तो लोग क्वेरी के लिए हमें रेगुलरली फोन करते जाते हैं आफ्टर वर्कशॉप।
0: संस्कृति जी ये जो डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप है ये कितने दिनों की होती है?
1: ये सिर्फ 2 घंटे की होती है, 1 दिन में 2 घंटे की, यदि कई बार 3 घंटे भी चल जाती है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आंसर। कई बार एल्डरली बोलते नहीं हम तो आप तो हमें 1 घंटा और बैठो लेकिन हमें सारी क्वेरीज सॉल्व करके जाओ। हमारा जो सिखाने का समय होता है वो मैक्सिमम 1.5 घंटे होता है, 1.5 घंटे के बाद में आप जितना समय क्वेरी और समझने में उसको प्रैक्टिकल में दे पाए।
0: इसमें क्या सेशंस होते हैं?
1: 3 घंटे मैक्सिमम आप लेके चले सेशन, और 1 दिन में हम 3 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं पर क्लैश नहीं होना चाहिए वो।
0: संस्कृति जी क्या ट्रेनिंग होने के बाद में यदि किसी को आवश्यकता होती है तो आप किस तरह से उनकी सहायता करते हैं?
1: ट्रेनिंग के बाद में 2 तरह के हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है। एक तो प्रिवेंशन के लिए आती है कि हमने जैसे हमारे परिचित है इनके साथ में हो गया अब आप इनको बताओ कैसे करना है, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो वो हेल्प चाहते हैं। पहला तो हम सजेशन देते कि अब हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग इस जगह पर होने वाली है, तो आप यहाँ पर आके उसको अटेंड कर लें। और दूसरा, अगर इंस्टेंट हेल्प की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ फ्रॉड हो गया, उनको तुरंत हेल्प की जरूरत है, तो हम तुरंत उसको फोन कॉल के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं, जो उनको डिटेल होता है वो भेजते हैं, और हम उनको हमारे लेवल की हेल्प होती है वो कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो पैसा जाने के बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते, बैंक भी कुछ नहीं कर सकता, बट हम उनको गाइडेंस दे पाते हैं सही कि आपको कब किससे संपर्क करना है ताकि आप उसको प्रिवेंशन कर सके। दूसरा, लोग हमें फीडबैक देते हैं कि आप कुछ हमें नई चीजें और हैं जो एड ऑन कर, जैसे किसी के साथ कोई नया एग्जांपल हो गया कि एक हमसे सीनियर सिटीजन ने कर रहा था कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे आजकल मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहे थे। अब गेम्स खेलते खेलते वो ऐसे साइट उन्होंने क्लिक कर दी जिससे उनका पैसा निकल गया। उनको पता नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बच्चे क्या कर देंगे, ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों को हम मोबाइल अक्सर दे देते हैं, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको क्लिक करने से हम गलत ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं बच्चे
0: जी।
1: तो वो उसके लिए हमें संपर्क किया जाता है। और तीसरा होता है कि वो हमें चाहते हैं कि आपने एक ट्रेनिंग कर दी, हमारे कई साथी ऐसे जिनको ट्रेनिंग करना है, तो उनके लिए आप हमें दोबारा ट्रेनिंग सेशन करें, उस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं। तो ये 3-4 तरह की मदद हम लोग कर पाते हैं।
0: संस्कृति जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं अंत में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हम सभी लोग पे भरोसा करते हैं, तो सब पे ना भरोसा करके सिर्फ परिवार वालों पे भरोसा करें। कोई भी चीज आपको सीखनी हो, खास करके मोबाइल ट्रांजैक्शन को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के, तो सिर्फ अपने ही व्यक्तियों को पासवर्ड शेयर करें या किसी से भी शेयर ना करें। ऑनलाइन अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, 4 बार पूछ लें करने के पहले, क्योंकि वो एक क्लिक पे आपका कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और अननोन व्यक्ति का फोन उठाए नहीं, वीडियो कॉल ना उठाए आप लोग, और अननोन किसी भी साइट पे क्लिक ना करें, और जब भी आपको आवश्यकता हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारे साथ टेक गुरु के रूप में जुड़ी हुई थी प्रदेश प्रमुख हेल्पेज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि संस्कृति जी ने जो हेल्पलाइन नंबर हमें बताए हैं उन्हें हम दोहरा रहे हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें। किस पर करें? 1930 पर। और साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हेल्पेज इंडिया से वरिष्ठ जनों को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग देने के लिए 9977301230 पर संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा टेक गुरु कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम टेक गुरु। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
4: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
3: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थी, लेकिन अवसर भी थे।
4: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
3: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। यह स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
4: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
3: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
4: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
3: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलम के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है, जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
4: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
3: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है, लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
4: जी हाँ, बिल्कुल। कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
3: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में, जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
4: लेकिन ये निर्णय

0: फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
1: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था। रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
0: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
1: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
0: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्रॉइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
1: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक है जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
0: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
1: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
0: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
1: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर

0: एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
1: बिल्कुल, जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता, कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता, और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
0: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
1: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे, लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
0: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून हजार शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
1: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या ये बिकेगी, उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
0: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की, अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
1: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं, लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
1: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
0: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
1: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
0: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: बिल्कुल, और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
0: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
1: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
0: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
1: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
0: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनके कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थी। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
1: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
0: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
1: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
0: एक दिलचस्प घटना है, 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
0: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
1: बिल्कुल, और आर के लक्ष्मण जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
0: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। ये सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
1: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
0: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
1: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन हैं, जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहां आते रहते हैं।
0: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
1: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
0: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा जिसकी माँ चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा ना बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
1: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे, जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपने प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है, वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां 17 अगस्त की शाम आयोजन किया गया जश्न आजादी मुशायरे का, जिसमें रचनाकारों ने अपने कलाम सुनाए।

0: थे।
1: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में।
2: मोहतरमा भावना, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव साहिबा,
3: मैं अपना अपने सफर का आगाज करती हूँ और सबसे पहले जश्न आज़ादी के हवाले से अपने भाव कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। सुने कि

0: बहुत शुक्रिया। मेरे नज़दीक आज़ादी का मतलब शायरी से भी है। शायरी हमें एक ज़हनी आज़ादी देती है, जहां हम दुनियावी मसाइल को छोड़कर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, कहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, तो वो भी एक तरह से आज़ादी है। और उसी सिलसिले में एक मतला और एक शेर देखें, सुने कि एक मुद्दत पे आईना देखा। मतलब यूं कहा कि एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा। एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा। और शेर सुने कि रंग भरते हुए सलाखों में, रंग भरते हुए सलाखों में मैंने चिड़ियों का काफिला देखा। बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में एक मतलब कुछ अशार देखें कि एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा।
1: वाह।
0: एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा, रंग भरते हुए सलाखों में, रंग भरते हुए सलाखों में मैंने चिड़ियों का काफिला देखा।
1: क्या
0: बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, किस लिए चुनता है कोई खामोशी का रास्ता। धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, किस लिए चुनता है कोई खामोशी का रास्ता। चलते चलते इस नए जंगल में कैसे आ गए, चलते चलते इस नए जंगल में कैसे आ गए, हम तो समझे थे कि है ये वापसी का रास्ता, हम तो समझे थे कि है ये वापसी का रास्ता।
1: बहुत अच्छा।
0: रात रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, वो भला कब देखती है रोशनी का रास्ता।
1: क्या कहने हैं।
0: बहुत शुक्रिया। सुने कि उसी पे तालियां मिलने लगी जमाने की, जो दास्तां ही नहीं थी कहीं सुनाने की।
1: वाह।
0: उसी पे तालियां मिलने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसी पे तालियां मिलने लगी जमाने की, जो दास्तां ही नहीं थी कहीं सुनाने की।
1: वाह।
0: खुद अपनी लत से लगी है मुझे इधर ऐसी।
1: वाह।
0: खुद अपनी लत से लगी है मुझे इधर ऐसी, मैं राह देखती रहती हूँ सबके जाने की।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं।
0: शुक्रिया।
1: बहुत अच्छे।
0: खुद अपनी लत सी लगी है मुझे इधर ऐसी, मैं राह देखती रहती हूँ सबके जाने की। और शेर सुने कि अना भी तर के ताल्लुक की वजह बनती है,
1: अना भी तर के ताल्लुक की वजह बनती है,
0: अना भी तर के ताल्लुक की वजह बनती है, सलाहियत नहीं होती है जब निभाने की।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने।
0: शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सुने कि अना भी तर के ताल्लुक की वजह बनती है, सलाहियत नहीं होती है जब निभाने की। हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, खबर मिली है मुझे जब से उसके आने की।
1: क्या कहने हैं। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। अना भी तर के ताल्लुक की वजह बनती है, सलाहियत नहीं होती है जब निभाने की। हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, खबर मिली है मुझे जब से उसके आने की। बहुत शुक्रिया। सुने कि मुस्कुरा लेने की आसानी अभी मौजूद है, मुस्कुरा लेने की आसानी अभी मौजूद है, शुक्र कीजिए इश्क लाफानी अभी मौजूद है। मुस्कुरा लेने की आसानी अभी मौजूद है, शुक्र कीजिए इश्क लाफानी अभी मौजूद है। मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं,
1: मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं,
0: मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, पत्थरों के बीच में पानी अभी मौजूद है।
1: वाह अच्छा है भाई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह।
0: मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, बहुत शुक्रिया। मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, पत्थरों के बीच में पानी अभी मौजूद है, यूं तो है सुनसान घर बाजार रस्ते सब मगर।
1: वाह।
0: यूं तो है सुनसान घर बाजार रस्ते सब मगर शहर दिल में एक सैलानी अभी मौजूद है।
1: वाह वाह वाह।
0: यूं तो है सुनसान घर बाजार रस्ते सब मगर शहर दिल में एक सैलानी अभी मौजूद है, मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, पत्थरों के बीच में पानी अभी मौजूद है। और शेर देखें कि शायरों से पूछते हैं और क्या करते हैं आप,
1: शायरों
0: से पूछते हैं
1: और क्या
0: करते हैं आप, शायरी में ये परेशानी अभी मौजूद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया। सुने कि कारे उल्फत में अभी काम बचा है कितना, कैसे बतलाऊं कि नुकसान हुआ है कितना, यूं तो रंगों से मेरी खूब शनासाई थी, यूं तो रंगों से मेरी खूब शनासाई थी, रंग जो उसका चढ़ा है वो नया है कितना।
1: हाय हाय हाय।
0: और शेर सुने कि उसको बस इतना पता है कि उसे देर हुई, उसको बस इतना पता है कि उसे देर हुई, काश वो जानता नुकसान हुआ है कितना।
1: क्या
0: काश वो जानता नुकसान हुआ है कितना। और आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है। सुने कि आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है, इससे अंदाजा लगाएं वो खफा है कितना आजकल।
1: अच्छा है। आहा हा भाई, अच्छा है भाई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है।
0: आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है।
1: आहा।
0: इससे अंदाजा लगाएं वो खफा है कितना। इससे अंदाजा लगाएं वो खफा है कितना। जिस तरह राहे तगाफुल को चुना है उसने।
1: वाह।
0: जिस तरह राहे तगाफुल को चुना है उसने, कौन जाने की सफर साथ बचा है कितना।
1: क्या कहने।
0: और एक और शेर जिसे आप सब रिलेट करेंगे कि उसके बिगड़े हुए लहजे से पता चलता है।
1: वाह।
0: उसके बिगड़े हुए लहजे से पता चलता है, आज दफ्तर में वो हलकान हुआ है कितना।
1: क्या कहने क्या कहने।
0: किसे मालूम है कैसे उजाला कर रहे हैं हम।
1: किसे मालूम है कैसे उजाला कर रहे हैं हम,
0: के शब भर जाग के जुगनू इकट्ठा कर रहे हैं हम।
1: वाह।
0: और शेर की हमें मालूम है उसकी तवज्जो कैसे मिलनी है।
1: वाह।
0: हमें मालूम है उसकी तवज्जो कैसे मिलनी है, सो बस मसरूफ होने का दिखावा कर रहे हैं।
1: आहा आहा, अच्छा है भाई। वाह वाह वाह वाह।
0: हमें मालूम है उसकी तवज्जो कैसे मिलनी है, सो बस मसरूफ होने का दिखावा कर रहे हैं हम, बहुत हिम्मत जुटा के फिर भरोसा कर तो लें लेकिन, बहुत हिम्मत जुटा के फिर भरोसा कर तो लें लेकिन, हमें डर है वही गलती दोबारा कर रहे हैं हम। हमें डर है वही गलती दोबारा कर रहे हैं हम। और ढलेगी रात कब तक ये नहीं परवाह है हमको, ढलेगी रात कब तक ये नहीं परवाह है हमको, है जब तक रोशनी खुद में उजाला कर रहे हैं हम।
1: क्या बात है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत कलाम डॉक्टर भावना श्रीवास्तव साहिबा पेश कर रही थी। दोस्तों जनाब संतोष चौबे साहब,
2: जब जब भी 15 अगस्त आता है तो मुझे अपनी अम्मा की याद आती है। अम्मा का एक रेडियो था जो वो अपने पास रखती थी, और 15 अगस्त के समय ज़रूर उसका उपयोग करती थी। तो ये कविता है अम्मा का रेडियो, जो 15 अगस्त की याद भी दिलाती है। इसका नाम है अम्मा का रेडियो। सिराने रहता था वो उनके किसी दोस्त की तरह, कि जब भी चाहें कर सकें उससे बात। सुबह सवेरे बिस्मिल्ला खान करते मंगल ध्वनि से उनके दिन की शुरुआत, और फिर हरिओम शरण के भजनों के साथ वे लेती अपनी पहली चाय। हम सोकर उठते उसके पहले वे कर लेती अपने पौधों की देखभाल, संगीत सरिता के शास्त्रीय गीतों का रस लेते हुए। लंबी दोपहरी में जब हम रहते काम पर, वे चौपाल पर सुनती लोकगीत, और अक्सर शाम को लौटने पर सुनाती कोई नीति कथा जिसने गहरे छुआ होता उनका मन। 15 अगस्त और 26 जनवरी अब भी विशेष दिन थे उनके लिए। देशभक्ति के गीत अब भी उन्हें जोश से भरते और याद दिलाते उन पुराने दिनों की, जब दादा के साथ वे जाती थी शाला में झंडा वंदन करने। सुबह सुबह नहाने और साफ सुथरी साड़ी पहनने के बाद वे बैठती रेडियो के सामने और ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण कि सबने मिलकर लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी है तो सब कुछ है। तब जब समय नहीं था हमारे पास उनसे बात करने के लिए, रेडियो से बांटा उन्होंने अपना अकेलापन। उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सराहने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं सर, वाह वाह वाह।
2: उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सराहने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी
1: अम्मा की आवाज़।
2: हम सभी लोग 50 साल के होते हैं और अपने अपने अनुभव भी होते हैं। इस कविता का नाम है सुई। सुई धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार। धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार, पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग। सुई अलग थी धागा अलग, पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग। सुई अलग थी धागा अलग। हाथ धीरे से कांपा दिल। अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा, कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा। अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार, कहाँ बन पाया है ठीक ठीक अपना सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के पोर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु अद्भुत संतुलन के साथ, उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था एक आंसू गिरा कि अब गिरा, उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था एक आंसू गिरा कि अब गिरा। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इस तरह इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर।
1: वाह,
3: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। अगली रेडियो रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए पेश है नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेती हुई हमारी पत्रिका परिक्रमा।

परिक्रमा लेकर श्रोताओं आपके बीच हूँ मैं आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं आइए आज की परिक्रमा में सबसे पहले चलते हैं हमारे शहर के मानव संग्रहालय में। श्रोताओं मानव संग्रहालय के अंतरंग सभागार में सुर ताल और लय का एक अद्भुत ही संगम देखने को मिला। स्पीक मै के भोपाल चैप्टर और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित खास शाम को पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार के बांसुरी वादन ने बेहद ही यादगार बना दिया। सभागार में मौजूद संगीत प्रेमियों विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की इस अनुपम प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। पंडित रोनू मजुमदार ने अपनी प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को संगीतमय कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत राग वृंदावन सारंग की धुन तीन ताल अंतरा और झाला जैसी क्लिष्ट शास्त्रीय रचनाओं से की। शास्त्रीय प्रस्तुतियों के बाद पंडित जी ने संत मीरा के प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और प्रसिद्ध लोक धुन पधारो मारे देश की सुरमई प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का भावुक समापन देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा से हुआ, जिसे उन्होंने बांसुरी पर बजाने के साथ साथ खुद गाया भी। इस दौरान पूरा सभागार करतल ध्वनि और देशभक्ति के भावों से गूंज उठा।

मानव संग्रहालय से एलबीटी सभागार। एलबीटी सभागार में मंगलवार की शाम यानी कल से रुद्राक्ष कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 4 दिवसीय नाट्य समारोह का आगाज किया गया। रंग प्रेमियों के लिए आयोजित इस सांस्कृतिक उत्सव अविराम जन कल्याण संस्था द्वारा निर्मित हास्य और हॉरर से भरपूर नाटक मुर्दा घर की प्रस्तुति दी गई। इस नाटक का श्रोताओं ये पहला ही मंचन है। रंगकर्मी सुनील राज द्वारा निर्देशित ये हॉरर कॉमेडी दर्शकों को एक बिल्कुल नया अनुभव देने में कामयाब रही। इसी श्रृंखला में 19 अगस्त को आप देख सकते हैं नाटक फंदी, 20 को सन 2025 और 21 अगस्त को सफेद चांद का मंचन किया जाएगा। श्रोताओं आपको बता दें कि आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर मंगलवार को यानी कल रविंद्र भवन में ललित कला गैलरी में 2 दिवसीय चित्रोत्सव 2026 फोटोग्राफी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, जिसे देखने आप भी शामिल हो सकते हैं। इसमें देश के अलग अलग शहरों से आए 40 फोटोग्राफर्स की करीब 150 चुनिंदा तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। खास बात इस प्रदर्शनी की यह है कि यहां तस्वीर खींचने के लिए कैमरे की तकनीक से ज्यादा कहानी और नजरिए को महत्व दिया गया है।

करता हूँ MCU के ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जिसे नाम दिया गया है अभ्युदय 2026। इसमें पीयूष मिश्रा का शो देखने लायक रहा। लेखक, गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा का ये टॉक शो स्टूडेंट्स के बीच में बेहद ही लोकप्रिय रहा।

आज का परिक्रमा बस यहीं तक। चलते चलते आपको मौसम का हाल दे दें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार श्रोताओं, भोपाल में अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर फिर से चालू हो सकता है, तो इस बदलते हुए मौसम में रखिए अपना और अपनों का ध्यान। इसी इल्तिजा के साथ दीजिए परिक्रमा से आपकी रेडियो दोस्त पूर्वा खले को अनुमति। नमस्कार। मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये है रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। पेश है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना गंगा के पावन तट पर खड़ा वो तेजस्वी दानवीर जिसके लिए त्याग कोई प्रदर्शन नहीं, स्वभाव था। सूर्य की प्रखर किरणों के मध्य जल में स्थिर कर्ण मानो तप, तेज और करुणा का संगम बन गया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस दृश्य को जिस दिव्यता से रचा है, वो केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि भीतर उतरता है।
1: जी हाँ, अब कथा उस संधि क्षण में प्रवेश कर रही है जहां भाग्य अपनी अगली चाल चलने वाला है। गंगा की धारा अभी भी उतनी ही निर्मल है, आकाश में सूर्य उतना ही दैदीप्यमान, किंतु प्रकृति के इस शांत विस्तार के भीतर कोई अदृश्य हलचल जन्म ले चुकी है। कर्ण अपनी उपासना पूर्ण कर चुका है। जल से उठता हुआ वह सूर्य पुत्र मानो स्वयं तेज का प्रतिरूप प्रतीत होता है। तभी तट पर एक सूक्ष्म सी आहट सुनाई देती है। देखने में तो वह क्षण साधारण है, पर महाकाव्य अक्सर ऐसे ही मौन पलों में दिशा बदलते हैं। कौन जानता है कि ये आने वाला अतिथि एक याचक है, देवता है या स्वयं नियति का दूत।
0: श्रोताओं, मनुष्य का वास्तविक मूल्य तब नहीं आका जाता जब उसके पास सब कुछ सुरक्षित हो, बल्कि तब परखा जाता है जब उसके सामने अपने ही तेज का अंश अर्पित करने की घड़ी आ रही हो। कर्ण अब ऐसे ही एक धर्म संकट के द्वार पर खड़ा है जहां दान केवल उदारता नहीं रहेगा बल्कि उसके व्यक्तित्व की अंतिम कसौटी बनने वाला है। आगे का प्रसंग त्याग, तपस्या और आत्मगौरव की ऐसी गाथा है जो शताब्दियों बाद भी हृदय को आंदोलित करती है। आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 की ओर, जहां सूर्य पुत्र कर्ण की महिमा एक नए शिखर को स्पर्श करती है। सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया और बोला।
2: जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रह्लाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, नहीं केवल ऊंची अभिलाषा।
0: ब्राह्मण सबसे पहले कर्ण की दानशीलता, सत्यनिष्ठा और वचन पालन की प्रशंसा करता है। वो उन्हें केवल महान योद्धा नहीं बल्कि शिवी, दधीची और प्रहलाद जैसी त्यागमयी परंपरा का उत्तराधिकारी बताता है। ये प्रशंसा केवल अलंकार नहीं है। दिनकर जी यहां कर्ण के चरित्र की उस ऊंचाई को स्थापित करते हैं जहां मनुष्य अपने वैभव से नहीं अपने त्याग से महान बनता है। यही भारतीय संस्कृति का शाश्वत आदर्श भी है। किंतु यदि हम इस संवाद को ध्यान से सुने तो अनुभव होगा कि यह केवल स्तुति नहीं है। प्रत्येक शब्द मानो कर्ण की आत्मा की परीक्षा ले रहा है। ब्राह्मण बार बार उन्हें उनके वचन, उनके साहस और उनके दान धर्म का स्मरण कराता है। वो जानता है कि जिस मनुष्य का जीवन उसके सिद्धांतों पर टिका हो उसे पराजित शस्त्रों से नहीं बल्कि उसके अपने धर्म की कसौटी पर ही किया जा सकता है। यही इस प्रसंग का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सौंदर्य है।
1: दिनकर जी की लेखनी की यही तो विलक्षणता है। ये संवाद के भीतर भी अनेक स्तर रच देते हैं। ऊपर से यह एक साधारण बातचीत प्रतीत होती है किंतु भीतर नियति अपना जाल बुन रही है। श्रोता भी नहीं जानते कि यह ब्राह्मण वास्तव में कौन है, लेकिन वातावरण संकेत दे रहा है कि आज जो भी मांगा जाएगा वह साधारण दान नहीं होगा, यह ऐसा दान होगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा।
0: दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की महानता इसी में है कि वो पात्रों के बाहरी कर्मों के साथ साथ उनके अंतर मन का भी उतना ही सूक्ष्म चित्रण करता है। रश्मिरथी में दिनकर जी केवल महाभारत की कथा नहीं कहते बल्कि मनुष्य के चरित्र, उसके धर्म, उसकी निष्ठा और उसके आत्मसम्मान का ऐसा विश्लेषण करते हैं जो हर युग में प्रासंगिक बना रहता है। यही कारण है कि ये काव्य केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि प्रत्येक बार नए अर्थों के साथ आत्मा में उतरता है। ये प्रसंग हमें एक और गहरी शिक्षा देता है। किसी मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है और उससे वही सबसे प्रिय वस्तु मांगी जाती है। कर्ण के सामने भी अब ऐसा ही क्षण आने वाला है। उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय, उनकी दानवीरता की सबसे बड़ी परीक्षा और उनके चरित्र की सबसे ऊंची कसौटी अब कुछ ही क्षण दूर है।
1: तो आइए अब सुनते हैं इस अमर प्रसंग का अगला चरण, जहां एक साधारण सा प्रतीत होने वाला याचक ऐसा दान मांगता है जिसे सुनकर स्वयं देवता भी विस्मित रह जाते हैं। आगे की कथा केवल दान की नहीं बल्कि धर्म, वचन, त्याग और अमर मानवीय गरिमा की कथा है। फिर कर्ण कहते हैं,
3: वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मु

0: आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहां जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा।
1: भली भांति कसकर दाता को बोला तुच्छ भिखारी।
2: धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी, ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहां दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जगभर को, सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ।
1: बोल उठा राधेय।
0: आपको मैं अद्भुत पाता हूँ, सुर हैं या यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर होऊंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका धोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही, एक बार भी नाही।
3: श्रोताओं जब ईश्वर परखते हैं तो वे केवल हमारे बाहुबल को नहीं हमारे धैर्य को देखते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में धैर्य ही मनुष्य का असली कवच होता है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक प्रश्नों से घिर जाता है, जब परिस्थितियां हमारी निष्ठा को तौलने लगती हैं, तब लगता है मानो ईश्वर स्वयं विभिन्न रूप धरकर हमारी परीक्षा ले रहे हों।
1: हाँ, और सच तो ये है कि जिनका हृदय विशाल होता है, जिनका संकल्प निर्मल होता है, उनकी देहरी पर तो परीक्षा स्वयं चलकर आती है। यहाँ कर्ण के साथ परिस्थिति साधारण नहीं है, यह केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, यह इतिहास का मोड़ है। फिर भी देखिए वह महामानव अपने सिद्धांत से डिगता नहीं, अपने वचन से हटता नहीं। यही तो महानता है, जब नियति द्वार खटखटाए और मनुष्य शांत स्वर में कहे आइए मैं तैयार हूँ। इस निस्तब्ध तट पर शब्दों का भी

0: शस्त्र परीक्षण हो रहा है। एक ओर भाग्य की धुंधली रेखा, एक ओर भुजबल का उन्मेष प्रखर हो रहा है। यह क्षण अभी प्रस्तावना है, परीक्षा की पूर्ण रात्रि शेष है। आई श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग के भाग चार की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां कर्ण जीवन के इस महासंग्राम में स्वयं को भी दान देने को तैयार है।
1: सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला।
2: धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें, कृपा कर कवच और कुंडल दें।
1: कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को।
3: समझा तो ये और ना कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा स्वयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं, छिपकर आया आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश ना लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों, प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ ना उसके शर अमोग मुझसे टकराकर टूटें। उधर करें बहु भांति पार्थ कि स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। ये तो निहत शरब पर चढ़ आखे तक पद पाना है, जहर पिला मृग पति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वो भी विभेद हरता हूं, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला।
4: दोस्तों, गंगा अब भी उसी शांति से बह रही है। संध्या की अंतिम स्वर्णिम आभा धीरे धीरे जल में विलीन हो रही है। हवा थम सी गई है, मानो प्रकृति स्वयं इस संवाद को सुनने के लिए मौन धारण कर चुकी हो। सामने खड़े हैं कर्ण, निश्चल, तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरे हुए। और अब रहस्य का पर्दा उठ चुका है। याचक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं देवराज इंद्र है। किंतु आश्चर्य ये है कि सत्य प्रकट होने पर भी कर्ण के स्वर में न क्रोध है न शिकायत, वहां केवल विनम्रता है, आत्मगौरव है और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है।
0: यही कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। वे इंद्र को पहचान लेने के बाद भी उन्हें कठघड़े में खड़ा नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि स्वर्ग का राजा मेरे द्वार पर याचक बनकर आया है। यह वाक्य केवल दानवीरता का परिचय नहीं देता, बल्कि उस भारतीय संस्कृति का भी परिचायक है, जहां याचक का सम्मान उसके परिचय से नहीं, उसके आग्रह से किया जाता है। कर्ण जानते हैं कि उनके साथ छल किया जा रहा है, फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते, यही उन्हें असाधारण बनाता है।
4: लेकिन दिनकर जी कर्ण को केवल दानी नहीं दिखाते, वे उन्हें एक विचारक के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कर्ण इंद्र से प्रश्न करते हैं, यदि अर्जुन को बचाना ही उद्देश्य है तो क्या ये युद्ध न्यायपूर्ण रहेगा? क्या किसी योद्धा का कवच पहले ही उतार लेना वीरता कहलाएगा? ये प्रश्न केवल इंद्र से नहीं है, ये हर उस व्यवस्था से है जो विजय के लिए न्याय का मार्ग छोड़ देती है। कर्ण यहाँ पराजय से नहीं डरते, वे केवल अन्याय से असहमत होते हैं।
0: ये काव्यांश सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मैं स्वयं उस तट पर खड़ी होकर वह संवाद सुन रही हूँ। गंगा का वेग कानों में गूंजता है, मध्याह्न का सूर्य जल पर स्वर्ण रेखाएं खींचता है और वातावरण में एक विराट स्तब्धता ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे गंगा स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो, हे सूर्यपुत्र मत टिको, मेरी धारा की तरह निरंतर बहो, शिलाओं से टकराकर भी अपना मार्ग न छोड़ो। तुम्हारा जन्म संग्रह के लिए नहीं, समर्पण के लिए हुआ है। तुम दान के लिए आए हो और आज देवता भी तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर खड़े हैं। यह तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारे तेज का उत्कर्ष है। सूर्य की किरणें मानो उसके कंधों पर हाथ रख कहती हो, स्थिर रहो, क्योंकि जब मनुष्य अडिग रहता है तभी वह देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है।
4: श्रोताओं, आज हम उस क्षण के साक्षी बने जहां कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि वीरता केवल शस्त्र की धार में नहीं, आत्मा की दृढ़ता में बसती है। कवच कुंडल उसके शरीर की रक्षा करते थे, पर उसका सच्चा कवच उसका वचन था। देवराज सामने खड़े थे, नियति प्रश्न बनकर उपस्थित थी, फिर भी कर्ण के स्वर में कंप नहीं आया। उसने तर्क दिया, धर्म की बात की, युद्ध की मर्यादा की बात की और अंततः स्वयं को समतल भूमि पर लाने का निर्णय लिया। ये दान नहीं, यह आत्म गौरव की ज्योति थी। ये घोषणा थी कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होकर ही लड़ूंगा। और अब ये काव्य कथा उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां इस महादान के दूरगामी परिणाम सामने आने लगेंगे। नियति ने अपना बीज बो दिया है, समय उसे फलित करने की तैयारी में है। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग से भाग 5 का काव्य पाठ।
5: जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में,
3: परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोणदेव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही चलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं नियति भेजती रही सदा मेरे पर हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं ये रहस्य भी क्या है खोज खोज कर घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है तो फिर विधि ने दिया मुझे ही क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आ धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी ना सका मैं किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी ना सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया है स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वो कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है ये कि शक्ति बसती न वंश या कुल में बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रतुल में। वो कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए पर मनुष्य मनुष्य तब भी ना कभी सतपथ से टल सकता है बल से अंधड़ को धकेल वो आगे चल सकता है। वो कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तुम पर कुपंथ में कभी जीत के लिए ना पांव धरो तुम। वो कर्तव्य है ये कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर ना लगाओ। देवराज छल छदम स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया हूं मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को धर्म छोड़ भजते ना कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा जो समाज के विषम वहीन में चारों ओर जलेंगे पग पग पर झेलते हुए बाधा निहसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे जिनका निखिल विश्व में कोई नापना होगा मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक ना घबराएंगे निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा।
4: श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना।
0: यह अंश जैसे ही समाप्त होता है, एक क्षण को श्रोताओं के भीतर भी वही मौन उतर आता है जो स्वयं कर्ण के हृदय में था। यहाँ कर्ण केवल अपने दुख का वर्णन नहीं कर रहा, वह नियति से संवाद कर रहा है, देवताओं से प्रश्न कर रहा है और मनुष्य को उत्तर दे रहा है।
4: कर्ण नियति से हारकर भी नियति को ललकारता है। वो कहता है कि वंश नहीं पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, परिस्थिति नहीं चरित्र बड़ा है, और विजय नहीं सत्य पथ का निर्वाह ही असली जय है। यहां कर्ण केवल राधेय नहीं रहता, वो उन सब का प्रतीक बन जाता है जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया, पर जिन्होंने भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दिया। दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो केवल वीरों की विजय का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके आंसुओं को भी उतनी ही गरिमा देता है। दिनकर जी ने कर्ण की पीड़ा को करुणा का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे आत्मसम्मान की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए रश्मि रथी पढ़ते समय हमें कर्ण पर दया नहीं आती, बल्कि उनके प्रति गहरा सम्मान जाग उठता है। यही किसी महान कवि की सबसे बड़ी सफलता होती है,
0: और यही रश्मि रथी की महानता है। यहाँ महाभारत की कथा धीरे धीरे जीवन दर्शन में बदल जाती है। कर्ण अपने दुखों की गिनती अवश्य करते हैं, किंतु किसी से दया नहीं मांगते। वे अपने भाग्य को कोसते हैं, किंतु अपने साहस को कभी छोटा नहीं होने देते। ये अंतर ही उन्हें साधारण मनुष्य से असाधारण व्यक्तित्व बना देता है। वे परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने चरित्र की कसौटी बना लेते हैं। श्रोताओं, संध्या की यह बेला अब धीरे धीरे रात्रि की गोद में समाने लगी है। कर्ण की वाणी अभी भी गंगा की लहरों पर गूंज रही है, और उनके आदर्श हमारे मन में दीपक की लौ की तरह जल रहे हैं। अब समय है आज की इस काव्य यात्रा को यहीं विराम देने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, और इसे आप तक पहुंचाया हम सभी साथी कलाकारों ने। मैं भगवती सक्सेना,
4: मैं संदीप शर्मा,
5: और मैं आपका दोस्त दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक हमें दीजिए अनुमति।
4: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

अभी आप सुन रहे थे भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम काव्य गुंजन में 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं दीपक।
2: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आपको बताते हैं हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें पूरा देश और ये दुनिया ही मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही अर्थों में वे एक महान वैज्ञानिक हैं और मिसाइलों के सृजक के रूप में विख्यात हैं।
3: श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्म एक गरीब पर ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे पर अत्यंत कुशल, दक्ष और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पिता के लिए अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान काम नहीं था, पर वे विनम्र और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने और लाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली बालक अब्दुल कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
2: डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक लेख के अनुसार उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। इस पुजारी परिवार के मानवीय मूल्यों ने कुछ हद तक कलाम साहब को प्रभावित किया। भगवद गीता में कही गई गूढ़ बातों और उनके संदर्भ को उन्होंने समझा। वे आज भी शुद्ध शाकाहारी और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें इस सुसंस्कृत पड़ोसी से बहुत प्रेम और स्नेह मिला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम जिला मुख्यालय के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक उनके साथ भी गए। उन्होंने कलाम को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
3: डॉक्टर कलाम ने शॉर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल का संचालन रामेश्वरम के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता था। वहां वे छात्रावास में रहे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा। पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने अध्यापकों का भी दिल जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए सन 1950 में वे समीप के नगर तिरुचिरापल्ली गए और वहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। डॉक्टर कलाम वहाँ 4 वर्ष तक रहे। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में उनकी रुचि भौतिकी में हो गई। BSc उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम यानी एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि वे विमान चालक बनेंगे। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अंत में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
2: मद्रास का DMIT कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में प्रवेश लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उनके सामने 2 अवसर थे। दोनों उनकी पसंद के थे। पहला था वायुसेना में भर्ती होकर पायलट के रूप में आगे बढ़ना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDAP में निदेशक का कार्यभार संभालना। उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे और दोनों ही स्थानों पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे समय पर वायुसेना के साक्षात्कार के लिए गए और साक्षात्कार उनकी आशा के अनुकूल हुआ। इस साक्षात्कार के एक सप्ताह बाद उन्हें देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना था। यहाँ शारीरिक योग्यता के साथ साथ अन्य अनेक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का साक्षात्कार था। 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया जाना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। उन्हें लगा कि वे वायुसेना में जाने का अवसर गंवा चुके हैं। उन्हें दुख भी था। फिर उसके बाद वहां से वे ऋषिकेश गए। पावन गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे पास ही स्थित शिवानंद आश्रम में गए। स्वामी जी के दर्शन कर वे बेहद प्रभावित हुए। वे स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वायुसेना में काम करने का अवसर खो देने के कारण वे दुखी हैं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना था वो हो चुका है, इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि ये बेहतरी और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की ये बातें सुनकर डॉक्टर कलाम जी को शांति मिली। इसके बाद वो वहां से चल दिए और दिल्ली आ गए।
3: कुछ समय पश्चात ही उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। शायद उनके भाग्य में यही काम करना लिखा था। वे 3 वर्ष उत्तर भारत में ही रहे। इस दौरान 1 वर्ष तक वे औद्योगिक नगरी कानपुर में भी रहे। अलग अलग लोगों से उनका संपर्क हुआ, पर उनका मन हमेशा रामेश्वरम की शांति के लिए लालायित रहता था।
2: इसके बाद उनका स्थानांतरण बेंगलुरु में नव स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। डॉक्टर कलाम कार्यभार संभालने के लिए बेंगलुरु गए। कुछ समय बाद उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया। इस दल को 3 वर्ष में पूर्ण रूप से स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व सौंपा गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कराना चाहते थे। वे जब भी बेंगलुरु का दौरा करते तब इस परियोजना की प्रगति को अवश्य देखते थे। हॉवरक्राफ्ट का नाम भगवान शिव के वाहन के नाम पर नंदी रखा गया था।
3: उसके बाद कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया और यह परियोजना भी ताक पर रख दी गई। एक बार वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के प्रमुख ने कलाम से कहा कि एक उच्चाधिकारी इस परियोजना को देखने आ रहे हैं। वे उच्चाधिकारी नियत दिन आए। उन्होंने परियोजना और उसकी प्रगति के विषय में पूछताछ की और कई सवाल भी किए। डॉक्टर कलाम को यह पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। वास्तव में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के निदेशक प्रोफेसर M.G. के मेनन थे।
2: कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु एक साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन ने कलाम का साक्षात्कार लिया और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस तरीके से साक्षात्कार किया, डॉक्टर कलाम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया है। अगले दिन से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर विभाग में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का माहौल बहुत ही अच्छा और अनुकूल था और सरकार के अन्य विभागों से पूरी तरह से अलग।
3: सन 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के लिए चुना गया। पूरे परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का अवसर मिला है। 6 महीने बाद कलाम भारत लौटे। देश का प्रथम रॉकेट नाइक अपाशे विदेश से उपहार में मिला। इसे 21 नवंबर 1963 को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। डॉक्टर कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। उसकी सफलता के बाद वैज्ञानिक और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। इसके बाद डॉक्टर साराभाई द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि उपग्रह विमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV और कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया।
2: और इसी बीच सन 1968 में भारतीय रॉकेट समिति यानी इंडियन रॉकेट सोसाइटी की स्थापना की गई। भारत के पूर्वी किनारे पर मद्रास से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में श्री हरिकोटा द्वीप में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नामक एक नई सरकारी एजेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए थुम्बा में विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए इस प्रयोगात्मक स्टेशन की सुविधा का उपयोग करना और उसका लाभ उठाना सुनिश्चित हो गया।
3: स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती 15-20 वर्षों के दौरान हमारी सेना को अतिरिक्त पुर्जे और अन्य रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी शक्तियां अपनी पुरानी और अप्रचलित सैन्य सामग्री हमारे जैसे विकासशील देशों को देकर यह जताती थी जैसे वे हम पर कृपा कर रही हों। विदेशी इन उपकरणों की आपूर्ति कर विकासशील देशों से बहुत अधिक धन कमाते थे। इस कमी को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए एकीकृत नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। प्रोग्राम के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 12 से 15 घंटे तक प्रतिदिन काम करके डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मिसाइलों का जब गहन और विस्तृत अध्ययन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 4 प्रकार की मिसाइलें बहुत ही आवश्यक हैं।
2: पहली है जमीन से जमीन पर मार करने वाली और दुश्मन के टैंकों जहाजों और सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली मिसाइल।
3: दूसरी है जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सकती है।
2: और तीसरी है आकाश से आकाश में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो आकाश में आने वाले दुश्मन के बम वर्षक विमानों और मिसाइलों की टोह लगाकर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर सके। और चौथी मिसाइल है श्रोताओं ऐसी मिसाइल जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मन के ठिकानों और उनकी सैन्य सामग्रियों का सफाया किया जा सके।
3: इसके बाद रोहिणी परियोजना के प्रमुख के रूप में डॉक्टर कलाम ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने और मिलने जुलने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने उपग्रह प्रमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का कार्य किया और SLV-3 की सफल उड़ान में कामयाब रहे। डॉक्टर कलाम को महसूस हुआ कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मिसाइलों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए डॉक्टर कलाम आज भी उनके कृतज्ञ हैं।
2: अंतरिक्ष विभाग में कार्यभार संभाल लेने के बाद भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं का लाभ उठाया। वे संगठन के निकट संपर्क में रहे। वहां पर वैज्ञानिकों के समूह ने मिसाइलों को विकसित करने में उनकी सहायता की थी। मिसाइलों के विकास में डॉक्टर कलाम ने सबसे अधिक योगदान दिया था। उनके अनुसार अग्रभाग यानी कि सामने के हिस्से पर बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल वास्तव में एक विध्वंसक हथियार है। अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों और भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया या यंत्र विधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइल निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता लगा सकती हैं। मिसाइल भेदी मिसाइलों का प्रयोग दागी गई मिसाइलों को उनके मार्ग में ही रोककर नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन देश मिसाइलों का उत्पादन करते थे। भारत ने पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि जैसी अलग अलग मिसाइलों के उत्पादन और निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। श्रोताओं, भारत विश्व में छठा मिसाइल उत्पादक देश है।
3: एक दिन 30 दिसंबर 1971 को दिल्ली में एक विशिष्ट समिति की बैठक में भाग लेने के बाद डॉक्टर कलाम थुम्बा वापस लौट रहे थे। उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई थुम्बा में ही थे। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली से उन्हें टेलीफोन कर बैठक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनसे कहा कि वे मुंबई जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर साराभाई से थुम्बा हवाई अड्डे पर मिलने की इच्छा जाहिर की। परंतु डॉक्टर कलाम जब थुम्बा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ घंटे पहले डॉक्टर साराभाई का स्वर्गवास हो गया है। इस घटना से डॉक्टर कलाम को बहुत गहरा दुख पहुंचा। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग का कार्यभार डॉक्टर सतीश धवन को सौंपा गया। डॉक्टर धवन ने SLV-3 की व्यवस्था डॉक्टर कलाम के हाथों सौंप दी।
2: इसके बाद सन 1975 में इसरो एक सरकारी संगठन बन गया और उसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। सन 1976 में 102 वर्ष की आयु में डॉक्टर कलाम के पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद ही उनकी माताजी का भी देहांत हो गया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर कलाम ने अपने आप को संभाले रखा। इसके बाद एक बार फिर डॉक्टर कलाम को इसरो से रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL में ले जाने की योजना शुरू हो गई। इसी बीच 18 जुलाई 1980 को 8:03 पर भारतीय उपग्रह प्रमोचन यान यानी SLV-3 श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। समस्त चरणों को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया और रोहिणी उपग्रह को निर्धारित समय पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जब डॉक्टर कलाम केंद्र के परिसर से बाहर आए तो लाश से भरे उनके सहकर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। प्रोजेक्ट की सफलता की घोषणा तत्काल रेडियो और TV पर कर दी गई।
3: तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलता पर पूरे दल को बधाई दी। भारत इस प्रकार की असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला विश्व में 5वां देश बन गया। 26 जनवरी 1981 को डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जून 1982 से डॉक्टर कलाम ने अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात उनकी सेवाओं के लिए चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की। इसके बाद संशोधित ASLV का निर्माण किया गया जिसमें पेलोड 40 किलोग्राम से बढ़ाकर 150 किलोग्राम कर दिया गया। 26 जून 1984 को डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विशेष रूप से सेना के लिए विकसित डेविल मिशन का सफल परीक्षण किया गया।
2: इसकी प्रगति देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी परीक्षण स्थल पर गए थे। अगस्त 1985 में डॉक्टर कलाम को अमेरिकी वायुसेना ने अपनी निपुणताओं का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनके साथ उनके 3 अन्य सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। इसी बीच 16 सितंबर 1985 को श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर श्रीहरिकोटा रेंज से पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम भार वाले बम ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पश्चिमी राष्ट्रों ने सफलता पर चिंता प्रकट की और 7 देशों ने भारत को आवश्यक कच्चा माल नहीं देने का निर्णय किया। परंतु इसके बाद भी अपनी क्षमता को सिद्ध करते हुए भारत ने 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साथ ही जाधवपुर विश्वविद्यालय और उसके बाद IIT मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 25 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। वे प्रधानमंत्री को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों और साथ ही वैज्ञानिक विकास के संबंध में परामर्श देते और उनका मार्गदर्शन करते रहते।
3: केंद्र सरकार ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल विकसित की। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी मालवाहन क्षमता 1000 किलोग्राम है। इसका प्रयोग एक युद्ध अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने पराध्वनि प्रणाली यानी सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो शत्रु के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए भी डॉक्टर कलाम ने एक शक्तिशाली मिसाइल विकसित की है। यह मिसाइल आकाश से जमीन पर मार कर सकती है। अब वे इसे राडार प्रणाली से जोड़कर और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस प्रकार चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं।
2: श्रोताओं, सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग पत्र दे दिया और विज्ञान की सेवा करने की योजना बनाई। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला और इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने उनसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2002 को काफी बहुमत से डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और इस प्रकार श्रोताओं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्रोताओं,
3: सदैव मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर कलाम सरल, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे मित्रों और सहकर्मियों की बात शांतिपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सरल ढंग से समझाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सरल और महान वैज्ञानिक अपने प्रयासों में प्रगति करते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करें।
2: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जो आज केंद्रित था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
4: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
5: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हुए राजस्थान के अलवर नगर में गए थे और लोगों के अनुरोध पर कई दिन ठहरे भी थे। हम लोगों ने उनके द्वारा लिखित पत्रों और दूसरे संस्मरणों से ये जाना कि वहां के महाराजा मंगल सिंह जी से उनकी भेंट हुई थी और कैसे पश्चिमी सभ्यता के कायल महाराजा ने स्वामी जी की संगत में असली भारतीय संस्कारों को पहचाना और उनके अनुयायी संस्कारों का विवरण हमें प्राप्त है। स्वामी जी से जुड़ी अनेकों कहानियां और घटनाएं आज भी अलवर वासियों से सुनी जा सकती हैं। अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी ने अलवर वासियों को बेहद प्रभावित किया था। उनके उदाहरणों, उपदेशों और जोशीले कथनों से वहां के लोगों ने एक नया आस्वाद पाया और वे उनके प्रति अधिक आकृष्ट हुए।
1: एक वृद्ध भी स्वामी जी के पास नित्य आते, प्रश्न पर प्रश्न करते रहते और स्वामी जी के आशीर्वाद की याचना करते। स्वामी जी ने भी उन्हें कुछ साधना प्रणाली सिखाई थी, किंतु वृद्ध उसका अभ्यास नहीं करते थे। अंत में स्वामी जी के धैर्य की सीमा टूट गई। उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन उसे दूर से आते देखते ही मौन धारण कर लिया। उन्होंने उस वृद्ध के किसी प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, दूसरे बंधु बांधवों के अभिवादन आदि का भी कोई उत्तर नहीं दिया। कोई भी यह सोच समझ नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। इस प्रकार 1.5 घंटे बीत जाने पर भी स्वामी जी जब काष्ठ मूर्तिवत बैठे रहे, तब क्रुद्ध और क्षुब्ध हो वृद्ध अपने आप बड़बड़ाता हुआ चला गया। तभी स्वामी जी बच्चे की तरह हंसी से खिलखिला पड़े और अन्य लोग भी साथ ही हंसने लगे। अंत में एक युवक ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप उस बूढ़े के प्रति इतने कठोर क्यों हुए? तब स्वामी जी ने अत्यंत सरल और मृदु भाव से कहा,
2: देखो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे उपदेश का पालन करना चाहते हो और करने की सामर्थ्य भी है। किंतु देखा ना, ये बूढ़ा अपने जीवन के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इंद्रिय भोग में व्यतीत कर अब सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन के अयोग्य होकर सोचता है कि चाहने मात्र से भगवान को पा जाएगा। सत्य की उपलब्धि के लिए पौरुष और उद्यम, जो उद्यम नहीं कर सकता उस पर भगवान की दया होगी कैसे? जिसमें पौरुष नहीं है वो तो तमोगुण से भरा है। अर्जुन अपने पौरुष का परित्याग कर रहे थे, इसी से तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वधर्म पालन का आदेश दिया था, जिससे वे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर सत्व गुण, चित्त शुद्धि, कर्म त्याग एवं आत्मसमर्पण के योग्य हो सके। शक्तिमान हो, पौरुष युक्त बनो। मनुष्य यदि वीर्यवान और शक्तिवान हो सके तो उसके दुष्कर्म करने पर भी मैं उसके प्रति श्रद्धा करता हूं, क्योंकि उसका साहस और वीरत्व ही एक दिन उसे कुपथ त्याग की प्रेरणा देंगे और फिर वो कभी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म नहीं करेगा और इस प्रकार अंततोगत्वा वो सत्य की उपलब्धि करने में समर्थ हो सकेगा।
0: स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण कर अलवर के कई युवकों ने संस्कृत सीखना चाहा। स्वामी जी उन लोगों को पढ़ाया करते थे। वे कहा करते थे,
2: संस्कृत पढ़ो और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों के विज्ञान का भी अनुशीलन करो और सभी वस्तुओं को समीचीन एवं यथार्थ रूप से देखना और बोलना सीखो। परिश्रम करो ताकि हम लोगों के इतिहास को विज्ञान सम्मत भित्ति पर नए रूप से प्रस्तुत कर सको। अभी तो हम लोगों के इतिहास का कोई सिर पैर ही नहीं, इसकी घटनाएं कालानुक्रम की यथार्थता और शुद्धता से रहित हैं। अंग्रेजी ने हम लोगों के देश का जो इतिहास लिखा है उससे हम लोगों के मन में दुर्बलता ही आएगी, क्योंकि वे केवल हमारे पतन और अवनति का ही उल्लेख करते हैं। जो विदेशी हम लोगों की रीति नीति तथा हम लोगों के धर्म और दर्शन से बहुत कम परिचित हैं, वे विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से भारत का इतिहास कैसे लिख सकते हैं? इसलिए स्वभावतः अनेक भ्रांत धारणाएं और गलत निष्कर्ष आ गए हैं। तथापि ये बात भी माननी होगी कि विदेशियों ने ही हमें ये मार्ग दिखाया है कि हम लोगों को अपने प्राचीन इतिहास के संबंध में किस प्रकार अन्वेषणा करनी होगी।
0: स्वामी जी देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे और ये भी जानते थे कि अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति को जाने बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वे कहते थे,
2: भारत का इतिहास भारतीयों को ही लिखना होगा, अतएव विस्मृति के सागर से अपना लुप्त और गुप्त राशि के उद्धार के लिए कमर कस लो। किसी के बच्चे के खो जाने पर कैसे वो जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन नहीं लेता, उसी तरह जब तक भारत के गौरवमयी अतीत को जन मन में पुनरुज्जीवित नहीं कर पाते हो तब तक विश्वास मत करो। वही होगी सच्ची और स्वाभाविक राष्ट्रीय शिक्षा, और इस शिक्षा की प्रगति के साथ साथ राष्ट्रीय भावना जागृत हो उठेगी।
0: एक दिन स्वामी जी ने पूछा, नजदीक में कोई साधु रहता है क्या? उत्तर में एक व्यक्ति ने बताया, थोड़ी दूर पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी रहते हैं। स्वामी जी उसी समय उस व्यक्ति के साथ ब्रह्मचारी से मिलने चले। ब्रह्मचारी संभवतः वैष्णव और सन्यास विरोधी थे। गेरुआधारी सन्यासी को दूर से देखते ही उन्होंने क्रुद्ध स्वरों से गेरुआ की निंदा और सन्यासियों पर गालियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। स्वामी जी के इन सब पर ध्यान दिए बिना ब्रह्मचारी के सम्मुख उपस्थित होने पर ब्रह्मचारी ने अभद्र भाव से कहा,
3: तू गेरुआ क्यों पहनता है? मैं गेरुआधारी सन्यासी को फूटी आंखों भी देख नहीं सकता।
4: जी माफ कीजिए, मैं तो अपने गुरुजी के कहने पर गेरुआ वस्त्र पहनता हूँ। मुझे तो आपके जैसा उजला सफेद वस्त्र ही पसंद है।
3: ठीक है, बता क्यों आया है मेरे पास?
4: जी ईश्वर और धर्म के संबंध में आपसे जानना चाहता हूँ।
3: तुझे क्या ये गंभीर विषय समझ में आएगा?
4: जी कोशिश करूंगा समझने की।
3: ठीक है, कुछ खाएगा? भूखा है?
4: जी नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ।
3: भीख में मिला ही क्या होगा जो खाने की बात कर रहा है? मैं तुझे अच्छा भोजन दूंगा।
4: जी मैं तो सन्यासी हूँ, जो रूखा सूखा मिल जाता है उसी में संतोष कर लेता हूँ।
3: अच्छा, हम अच्छा खाना खाते हैं जानकर तुझे जलन हो रही है? जा दूर हो जा, खाएगा नहीं तो दूर हो।
0: स्वामी जी प्रणाम करके वापस आ गए और बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे,
4: बच्चा तूने अच्छा साधु दिखाया, कितना तीखा मिजाज और कैसी गाली गलौज की चोट। अरे बाप, मैं तो उसकी भाव भंगिमा देखकर मन ही मन खूब आनंद ले रहा था।
0: वे ब्रह्मचारी की बातों और भंगिमाओं की नकल कर खूब हंसने लगे। साथियों ने भी मजा लिया। नकल करके वे बोलते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह भी बीत कर जब 7 सप्ताह पूरे हो

0: खाने जैसा लाभ मिलता है।
1: शिष्य झेप गया और तेल मलना बंद करके जल्दी से नहाने चला गया।
2: भोजन के बाद शिष्य ने बातचीत शुरू की। उसने कहा,
3: स्वामी जी, आप सत्यनिष्ठा, साहस, उद्यम, निष्काम कर्म इत्यादि उपदेश देते हैं। इन उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अर्थोपार्जन के लिए नौकरी करते हैं। अतः हम इसे निस्वार्थ सेवा कैसे कह सकते हैं? नौकरी करना तो अनंत दासत्व है। इसके अतिरिक्त इन दिनों व्यवसायी जीवन ऐसा हो गया है कि एक व्यापारी के लिए सत्य और सरलता का निर्वाह करना एक प्रकार से असंभव हो गया है। स्वामी जी, अगर हमें इस संसार में कार्य करना है तो अपनी नैतिकता का दृढ़ता से पालन करना संभव नहीं है।
0: देखो, इस विषय पर मैंने भी बहुत चिंतन किया है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने चरित्र की रक्षा करते हुए कोई भी सचमुच अर्थोपार्जन करना नहीं चाहता है। यहां तक कि कोई भी इस विषय में विचार तक नहीं करता है और न कोई इसे समस्या के रूप में अनुभव ही करता है। ये हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष है।
3: फिर हमें क्या करना चाहिए? जीने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। नैतिकता की रक्षा करते हुए धन कमाना क्या संभव है?
0: मुश्किल की बात क्या है जानते हो? लोग समझते हैं शिक्षा का मतलब है नौकरी करना। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूँ कि यदि कोई शिक्षित युवा कृषि कार्य को अपना पेशा या व्यवसाय बना लेता है तो इसमें कोई क्षति नहीं है, मगर यदि तुम किसी को ऐसा करने की सलाह दो तो वो मुंहतोड़ जवाब देता है, तब मैंने इतनी शिक्षा क्यों अर्जित की? क्या देश में प्रत्येक के लिए किसान बनना आवश्यक है? हमारा देश पहले से ही किसानों से भरा पड़ा है, इसी से इसका विनाश हुआ है।
3: हाँ, ये बात तो है, पढ़ लिख कर आदमी हल क्यों चलाएगा?
0: राजर्षि जनक ने एक हाथ से हल पकड़ा और दूसरे से वेद का अध्ययन किया। हमारे प्राचीन ऋषिगण कृषक थे। इतना ही नहीं, देखो अमेरिका ने कृषि का विकास कर कितनी प्रगति की है। मेरा ये तात्पर्य नहीं कि हमें इस पेशे को उस प्रकार अपनाना चाहिए जिस प्रकार अपने देश के अशिक्षित करते हैं। हमें इसके विज्ञान को जानना चाहिए और अपने कृषि के विकास में उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक ज्ञान अर्जित कर हमें बुद्धिमान व्यक्तियों की भांति कार्य करना चाहिए। किंतु इन दिनों ज्यों ही गांव के लड़के अंग्रेजी की एक दो किताब पढ़ लेते हैं त्यों ही वे शहर की ओर भागते हैं। वे नगरीय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और नौकरी शुरू करते हैं। इसी से अन्य देशों की भांति भारतीयों ने प्रगति नहीं की है।
3: पर हमारे देश में किसानों की तो बहुत दुर्दशा है स्वामी जी।
0: इन सब का मुख्य कारण ये है कि हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ग्रामवासियों की नगरों में जाने की प्रवृत्ति ध्यान देने योग्य है। एक किसान का बेटा थोड़ी सी शिक्षा पा लेने के बाद अपनी पैतृक वृत्ति छोड़कर शहर में जाता है और गोरे लोगों के अधीन नौकरी करता है। यदि शिक्षित लोग गांव में रहने जाएं तो छोटे गांव भी विकसित हो जाएंगे और यदि कृषि कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो तो उपज भी अधिक होगी। इस प्रकार कृषक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी, वे अधिक और बेहतर चीजें खरीद सकेंगे और इस तरह हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप भी समाप्त हो जाएगा।
3: अभिशाप? वो क्या है स्वामी जी?
0: हमारी जात पात की प्रथा, ऊंच नीच की भावना, दूसरों को नीचा और हीन समझना, भाईचारे की भावना तो समाज में है ही नहीं। यदि तुम्हारी तरह के शिक्षित लोग गांव में जाएं, कृषि कार्य करें, ग्रामीणों से मिलें जुलें और उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार करें, घृणा ना करें, तो तुम देखोगे कि वे इतने अभिभूत हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देंगे। और हम लोगों के लिए आज अत्यावश्यक है जन साधारण को शिक्षा देना, अशिक्षित लोगों को धर्म के ऊंचे ऊंचे भाव बताना और पारस्परिक सहानुभूति तथा प्रेम का होना, और ये होगा।
3: वो कैसे होगा स्वामी जी?
0: क्यों, क्या तुम नहीं देखते हो? यदि कोई ग्रामवासियों से घुलता मिलता है तो शिक्षित व्यक्ति की संगति के लिए वे कितने उत्सुक रहते हैं। ज्ञान पिपासा प्रत्येक व्यक्ति में रहती है, इसी से जब वे शिक्षित व्यक्ति का सहचर्य पाते हैं तो वे उसे घेर कर बैठ जाते हैं और वो जो कुछ भी कहता है उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं। यदि शिक्षित लोग ग्रामवासियों की इस मनोवृत्ति का लाभ उठावें, हर शाम उनकी एक टोली को अपने घर बुलाकर कहानियों और नीति कथाओं के द्वारा उन्हें शिक्षा दें, तो राजनैतिक आंदोलन कर हजारों वर्षों में जो हम नहीं कर सकेंगे, उससे 100 गुना अधिक फल ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग 10 वर्षों में ही प्राप्त कर लेंगे।
2: दूसरे दिन 28 मार्च को स्वामी जी ने अलवर के भक्तों से विदा ली। अलवर में स्वामी जी के आचार्य भाव का विकास हुआ था। उन दिनों वे ज्ञान, भक्ति और भाव का निसंकोच भाव से मुक्त वितरण करते थे।
1: अलवर से निकलकर स्वामी जी वहां से 18 मील दूर पांडुपोल की तरफ चले। उनकी इच्छा तो पैदल चलने की थी, पर तीखी धूप होने से मित्रों ने मना किया और कहा, रथ नामक एक तरह की ढकी हुई बैलगाड़ी से चढ़कर जाना उचित है। तब वे उन लोगों की बातों को टाल नहीं सके। केवल यही नहीं, अलवर के समस्त अनुरागी भक्तों ने उनके साथ कम से कम 50-60 मील तक चलने की अनुमति मांगी। उन लोगों को छोड़ देने की स्वामी जी की इच्छा थी, परंतु सब आग्रह देखकर तथा नहीं कहने से उन लोगों को दुख होगा, ये जानकर वे सहमत हुए।
2: पांडुपोल पहुंचकर उन लोगों ने स्थानीय हनुमान मंदिर के प्रांगण में रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन उन लोगों ने पैदल 16 मील दूर स्थित टाहला गांव को प्रस्थान किया। उस पर्वतीय पथ के वन से आच्छादित एवं जंगली पशुओं से भरपूर होने पर भी स्वामी जी की कभी गंभीर और कभी रसिकता पूर्ण मधुर बातों और सुमधुर संगीत से मुग्ध हो सबने आनंद पूर्वक रास्ता तय किया।

0: कहला में नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर के बगल में उन लोगों ने रात्र भर वास किया। विश्राम काल में स्वामी जी ने उन लोगों को समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, विष की उत्पत्ति, विषपान कर महादेव का मृत्युंजय नाम धारण करना आदि विषयों की एक नवीन व्याख्या की।
1: समुद्र का तात्पर्य है माया रूपी समुद्र। ये रूप रस गंधादिमय माया रचित ये विचित्र संसार, यहां इंद्रियों के भोगने योग्य अनेक वस्तुएं हैं। इन सब का जितना भोग किया जाए उस भोग के फल स्वरूप उससे उतना ही विष उत्पन्न होता है। ये विष आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक है, अतएव सर्वत्यागी सन्यासी के निकट वो विष व्यर्थ एवं निस्तेज होता है। सन्यासी माया के इंद्रजाल में नहीं फंसते। माया का नाश कर मृत्यु के ग्रास से संसार की रक्षा करते हैं और सबको दिखा देते हैं कि माया जयी पुरुष मृत्यु को भी जीत लेते हैं।
2: ये कहकर स्वामी जी मृत्युंजय महादेव के सम्मुख ध्यान मग्न हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यात्रा शुरू हुई और 18 मील दूरवर्ती नारायणी नामक एक देवी स्थान में समाप्त हुई। नारायणी में हर वर्ष एक खास दिन को विशाल मेला लगता है और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से अनगिनत नरनारी एकत्रित होते हैं। यहाँ रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और एकाकी 16 मील रास्ता पार कर बसवा नामक रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए। वहां से उन्होंने जयपुर की यात्रा की। थोड़ी दूर पर बंदीकुई नामक स्टेशन पर अलवर का उनका एक पूर्व परिचित भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी के साथ जयपुर जाने के लिए वे भी उसी ट्रेन पे सवार हुए। जयपुर पहुंचने पर वो व्यक्ति स्वामी जी का एक चित्र खींचने के लिए बारंबार आग्रह करने लगा। अनिच्छा पूर्वक ही स्वामी जी को राजी होना पड़ा। परिवारजक रूप में स्वामी जी का यही प्रथम चित्र है।
0: इतने ज्ञानी होने के बावजूद स्वामी जी के मन में हमेशा ज्ञान की प्यास रहती थी। मौका पाते ही वे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर लेते थे। कोई विद्या सीखने के लिए उन्होंने कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। जहाँ भी जो भी मिले गुरु मानकर कुछ सीख लिया। जयपुर में स्वामी जी मात्र 2 सप्ताह ठहरे थे। इस अवधि में एक सुपंडित व्याकरण विद से परिचय होने पर उन्होंने उनसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ना शुरू किया। किंतु इस शास्त्र में विलक्षण पांडित्य होने पर भी पंडित जी की अध्यापन प्रणाली सहित प्रथम सूत्र की व्याख्या किए जाने पर जब उन्होंने देखा कि उनका तात्पर्य स्वामी जी को बोधगम्य नहीं हुआ, तब चौथे दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मुझे लगता है कि जब 3 दिनों में भी मैं आपको प्रथम सूत्र का ही अर्थ नहीं समझा सका तब मुझसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
2: इस प्रकार की बात से स्वभावतः विशेष लज्जित हो स्वामी जी ने दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जैसे हो अपने ही प्रयास से वे उक्त भाष्य का अर्थ समझेंगे और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे अन्य किसी और मन नहीं लगाएंगे। संकल्प कर एकांत स्थान में उसे गंभीर मनोयोग के प्रभाव से पंडित जी के द्वारा जो 3 दिन में नहीं हो सका उसे अपनी चेष्टा से स्वामी जी ने 3 घंटों में प्राप्त कर लिया। कुछ ही देर बाद वे पंडित जी के समक्ष उपस्थित हो उस भाष्य की व्याख्या करने पर प्रवृत्त हुए। तब उनकी सुचिंतित सरल एवं गूढ़ तर्कपूर्ण व्याख्या सुनकर पंडित जी स्तंभित हो गए। स्वामी जी बिना प्रयास के ही सूत्र पर सूत्र अध्याय पर अध्याय पढ़ने लगे। इस घटना का उल्लेख कर वे बाद में कहा करते,
1: मन में यदि प्रबल आग्रह हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। यहां तक कि पर्वत भी चूर चूर होकर धूलीकरण में बदला जा सकता है।
0: जयपुर में स्वामी जी संसार चंद्र सेन नामक एक सज्जन के घर पर 3-4 दिन ठहरे थे। वहां प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता था। स्वामी जी भी बिना थके देर रात तक उन्हें भजन कीर्तन आदि सुनाया करते थे।

सेन महाशय की पत्नी ज्योतिर्मयी देवी अत्यंत धर्म परायणा महिला थी। स्वामी जी के चरणों में बैठकर वे अपने को धन्य मानती थी। स्वामी जी ने जाते समय उन्हें गीतों की एक पुस्तक दी थी, जिसमें स्वरचित एवं स्वहस्त लिखित कई गीत थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

to him. 90.8 megahertz radio azad hind desh ka channel desh ke liye. दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब हमारी आज की सुबह की सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारा ये प्रसारण निरंतर जारी रहेगा रात्रि 10 बजे तक। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। अब दीजिए अनुमति आपके अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले को। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन।

नमस्कार। हमने आज ऐसे कुछ रचनाएं चुनी हैं जिसमें नदियों का थोड़ा जिक्र है। राग तिलक कामोद से हम लोग अपना पूजा आरंभ कर रहे हैं। राग तिलक कामोद में झप ताल 10 मात्रा में निबद्ध रचना है। सप्त सुरन को ध्यान धरिए गुनिजन, विषम भवसागर से पार उतरिए। सप्त सुरन को ध्यान धरिए गुनिजन। इसके पश्चात मध्य लय 3 ताल में रचना, नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी, डगर चलत मोसो करत रार, अब नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ भारती। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कलम से लिखी हुई कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे हमारे आसपास की ही कहानी हो। मनुष्य का अधिकार उसका वर्चस्व होता है, और अगर अधिकार ना हो तो उसका मान सम्मान भी नहीं होता है, और जहां मान सम्मान होता है वहां अधिकार होता है। कुछ इसी तरह की ताने बाने से बुनी हुई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है सुजान भगत। तो आज के कार्यक्रम में हमने कहानी चुनी है सुजान भगत।

अक्सर सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 साल से लगातार एक लगा रहा था। उधर गुड़ का भाव तेज हो गया, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए थे अब उसके। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हलके के हैंड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। धन्य भाग हमारे, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जुबान नहीं सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। एक ढोलक आ गई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा।

अब सब सुजान के दम पर जुलूस निकलने लगा। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम नहीं थी। कभी हाकिम लोग चखते तो कभी महात्मा। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी चाहिए, साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था, सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए हों। जो काम गांव में किसी ने न किया, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने करके दिखाया था। एक दिन की बात है, गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा हो गई। वो अच्छा अवसर देखकर चलने को तैयार हो गया। अपनी स्त्री बुलाकी से उसने कहा। बुलाकी ने जवाब दिया, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तब सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होता है, कौन जाने। धर्म के काम में मीन मेक निकालना अच्छा नहीं। अब जे जिंदगानी का भरोसा, चलना है बस चलना है। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने भी फरमान सुना दिया, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया आ जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी भी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति नहीं बिगाड़ना चाहती थी। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की हो गई। सारी बिरादरी निमंत्रित हो गई। 11 गांवों में सुपारी बटी थी। इस धूमधाम से ये लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे, भगवान धन दे तो दिल भी दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया था सुजान ने, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो भुनी भांग नहीं थी, अब देखो लक्ष्मी घुटने तोड़कर बैठी है। एक द्वेषी ने तो कह दिया, अरे कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। कई तरह की बातें होती, इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं, यही उनके हाथ लगा है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को तो देते हैं। सुजान महतो अब सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं, वही विचार सुजान ने भी अपना लिया। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हैं तो वो रोज स्नान नहीं कर पाता था, लेकिन पर्वों के दिन जरूर जाता। भजन भाव उसके घर होने लगे, पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य हो गई। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा होता है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, इसी कांटों से वो परिस्थितियों को तौलता था, अब वो उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहें कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश कर लिया था। ब्याज का पैसा लेते हुए उसे आत्मग्लानी होने लगी, यहाँ तक कि गायों को दोहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए। उसका रोया दुखी हो जाता। वो गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, लेकिन अब उसको इससे घृणा होने लगी। पहले मजदूरों से काम लेता और कम मजदूरी देता, लेकिन अब वो पूरा का पूरा देता था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते, यहाँ तक कि स्त्री बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अब घर के अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है,
किस भाव का क्या चीज है, कैसी बिकी, महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने नहीं पाता था। दोनों लड़के या स्वयं बुला की दूर से ही सारा मामला तय कर लेती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता, पर अपने घर में घट जाता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देखते तो लपक कर खुद उठा देते, यहां तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन गया। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। बाहर एक भिक्षुक आया, वो चिल्ला चिल्ला कर दान मांग रहा था। इतने में बड़ा लड़का भोला आया, जोर से माँ से बोला, अम्मा महात्मा कब से गला फाड़ रहे हैं, दे दो ना कुछ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, देखो तो सही। बुलाकी ने भी उपेक्षा के भाव से कह दिया, क्या भगत जी के हाथ में मेहंदी लगी है, उन्हीं से कह दो कुछ दे देंगे। चौपट करने लगे हैं माँ, और क्या, रहने दो, कुछ का कुछ दे देंगे। तब भोला भी बोल दिया, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया है कि घर गृहस्थी के मामले में अब ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती हूँ कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देंगे। अच्छा, तब भोला ने कहा, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने भी आपत्ति की, बेटा भोला ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब देखो ना, बैलों को सानी देते हैं, गाय धोते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते रहते हैं। माँ बेटे यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते नहीं देखा तो स्वयं उठकर अंदर चले गए और कठोर स्वर में बोले, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को, द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा है, अपना काम दिन भर कर लेना, एक घड़ी के लिए भगवान का काम भी कर लो। बुलाकी ने भी उपेक्षा से कह दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बैठे हो भगवान का काम करने, क्या घर भर भगवान ही काम करेंगे क्या। सुजान ने कहा, कहाँ रखा है आटा, लाओ मैं ही निकाल कर दे दूं, तुम तो बैठो और रानी बन के राज करो। बुलाकी ने तब जोर से कहा, देखो जी आटा मैंने मर मर के पीसा है, देना है ना अनाज दे दो, ऐसे लोगों के लिए मैं पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं। सुजान ने सुना और भंडार गृह की ओर चल दिए। छोटी सी छाबड़ी को जौ से भरकर निकाल लाए, जौ शेर भर से कम नहीं था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को दिखाने के लिए ज्यादा अनाज लेकर आया, लेकिन वो भिक्षुक को देता उसके पहले ही भोला ने छबड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरिया चढ़ाकर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है, फालतू नहीं देंगे। सुजान ने भी कहा, मैं भी तो बैठा नहीं हूं, काम करता हूं। भोला ने भी कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती, हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं और पति पानी बना रहे हैं, और आप लुटा रहे हो, क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है आपको, आप तो बस भगवान भजन में डूबे रहो। सुजान ने इसका उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। सुजान पेड़ के नीचे जाकर विचारों में मगन हो गया, अपने ही घर में उसका अनादर, अभी वो अपाहिज तो नहीं हुआ है, हाथ पांव भी नहीं थके हैं, घर का कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, उस पर यह अनादर, ये घर तो उसी ने बनाया, ये विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब तो वो द्वार के कुत्ते के समान हो गया, पड़ा रहे, घर वाले जो रूखा सूखा दे दें, खाकर पेट भर लें, क्या ऐसा जीवन सही है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, और सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। विचारों के मंथन में सुजान डूब गया। संध्या हो गई, भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर के लाया, सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया।
जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से लेकिन उठा नहीं। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने गया लेकिन भूख नहीं है कहकर उसने भोला को लौटा दिया। तब स्त्री बुलाकी आ गई और मनुहार करने लगी। खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है ना, क्या हो गया? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। ये भी लड़कों के साथ है, ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा, भादों की अंधेरी रात में मढ़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लेता था। और अब मेरा घर, मेरे घर पे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी को भिक्षा दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए। आग थोड़ी लगा रहा हूं घर में। कानून से भी मेरा अधिकार है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी का क्या जाता है? और अब इस वक्त ये मनाने आई है? कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा, रुपए पैसे लेना देना सब इसके हाथ में था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ, लुटाऊं, घर फूकूं, घोंगा हो गया हूँ, मेरी किसे परवाह है। तब लड़के ना थे, जब बीमार पड़ी थी तो मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले जाता था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ। हाँ, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। उसके मन में ये विचार तो चल रहे थे, लेकिन उसने बुलाकी से कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा, अब खा पी कर क्या करूंगा बुलाकी, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करती हो? रख दे, तेरे बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी ने भी मनुहार किया, कैसा करते हो तुम, तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अब भोला ने इतना ही तो कहा था ना कि इतनी सारी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था बताओ? हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया था, तुम्हें तो मजा आया। जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगाता तब तुम्हें ठीक लगता, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होती। बुलाकी ने भी जवाब दिया, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाई है, जिस बल चाहते हो बैठा लेते हो। ऐसी मुजोर होती ना तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। सुजान ने भी कहा, हाँ भाई, वो तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं ही राक्षस हूँ और दैत्य हो गया हूँ, तुम सही, तुम्हारे कमाऊ बेटे सही। बात नहीं बनी, सुजान नहीं उठे और बुलाकी हार कर घर लौट गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी यही समझता था, परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया इसकी उसे खबर नहीं थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे भ्रम में डाली थी। लड़के उसके सामने बैठते नहीं थे, खाट पर नहीं रहते थे, उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण नहीं था। हाँ, पर आज उसे ये ज्ञात हो गया कि वो केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। अब तक जिस घर में राज करता था उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सो रहा था, सुजान करवी काट रहा था। इतना श्रम उसने पहले नहीं किया था, लेकिन उसने काम भी नहीं छोड़ा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर आंगन में दंग रह गई। जोर से चिल्ला के बोली, क्यों रे भोला, आज रात भी कटिया ही काटता रहा क्या? कितना कहा बेटा, जी से जहान है, पर तू तो मानता ही नहीं, रात में सोया भी नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, हाँ हाँ, वो सोता कब है, जब देखता हूँ काम करता है, ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता बाहर निकल आया, ढेर देखकर वो भी आश्चर्यचकित। माँ से बोला, माँ, शंकर आज बड़ी रात को उठा था। बुलाकी ने कहा, नहीं रे,
वो तो सो रहा है, मैं समझी तू काटा है। माँ मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकता, दिन भर काम करा लो, रात को नहीं उठा जाता मुझसे। बुला की, तो क्या तेरे दादा ने काटी है इतनी सारी? मालूम नहीं। दोपहर हो चुकी थी, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए। पसुजान भगत अपने काम में मगन था, भोला थक गया। उसकी बार बार इच्छा हुई कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ नहीं कहा। सबको आश्चर्य हो रहा था, दादा इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं? आखिर डरते डरते बोल ही दिया, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। मैं सांझ को फेंक दूंगा दादा। सुजान ने नहीं सुना। तुम क्या फेंक दोगे बेटा, देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है? तभी तो बीच में पानी जम जाता है, और इस खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डांट फेंकते रहे। आधे घंटे बाद वो घर आया, थकान का नाम नहीं था, लेकिन नहा खाकर आराम करने के बदले उसने बैलों को सहलाना शुरू किया। पीठ पर हाथ फेरा, पैर मले, बैलों की तो पूंछे खड़ी हो गई। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद बैलों को ये आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भर गई, मानो वो कह रहे हों, अब हम तुम्हारे साथ हैं, दिन रात काम करेंगे। अन्य किसानों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठा लिया, खेत की तरफ चल दिया, और दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, जैसे कि उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मढ़ैया में लेटे लेटे पिता को आते देखा, पर उठ नहीं पाया। उसकी हिम्मत छूट गई, कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे तो बस ज्यों का त्यों चला रहा था। क्या मालूम था कि ये सब चीजें क्या होती है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। तो भोला ने भी कह दिया, जाने दो अम्मा, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगला है, बखारी में तो अनाज रखने की जगह नहीं है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, आज उसी खेत में 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना, खलिहानों में सतयुग का राज, जगह जगह अनाज के ढेर। यही समय है जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे, और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे। आज उनमें वो भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। अचानक भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, आप ही के पास पहले आया हूँ। ऐसा है, जाओ तुम्हारे सामने ये ढेर लगा है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जाते बने ना, ले जाओ, भगत ने नम्रता से कहा। भिक्षुक ने शुभ्ध नेत्रों से ढेर को देखा। जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे भगत जी, उतना ले लूंगा। भगत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने कोई 10-13 अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे अधिक भरने का उसे साहस नहीं था। भगत उसके मन का भाव समझ गए, बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा लेगा भिक्षुक जी, और ले लीजिए। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना काफी है। भगत ने कहा, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर कातर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूं वो करो, तुमसे जितना उठाते बने उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज तो भर लिया
लेकिन भोला ने अगर गठरी नहीं उठाने दी तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अपने हाथों से अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, ले जाओ, अब ये आपका है। भिक्षुक ने कहा, बाबा इतना तो मुझसे नहीं उठेगा। भगत ने भी जोर देके कहा, अरे इतना भी नहीं उठेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो कि नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, गठरी भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। तब उसने भगत से बोला, भगत जी ये मुझसे नहीं उठेगी, और उसने हाथ जोड़ लिए। भगत ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमूला का नाम तो सुना है आपने। बस भगत जी क्या करते, उन्होंने कहा, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। फिर क्या था, ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रख कर भिक्षुक के पीछे पीछे चल दी। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्भ नेत्रों से देखा और बोला, बेटा ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, ध्यान रहे कोई भी यहां से खाली हाथ न लौट पाए, जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा देना। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था और अपना अधिकार बता दिया था। सच कहा है किसी ने, ये अधिकार बहुत बड़ा होता है।

0: तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। अब अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सुनो कहानी समेटने की। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
1: ओफ यार, ये जूते कहां रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार ये लोग, फोन मोबाइल कहां रखा है मेरा यार?
2: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
1: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
2: हाँ।
1: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में, सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है के टूटते ही।
3: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
1: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
2: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
1: क्या मतलब
2: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
1: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
2: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
1: क्या?
2: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
1: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
2: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, है? मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
1: क्या?
2: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
4: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने न जाऊ ना तो लकड़ी भी न मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
1: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
2: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
4: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
2: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
4: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
2: अच्छा बनाती हूँ।
4: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
2: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
4: मालूम है भाई साहब। रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना आता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
2: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
4: रो,
2: हो गई ना तेरी चाय। हाँ, अब जा बाकी काम कर।
4: हाँ,
2: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
4: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है।
3: अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
3: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
3: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
3: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
3: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
3: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई। अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
3: वाह वाह, संकट
0: सोलर
3: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
3: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
3: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
3: ये भगवान दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो। अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
3: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान। आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
3: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
3: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है। हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया।
3: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
3: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का।
3: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ।
3: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
3: हाँ, मतलब हम दिनेश।
4: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये, देखो अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड।

0: कंट्रोल, और ना करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म अब।
1: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
0: क्या
1: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
0: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं जलेगी।
1: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गिला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
0: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
1: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए?
0: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाय बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
1: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
0: क्या
1: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
0: अच्छा
1: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
0: क्या
1: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
0: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी जी जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो दास हुए। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुन, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के।
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल गया। ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर कौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई, किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है, पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए, पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है, पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: हाँ पढ़ो। देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा, अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की इजाजत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध कव्वाल जनाब असलम साबरी की गाई हुई कव्वालियाँ।

हजरत अभी नहीं अभी नहीं, यूं भी जाहिर कभी तासीर मोहब्बत होगी, आपकी नजर कर रहा हूं कि यूं भी जाहिर कभी तासीर मोहब्बत होगी, आईना आपका होगा मेरी सूरत होगी। यूं भी जाहिर कभी तासीर मोहब्बत होगी, आईना आपका होगा मेरी सूरत होगी। और अर्ज करता हूं कि गर कारगर ना हो जो वफाएं तो क्या करें, आपकी पसंद को मलहूज रख रहा हूं, गर कारगर ना हो जो वफाएं तो क्या करें, गर कारगर ना हो जो वफाएं तो क्या करें, हो जाएं बेअसर जो दुआएं तो क्या करें, हमने कसम से उनसे कभी कुछ नहीं कहा, बेकार की वो बात बनाएं तो क्या करें। और रखना है उनसे वास्ता हर हाल में हमें, अब उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं तो क्या करें।

0: आप ही का शेर आपको सुना रहा हूँ। आप नाराज हो रू उठे कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी ना बिगड़े कि जुदा हो जाए।
1: फैसला

जीत कर खुद ही हार जाने का। पिछड़ा कुछ सदा से के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। चार मिसरे करता हूं, कोई हंसे तो तुझे गम लगे खुशी ना लगे। मिसरे कैसे जम होते हैं ये कोशिश कर रहा हूं। कोई हंसे तो तुझे गम लगे खुशी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। और तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे।

दो तीन मिनट के लिए शाम से मेरा मन है हुजूर गरीब नवाज के हुजूर में हरियाला बना पेश करने का, उसके बाद मोहम्मद के शहर में नाते पाक पाऊंगा।

मौलाना जामी का फारसी में एक शेर इसी मिसरे की वजाहत में पढ़ रहा हूँ। चे हुस्नत आ के दर यकदम रुखतरा सदर जरबीनम, चे हुस्नत आ के दर यकदम रुखतरा सदर जरबीनम, हनोजम आरशु बाजा हनोजम आरजू बाशद कि यक बारे दिगर बीनम। गो मेरे आका आपको हजारों बार देखा है लेकिन दिल चाहता है और एक बार देख लें।

0: हर मुए तन पे मेरे जिस्म में आंखें होती और हर आंख से हम आपको देखा करते। हर मुए तन पे मेरे जिस्म में आंखें होती और हर आंख से हम आपको देखा करते। या नबी,
1: या नबी।

ये चार मिसरे समाप्त फरमाएं और मेरे हक में भी दुआ करें कि मैं ता हयात जिक्र रसूल करता रहूं और अल्लाह की मखलूक को सुकून पहुंचाता रहूं। मुस्तफ़ा की जात ही साबित हुई मुश्किल कुशा, मुस्तफ़ा की जात ही साबित हुई मुश्किल कुशा, यूनुसो नूहो खलीलो बुलबशर के वास्ते। मुस्तफ़ा की जात ही साबित हुई मुश्किल कुशा, यूनुसो नूहो खलीलो बुलबशर के वास्ते। वद्दुहा वल्फज्र ताहा काफ हा या ऐन स्वाद, है ये अंदाजे सना खैरुल बशर के वास्ते। खुर्शीद माह काम कहती है जिसे दुनिया, मुझको तो वो आका

कहां से वो रदीफ आए, कहां से काफिया आए, कहां से वो रदीफ आए, कहां से काफिया आए, कि जिसकी हद में तारीफ है मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। कहां से वो रदीफ आए, कहां से काफिया आए, कि जिसकी हद में तारीफ है मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। और झुकी झुकी सी जबीने हरम दिखाई दे, झुकी झुकी सी जबीने हरम दिखाई दे, जहां हुजूर का नक्शे कदम दिखाई दे। और मैं भीख मांगने उस दर पे आ गया हूँ, जहां ये जमी बने मेरा दामन तो कम दिखाई दे।

शबलाई महेताबा, शबलाई महेताबा, तवज्जो से सुने, शबलाई महेताबा नजराना मोहम्मद का, शबलाई महेताबा नजराना मोहम्मद का, है मुजरई सूरज भी रोजाना मोहम्मद का, और ये नेमत उजमा भी मिलती है मुकद्दर से, अल्लाह जिसे कर दे दीवाना मोहम्मद का। कारी ये इनायत कर वल्लाह इसे फिर पढ़, कारी ये इनायत कर वल्लाह इसे फिर पढ़, आयात है कुरान की अफसाना मोहम्मद का।

जहां में जब भी नजर को कहीं सुकून ना मिला, जहां में जब भी नजर को कहीं सुकून ना मिला, वजूद हुस्ने यकीन तेरी जात ठहरी है। और तेरे तुफैल में ये भी जहां ने देखा है, कई बरस के लिए एक रात ठहरी है। तेरे तुफैल में ये भी जहां ने देखा है, जज़ाकअल्लाह। तेरे तुफैल में ये भी जहां ने देखा है, यहाँ एक पल वहां एक पल, यहाँ 27 बरस। तेरे तुफैल में ये भी जहां ने देखा है, कई बरस के लिए एक रात ठहरी है। और बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी। आंखें मूंद के सुनो। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्रील पूछते हैं फरिश्तों से बार बार, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। मोहम्मद

पुकार मुझको ना दुनिया, चला हूँ सुए रसूल। हजरात दादनी चाहूंगा, दुआ चाहूंगा। पुकार मुझको ना दुनिया, चला हूँ सुए रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझको जस्तजूए रसूल। और तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, मिले जो मुझको जो एक कतराए वजू है रसूल। तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, मिले नसीब से मुझको जो एक कतराए वजू है रसूल। आज करता हूं तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, मिले जो मुझको जो एक कतराए वजू है रसूल। अर्ज करता हूँ कि ताजे सरे नियाज हैं नालैन मुस्तफ़ा, ताजे सरे नियाज हैं नालैन मुस्तफ़ा, फिरता हूँ सर पे अर्शे मौला लिए हुए। ताजे सरे नियाज हैं नालैन मुस्तफ़ा, फिरता हूँ सर पे अर्शे मौला लिए हुए। और यकीन है जब वो देखेंगे हमें गमगीन, कह देंगे गुलामों की ना होने देंगे वो तौहीन, कह देंगे ये मत पूछो मोहम्मद किस तरह जन्नत दिलाएंगे, दुआ जन्नत की हम मांगेंगे वो आमीन कह देंगे।

दो मिसरे समाज फरमाए, जो खता से खफा नहीं होता, दोस्तों जो खता से खफा, जो खता से खफा नहीं होता, हर नबी मुस्तफा नहीं होता। इस शेर पे तवज्जो करना घर जाकर, जो खता से खफा नहीं होता, हर नबी मुस्तफा नहीं होता। और देखिए, आइए आइए इस जाविये से देखिए शाने रसूल, आइए इस जाविये से देखिए शाने रसूल, खालिको मखलूक सबके सब सना खाने रसूल। और देखिए जर्रा नवाजी गुम्बदे खिजरा के पास, देखिए जर्रा नवाजी गुम्बदे खिजरा के पास, खाक सारों को कहा जाता है मेहमान रसूल। मोहम्मद के शहर में, वो चाहे तो फिर कुछ भी जबर जेर नहीं है, तकदीर बदल जाने में कुछ देर नहीं है। हो जाएगा दीदार मोहम्मद तुझे एक दिल, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। मोहम्मद के

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध कव्वाल जनाब असलम साबरी की गायी कव्वालियां सुनी। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: तो ये था श्रोताओं आज का हमारा दोपहर का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। हमारा प्रसारण यूं ही रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा, दीजिए अनुमति पूर्वाखले को और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ भगवती सक्सेना। हमारी ये सभा रात्रि 10 बजे तक निरंतर रहेगी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पहले सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव, शौनक। देवता हैं अग्नि और छंद है जगती।
2: त्वमग्ने द्युभिस्त्व माशु शुक्षणिस्त्व मद्भ्यस्त्व मश्मनस्परि त्वं वनेभ्यस्त्व मोषधि भ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः। हे मनुष्यों के स्वामी अग्निदेव, आप द्युलोक से प्रकट होकर शीघ्र प्रकाशित होने वाले तथा पवित्र हैं। आप जल से, पाषाण घर्षण से, वनों से, औषधियों से उत्पन्न होने वाले हैं। तवाग्ने होत्रम तव पोत्र मृत्युयम् तव नेष्टम् त्वमग्नि धृतायतः तव प्रशास्रम् त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे। हे अग्ने, ऋत्विजों में आप ही होता, पोता, नेष्टा, आग्निध्र हैं। आप ही यज्ञ की कामना करने वाले, प्रशास्ता, अध्वर्यु तथा ब्रह्मा हैं। यज्ञकर्ता गृहपति भी आप ही हैं। त्वमग्न इंद्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु रुरुगायो नमस्यः त्वं ब्रह्मा रैविद ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरंध्या। हे अग्निदेव, आप सज्जनों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्र हैं। आप ही सबके स्तुत्य सर्वव्यापी विष्णु हैं। हे ज्ञान संपन्न अग्निदेव, आप उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा हैं। विविध प्रकार की बुद्धि को धारण करने के कारण आप मेधावी हैं। त्वमग्ने राजा वरुणो घृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजम् त्वमंशो विदथे देव भाजयुः। हे अग्निदेव, आप व्रतों को धारण करने वाले राजा वरुण हैं। दुष्ट नाशक तथा सबके स्तुत्य मित्र देवता हैं। सर्वव्यापी आप दान देने वाले सज्जनों के पालक अर्यमा हैं। आप ही सूर्य हैं। अतः हे अग्निदेव, दिव्य गुणों से युक्त अभीष्ट फल हमें प्रदान करें। त्वमग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यम् तवग्नावो मित्र महः सजात्यम् त्वमाशु हेमा ररिषे स्वश्वयं त्वं नराम शर्धो असि पुरुवसुः। हे अग्निदेव, साधकों के लिए आप श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करने वाले त्वष्टा देव हैं। सभी स्तुतियां आपके लिए हैं। आप हमारे मित्र और सजातीय बंधु हैं। आप शीघ्र ही उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों को आश्रय प्रदान करने वाले महान बलि हैं। त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतम प्रिक्ष ईशिषे त्वं वातैररुणैर्यासि शंगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नुत्मना। हे अग्निदेव, आप दिवलोक के प्राणदाता रुद्र हैं। आप अन्नाधिपति तथा मरुतों के बल हैं। आप वायु के समान द्रुतगामी अश्व पर आरूढ़ होकर कल्याण की कामना वाले ग्रह स्वामी के यहाँ जाते हैं। आप पोषणकर्ता पूषा देव हैं। अतः आप स्वयं ही मनुष्यों की रक्षा करते हैं। त्वमग्ने द्रविडोदा अरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्ते विधत्। हे अग्निदेव, प्रज्वलित करने वाले को आप धन प्रदान करते हैं। आप रत्नों के धारणकर्ता सविता देव हैं। हे प्रजापालक अग्निदेव, आप ही धनाधिपति भगदेव हैं, जो अपने घर में आपको प्रज्वलित रखता है, उसकी आप रक्षा करें। त्वामग्ने दम आ विष्पतिम विशस्त्वाम राजानम सुविदत्र मृंजते त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश प्रति। हे प्रजापालक अग्निदेव, प्रजा अपने घरों में प्रकाशमान तथा ज्ञानयुक्त अग्नि के रूप में आपको प्राप्त करती है। हे सुंदर ज्वालाओं से युक्त अग्निदेव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं तथा लाखों फल प्रदान करने वाले हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के पहले सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पत्रपाठी।

हमें सदा प्रभु का स्मरण करने के साथ ही अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। इस तरह ईश्वर में अर्पण किए मन और बुद्धि से होकर निसंदेह हम ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं।

किसी व्यक्ति को परमेश्वर बहुत ही दूर जान पड़ता है तो किसी व्यक्ति को परमेश्वर निकट ही महसूस होते हैं। दरअसल परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी वो सब जगह उपस्थित है और सबको देख भी रहा है।

प्रलोभन या लालच कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह उस व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता जिसकी आत्मा जागृत हो, आत्मविश्वास अटल हो और स्वभाव कोमल हो।

क्षमा से क्रोध को काबू किया जा सकता है, उदारता से स्वार्थ पर विजय पाई जा सकती है, प्रेम से नफरत को हराया जा सकता है और ठीक इसी तरह सत्य से असत्य को हराया जा सकता है।

बुद्धिमान मनुष्य वो है जो कभी ऐसा काम न करे जिसका बाद में उसे पछतावा हो। वो सदा ऐसा कार्य करता है जो उसके और उसके आसपास के लोगों के मन को प्रफुल्लित करे।

मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है अपनी आत्मा की आवाज को नहीं पहचानना। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना करता है, उससे बड़ा दीन कोई नहीं है।

मनुष्य अपने बुरे कर्म दुनिया के लोगों से और अपने प्रियजनों से तो छिपा सकता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा और हृदय से इसे नहीं छिपा सकता। ये बुरे कर्म

कोई भी अच्छा या बुरा उसके फल से ही माना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भी सही पहचान उसके कर्मों से होती है। यदि कर्म सही हैं तो मनुष्य अच्छा है, अन्यथा उसे पापी की श्रेणी में माना जाता है।

और योग के रास्ते पर मनुष्य तब कामयाबी से आगे बढ़ सकता है जब वह आनंद के मायाजाल से मुक्त हो। इसकी प्राप्ति का सबसे सरल तरीका है परमात्मा का ध्यान करना।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम। श्रोताओं, ये था आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम। शाम के ठीक 6 बजे है अगला कार्यक्रम। आप सुनेंगे वतन का राग कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम वतन का राग आज हम समर्पित करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की जयंती पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की अवधारणा में केवल उसकी भौगोलिक संरचना ही शामिल नहीं होती, एक देश अपने इतिहास, भूगोल, साहित्य, समाज और संस्कृति में अपार विस्तार लिए होता है और साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे महान साहित्यकार की, जिन्होंने साहित्य की निबंध, आलोचना और उपन्यास जैसी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। आधुनिक हिंदी साहित्य के वो प्रकांड विद्वान, मौलिक निबंधकार और उत्कृष्ट समालोचक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा ओजवलिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, किंतु हिंदी साहित्य जगत में वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने सन 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। सन 1923 में पढ़ाई के लिए वो काशी आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाईस्कूल की परीक्षा पास की। इसी बीच उनका विवाह भगवती देवी के साथ संपन्न हुआ। सन 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ ही सन 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। शास्त्री और आचार्य दोनों ही परीक्षाएं उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की थीं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शांति निकेतन कोलकाता चले गए और शांति निकेतन में हिंदी अध्यापन का कार्य आरंभ किया। यहीं उन्हें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन सेन का सानिध्य मिला। शांति निकेतन के अलौकिक वातावरण और गुरुदेव के भीतर उपस्थित साहित्यिक और कलात्मक निधि ने उन्हें बहुत गहरे तक प्रभावित किया।

शांति निकेतन में रहते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का गहन अध्ययन किया। यहीं से उन्होंने स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। शांति निकेतन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन की साहित्यिक ऊर्जा ने उन्हें लेखन हेतु प्रेरित किया और शांति निकेतन के खुले वातावरण में उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा और कबीर जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान वो सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक भी रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन कार्य करने के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1950 में बनारस वापस आ गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1952 में उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था रही है। सन 1955 में उन्हें प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ वर्षों तक इस पद पर कार्य करने के बाद उन्होंने सन 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद सन 1968 से वो पुनः बनारस आ गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। यहां से सेवानिवृत्त होने के बाद वो देश की हिंदी विषयक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में भी वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में सेवाएं दे रहे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में साहित्य सृजन किया, जिनमें मुख्य रूप से निबंध, आलोचनाएं और उपन्यास शामिल हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विष के दांत, कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। उनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा उनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा उनकी अनेक संपादित और अनूदित रचनाएं भी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान साधक थे, जो अपनी सृजन यात्रा पर अनथक चलते रहे।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें विशेष ज्ञान था। उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया। हिंदी निबंध और आलोचनात्मक ग्रंथों के लेखन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वो हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के निबंधकार और उत्कृष्ट आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास आदि पर जो विद्वत्तापूर्ण रचनाएं लिखी हैं, वो हिंदी में पहले नहीं लिखी गईं। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी सभी कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी पहली रचना है जिसका प्रकाशन 1930 के दशक में हुआ था। इस रचना के प्रथम दो अध्याय राधा कृष्ण का विकास, स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप निश्चित रूप से सूचना प्रधान और शोधपरक है। हिंदी साहित्य की भूमिका के प्रकाशन के साथ द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य जगत में व्यापक स्वीकृति मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते थे। उन्होंने चार प्रमुख बातों पर बल दिया। पहला, हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से संबद्ध करके देखा जाए। दूसरा, हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंतन धारा को भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। तीसरा, हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन, बौद्ध, अपभ्रंश साहित्य, कश्मीर के शैव और दक्षिण तथा पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण और लौकिक कथा साहित्य, ये सब कुछ देखा परखा जाए। और चौथा, साहित्य के इतिहास को जन चेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित किया जाए। इस तरह एक बहुत विस्तृत दृष्टि उनके पास थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर जब प्रकाशित हुई, तब उनका समीक्षक रूप उभर कर सामने आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि कबीर ने जाति पाति का विरोध, निर्गुण साधना परंपरा, योग परक उलटबासियां, ये सब कुछ अपने पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण किया था, क्योंकि जाति भेद, ऊंच नीच तथा कर्मकांड पर प्रहार की पुरानी परंपरा भारत में रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में हिंदी के आरंभिक साहित्य संबंधी उलझनों का समाधान प्रस्तुत किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को सामाजिक संदर्भों में देखने और परखने का आग्रह करते हैं। सामाजिकता का ये आग्रह ही उन्हें मानवतावादी बनाता है। साहित्य जगत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। वो जब तक जीवित रहे, हिंदी की सेवा करते रहे। 19 मई सन 1979 को उन्होंने अंतिम सांस ली। कबीरदास आजीवन उनके आदर्श रहे और वो फक्कड़पन हमेशा उनके व्यक्तित्व और जीवन में बना रहा। नमन ऐसी महान साहित्य विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रस्तुतकर्ता यानी कि मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। और इतिहास के पन्नों से में हम पिछले अपनी दो कड़ियों में सुन रहे हैं मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि मध्य भारत वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में 16वीं सदी में गोंड राजा संग्राम शाह का राज्य था। उनके कुल 52 गढ़ थे। राजा संग्राम शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह ने गोंड राज्य गढ़ा की राजगद्दी संभाली, लेकिन 1550 ईस्वी में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा वीर नारायण लगभग 4-5 वर्ष का बालक था। दलपत शाह की रानी दुर्गावती ने राजकुमार वीर नारायण को गढ़ा के गोंड राज्य का अगला शासक घोषित किया और मंत्री आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर स्वयं उनके संरक्षक बनी। 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष उन्होंने गढ़ा के गोंड राज्य पर सफलतापूर्वक राज्य किया। सबसे पहला उनका युद्ध हुआ मियाना अफगानों से। उन्हें उन्होंने पराजित किया और इन लड़ाकों को अपनी ही सेना में भर्ती भी किया। इसके उपरांत मुख्य रूप से उनका युद्ध मांडू के सुल्तान बाज बहादुर से हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती ने अनेक बार बाज बहादुर को शिकस्त दी। और इसके आगे की बातचीत के लिए हमारे साथ फिर एक बार स्टूडियो में मौजूद हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पूजा जी, रानी दुर्गावती जी जिन्होंने 1550 ईस्वी यानी 473 वर्ष पहले इतिहास रचा था, एक ऐसी रानी, एक ऐसी शासिका जो आज भी 500 वर्ष बाद लोक स्मृति में है, वो निश्चित ही अत्यधिक लोकप्रिय रही होंगी तब भी। तो रानी की लोकप्रियता के क्या मुख्य कारण है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, हजारों साल के इस लंबे इतिहास में न जाने कितने ही शासक हुए होंगे
0: जी,
1: लेकिन लोग उसे ही याद करता है जिसने लोगों के लिए काम हुआ, बाकी को तो भूल जाता है। उसके कामों से लोगों के जीवन में यदि सकारात्मक प्रभाव हुए हों तो वो उसे अपने दिल में बसा के रखता है। उसकी कहानियों में, किस्सों में, आख्यानों में वो राजा या रानी बार बार दोहराए जाते हैं
0: जी।
1: गोंड रानी दुर्गावती भी ऐसी ही एक रानी थी जिन्हें 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका है। आज भी वह महाकौशल के अनेक आख्यानों में गाई जाती हैं। गांव गांव में लोग उनके आख्यान गाते हैं, उनकी वीरता के किस्से, उनके लोक निर्माण के जो कहानी किस्से हैं वो गाते हैं। उनकी अनेक कहानियां और किस्से हैं, उन्हें लोग बहुत सम्मान के साथ आज भी याद करते हैं
0: जी। पूजा जी, जैसे आपने कहा कि लोग उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, तो ऐसे अनेक उन्होंने काम किए। जैसे आपने पिछली बार बताया कि उन्होंने जो गढ़ा का किला था वो इतना अभेद्य बनाया था कि बड़े से बड़े आक्रमणकारी भी वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। इसके अलावा एक और उनकी कला थी पानी से संबंधित, उन्होंने बहुत सारे तालाब बनाए, यहाँ तक कि उनकी जो विरासत को जिन्होंने संभाला, उनकी दासियों तक का ये आता है कि रानी दुर्गावती की जो दासियां थी, तो कहते हैं कि जबलपुर में कुल 56 ताल थे।
1: बिल्कुल सही, रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया और जबलपुर जो उनकी राजधानी था, गढ़ामंडला में जो मदन महल की हम बात करते हैं वो तो जबलपुर में ही है। तो मुख्य केंद्र तो हमेशा गोंड राजाओं का वही रहा। हाँ, हालांकि राजधानियां उनकी लगातार बदलती चली गईं। रानी दुर्गावती के समय में भी राजधानी चौरागढ़ रही, पर गढ़ामंडला यानी कि मदन महल उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो जबलपुर में ही कहते हैं कि उनके बनाए हुए 56 तालाब थे
0: जी।
1: कुछ आज भी हैं और कुछ पूर गए समय के साथ में, लेकिन अब जहां तालाब नहीं भी हैं उन जगहों पर बस्तियां बस गई और आज भी वो तालाब के नाम से ही जानी जाती हैं,
0: जैसे कि आधार ताल।
1: हाँ, आधार ताल
0: जी।
1: इस तरीके के अनेक नाम जबलपुर में मिलेंगे। तो जहां कहीं भी पानी का स्रोत होता, भरपूर पानी होता, वहां संस्कृति पनपती ही है
0: जी। हाँ,
1: तालाब बनने का अर्थ से केवल इतना नहीं होता कि तालाब बन गया और पानी की आपूर्ति हो गई
0: जी।
1: आप अगर ध्यान से देखें तो जहां पानी का स्रोत होता है वहां संस्कृति और सभ्यता पनपती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, उद्योग धंधे पनपते हैं, धन संपदा बढ़ती है और कला और शिक्षा का भी विकास होता है।
0: लेकिन पूजा जी, ये भी तो एक कला ही हुई ना कि कहाँ पानी निकलेगा ये मालूम होना, तो ज्ञान की बात हुई। तो ये कौशल, ये प्रबंधन किस तरह था उनके पास?
1: बिल्कुल सही। गोंड जनजाति या अन्य जनजातियों, क्योंकि वनों वन क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानती हैं
0: जी
1: और परंपरागत रूप से उन्हें इस ज्ञान और विज्ञान, मैं तो इसे विज्ञान भी कहूंगी,
0: जी बिल्कुल।
1: इसकी बहुत अच्छी जानकारी है कि वह यह जान लेते हैं कि भूमिगत जल कहाँ मिलेगा। हर कहीं आप तालाब नहीं बना सकते, जहां जल होगा वहीं ना बनाएंगे। तो वे इस परंपरागत ज्ञान को जानते हैं, चलते फिरते वनस्पतियों पेड़ पौधों को देखकर बता सकते हैं कि कहाँ से पानी की भूमिगत शिराएं हैं, तो तालाब या जल स्रोत कहाँ खोदना चाहिए।
0: जी
1: ये उनका ज्ञान सदियों हजारों वर्षों से हमारे बीच में है। इसलिए आप मध्य भारत में जहाँ कहीं भी तालाबों के किस्से कहानी सुनेंगे तो उसमें कोई ना कोई कहानी किस्सा ऐसा होगा जिसमें कि किसी गोंड का योगदान आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आम बात रही कि हमने देखा है कि जो प्राचीन जो शास्त्र हमें मिलते हैं
0: जी
1: उसमें एक दकार्गल विद्या का वर्णन आता है। दकार्गल विद्या उसे कहते हैं जिसमें पानी, भूमिगत पानी के बारे में आपकी कितनी जानकारी है। तो ऐसे हमें उल्लेख भी मिला है और उन उल्लेखों को पढ़कर भी हमें ये समझ में आता है कि हजारों साल से ये विद्या इनके बीच में थी। हम ये भी शास्त्रों से जानते हैं कि हमारी प्राचीन ज्ञान विज्ञान में ये भी शामिल था कि आप कहाँ तालाब बनाएं, यानी कौन सी भूमि ऐसी है जो पानी को रोक सकेगी वर्ष भर,
0: जी
1: नहीं तो तालाब सूख जाएगा या भूमि उसको सोख लेगी
0: जी
1: पानी
0: हाँ
1: को। तो उसकी कई सारी विधियां हमको मिलती हैं जो आज भी गोंड जनजाति प्रयोग में लाती है। जैसे
0: अच्छा
1: मैंने कुछ देखा प्रैक्टिकली भी गोंड जनजाति के बीच में जब काम किया और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा कि मान लीजिए कि आपको पता करना है कि ये भूमि तालाब बनाने के लिए अच्छी है या नहीं। तो मैंने देखा कि जैसे आप एक पर्टिकुलर साइज का एक छोटा सा गड्ढा करना है और आपको वहां खड़े होकर एक तीर आसमान की तरफ फेंकना है।
0: अच्छा
1: हाँ, और जब वो तीर नीचे आएगा उस बीच में उस गड्ढे में कितना पानी कम हुआ, यानी कुछ
0: अच्छा
1: एमएम में भी होगा, एमएम में
0: जी
1: ही हो पाएगा, पर उसको निशान लगाना है आपको। उससे पता चल जाता है कि ये भूमि पानी को रोक पाएगी कि नहीं।
0: वाह
1: इसी तरीके से मैंने एक और देखा था जब मैं जनजातियों के बीच में काम कर रही थी कि हाँ, आपने एक गड्ढा खोदा जहाँ पे आपको तालाब की संभावना है कि यहाँ तालाब बनाना चाहिए
0: जी
1: और उसमें पानी भर दिया मैनुअली, है ना, खुद पानी भर दिया और फिर आपको 100 कदम जाना है और 100 ही कदम लौट के आना है। अगर इस बीच में
0: जी
1: पानी वो सोख लेता है या फिर पानी का स्तर काफी नीचे हो जाता है
0: जी
1: तो फिर उस जगह तालाब नहीं
0: नहीं
1: बनाना है।
0: बनाएंगे जी
1: हाँ, तो ये सारी विद्याएं भी जो परंपरागत रूप से सीखी गई थी वो आज तक परंपरा में है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि कुछ कम हो रही है और हमें उसे संभालना है।
0: हमें उन्हें संभालना होगा, उनसे सीखना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी को देना होगा। निश्चित रूप से संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से और पूजा जी ने कितनी अच्छी जानकारी बताई। डॉक्टर पूजा सक्सेना हमारे साथ स्टूडियो में है कि दकार्कल विद्या, इस विद्या का नाम, इस विज्ञान का नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं ने भी, ज्यादातर लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा कि भूमिगत जल के बारे में ये जो जानकारी दी आपने, आगे भी हम इस बारे में कुछ और आपसे जानना चाहेंगे।
1: जी हाँ, हमने पिछले बार जब चर्चा की थी राजा संग्राम शाह की,
0: जी
1: तो संग्राम शाह ने संग्राम सागर बनवाया था और उसी के पास में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, टेकरी के ऊपर
0: जी
1: बाजना मठ भी बनवाया था।
0: अच्छा,
1: तो रानी दुर्गावती उनकी वंशज है और उन्होंने संग्राम शाह के काम को आगे बढ़ाया। तो रानी दुर्गावती ने भी बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया और खास बात यह रही कि उन तालाबों के आसपास मठ मंदिर भी बनवाए।
0: जी
1: तो अगर हम जबलपुर में ही देखें तो एक बहुत लंबी सूची है तालाबों की। जैसे नाम आते हैं रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल, मड़ा ताल, गंगा सागर, फूटा ताल, भंवर ताल, सूपा ताल, गलुआ ताल,
0: जी
1: ऐसे बहुत से नाम हैं और
0: बिल्कुल
1: इस यही सूची खत्म नहीं होती, आगे भी है बहुत सारे ताल तलैया, जो छोटी तलैया है
0: जी
1: ना। तो जैसे भान ताल, श्रीनाथ जी की तलैया, हाथी ताल, महानंदी ताल, और भी आगे कोला ताल, बघा ताल, उगरी ताल, कदम तलैया, भान तलैया, तिलक भूमि, बैनी सिंह की तलैया, लोको तलैया, ककरैया और जुड़ी तलैया, इतने अभी तो सूची खत्म नहीं हुई है। पर
0: जी
1: ये कुछ एक महत्वपूर्ण नाम है जो हम देखते हैं कि गोंड काल में ये तालाब बने।
0: श्रोताओं कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है हमें अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। जैसे कि पूजा जी आपने बताया कि आधारताल जैसा एक, जैसे कि जबलपुर का एक बड़ा इलाका है आधारताल या रानीताल या चेरीताल, लेकिन आधारताल मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आपने हमें बताया था कि रानी के एक मंत्री का नाम आधार कायस्थ था, तो क्या इस ताल का उनसे कुछ संबंध है?
1: एक अच्छा राजा या रानी केवल खुद ही अच्छा काम नहीं करता
0: जी।
1: वो दूसरों को भी प्रभावित करता है कि उसकी प्रजा, उसके सहायक भी अच्छा काम करें।
0: बिल्कुल।
1: तो हम जबलपुर में पाते हैं एक आधार ताल
0: जी।
1: तो जैसा आपने कहा कि उनके मंत्री का नाम था आधार कायस्थ, तो उन्होंने भी एक तालाब बनवाया और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था, बहुत बड़ा तालाब था। आधार तालाब बनाने के बाद उन्होंने उसके पास एक पचमठा मंदिर भी बनाया। पचमठा एक अपनी शैली है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे
0: जी।
1: तो ये जो पचमठा मंदिर है या मठ है, इसमें महालक्ष्मी का मंदिर है और इसकी आज भी बड़ी मान्यता है, काफी लोग यहाँ आते हैं। खास बात यह है कि अगर आप इस पचमठा मंदिर को देखेंगे तो इसका जो प्लान है या जो भूविन्यास है वो श्री यंत्र पर आधारित है। जैसे हम पेन कागज पे श्री यंत्र बनाते हैं, ऐसा ही पूरा की पूरा मंदिर ही श्री यंत्र पर आधारित है। तो इसके अंदर मंदिर में शिव हैं, हनुमान हैं, ब्रह्मा, सूर्य, लक्ष्मी, तो गोंड काल में इन सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर उत्कीर्ण की गई और बहुत खूबसूरत द्वार शाखा है, द्वार शाखा पर युद्ध का चित्र भी अंकित है
0: जी। पूजा जी ऐसे ही किसी और तालाब के बारे में कोई दिलचस्प कहानी बताइए हमें।
1: जरूर, एक तालाब जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जैसे हमने सुना कि रानीताल का निर्माण रानी दुर्गावती ने करवाया
0: जी,
1: एक बिल्कुल उसके पास में ही एक और तालाब है चेरीताल
0: जी।
1: तो चेरी का अर्थ है दासी।
0: अच्छा,
1: यानी कि रानी की दासी
0: है।
1: तो एक कहानी आती है कि रानी और उनकी जो चेरी थी वो दोनों रानी तालाब का काम होते देखने जाया करती थी
0: जी।
1: तो चेरी के मन में भी आया कि मैं भी एक तालाब बनवाऊं, लेकिन उसके पास तो इतनी धन संपदा थी नहीं। तो उसने क्या किया कि जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उनसे ये कहा कि जब भी आप लोग घर वापस जाया करो शाम को, तो ये पास में जो खाली पड़ी जमीन है इसमें से एक पत्थर अपने साथ रोज ले जाया करो
0: जी।
1: तो मजदूरों ने उनकी बात मान ली और वो रोज एक पत्थर अपने साथ, हर एक मजदूर एक पत्थर अपने साथ ले जाने लगा। और धीरे धीरे देखते हैं कि वहां पर तो एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, बारिश आई, पानी भर गया, तो बन गया चेरी तालाब। तो यदि किसी में इच्छा है तो काम हो सकता है।
0: क्या बात है, देखिए मिलजुल कर काम किया जाए तो कोई भी काम संभव। और इससे श्रोताओं में एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि आपके पास सिर्फ मन में लगन होनी चाहिए, कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, भले ही कोई सुविधा हो, कोई संसाधन हो या नहीं हो। इतनी अच्छी लोक कथाएं या कथाएं कहें, हम कहानियां कहें, जो इन तालाबों के निर्माण के साथ जुड़ी हुई हैं। राजवंशों का जो मध्य भारत के जो राजवंश थे उनके इतिहास से कितनी सुंदर ये कथाएं जुड़ी हुई हैं और इतने 56 तालाब बनाए। निश्चित रूप से हम 56 तालाबों की बात तो समय अवधि के कारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप संक्षिप्त में कुछ और तालों के बारे में ज़रूर बताएं।
1: गढ़ा के गोंड राज्य में यानी जबलपुर में एक और तालाब है देवताल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गढ़ा के जो तालाब हैं या कहीं पर भी तालाब होते हैं वो तो धार्मिक आस्थाओं के भी बड़े केंद्र होते हैं। तो ऐसा ही एक तालाब है देवताल, जो गोंड काल में विष्णु देवताल के नाम से भी जाना जाता था।
0: अच्छा।
1: और जब 1563 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत गोस्वामी विट्ठल दास जी ब्रज से गढ़ा पधारे, तब वे देवताल के निकट ठहर गए और वो स्थान तो पवित्र मान लिया गया। तो उनके अनुयायियों ने उस स्थान को बैठक जी का नाम दे दिया
0: जी।
1: और इसके उपरांत देवताल के निकट अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और यहाँ राधा बल्लभ संप्रदाय का ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया और यहाँ पर भी एक पचमठा मंदिर हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है। तो देखिए हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि संस्कारधानी जबलपुर का कोई संबंध ब्रजभूमि से भी हो सकता है।
1: जी हाँ, बड़ा गहरा संबंध रहा है ब्रजभूमि से, हम उसको अगली बार लेंगे
0: जी।
1: लेकिन एक और तालाब है गंगा सागर। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उससे और दूसरे भी प्रभावित होते हैं। तो रानी दुर्गावती के वंशज बाद में जो शासक हुए गढ़ा के वो हैं हृदय शाह। तो हृदय शाह ने भी एक तालाब का निर्माण कराया जिसका नाम है गंगा सागर। तो यह जबलपुर नगर का एक विशाल तालाब है और आज भी अस्तित्व में है और इसमें अब तो सिंघाड़े की खेती होती है, तो ये कई लोगों की आजीविका का साधन भी है।
0: तब के लगाए पेड़ देखिए आज भी फल दे रहे हैं।
1: जी हाँ, एक और तालाब है हनुमान ताल।
0: जी
1: तो ये लगभग वर्गाकार आकार का है और इसमें जबलपुर में ये ठाकुरवाड़ी के पास स्थित है। ये तालाब 1794 में बना। यहाँ पर पहले कोई एक छोटा तालाब रहा होगा गढ़ा के गोंड राज्य का, लेकिन बाद में जब भोंसलों का शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनाया चौकोर, जिसे हनुमान ताल के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के चारों तरफ सीढ़ियाँ भी हैं। एक और तालाब है फूटा ताल
0: जी।
1: क्योंकि कुछ हिस्सा इसका जो आसपास का किनारा होता है वो फूट गया, तो लोगों ने नाम रख दिया फूटा ताल। तो एक जगह है घमापुर, वहाँ पर जब हम सराफा बाजार की तरफ जाते हैं तो फिर ये तालाब पड़ता है।

0: उसका आकार कुछ सूप की तरह दिखाई देता है, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया सूपाताल। और अब तो उसके पास भी बड़ी घनी बस्ती बस गई है। एक और बड़ा नाम आपने सुना होगा, मढ़ौताल
1: जी,
0: है ना। तो मढ़ौताल भी जो है बस स्टैंड के पास में है, और यहाँ पर अब तो ये व्यवसायिक केंद्र बन गया है,
1: जिसे आज हम जबलपुर का मुख्य हृदय स्थल भी कह सकते हैं, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं।
0: जी हाँ, सिविक सेंटर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही है गुलौआ ताल भी, और इसके पास में भी अब अभी है तो अस्तित्व में, लेकिन किसी समय ये सारे ही तालाब बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे और व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र रहे होंगे।
1: जी हाँ,
0: एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो पब्लिश्ड है जबलपुर के जो ये गोंडकालीन तालाब हैं इनके ऊपर, और इसमें उन्होंने बड़ा शानदार ये बताया है कि किस तरीके से उस काल में, यानी कि आज से 500 साल पहले जब हमारे पास मशीनें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस समय भी जो उन्होंने लैंडस्केप का की स्टडी की और उन्होंने जो भूमिगत शिराओं का अध्ययन किया, कौन से तालाब का पानी रिस के भूमिगत होते हुए कहाँ किस तालाब में जाएगा
1: जी।
0: कोई भी तालाब सूखा नहीं रहेगा, है ना। ढलान को समझना, कहाँ पर पथरीली जमीन आ रही है, कहाँ पर किस तरीके का पानी का बहाव होगा, ये सब आजकल हम टोपो शीट के थ्रू करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं टोटल स्टेशन जैसी, और या सैटेलाइट इमेज के थ्रू होता है। बहुत विज्ञान विकसित हो गया, लेकिन उस समय भी उन्होंने उस पूरे, आप समझिए कि अंडरग्राउंड सिस्टम को समझा और कहाँ तालाब होगा उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्लेस किया। तो ये पूरा एक विज्ञान है जिसका कि हमको संरक्षण करना चाहिए था,
1: निश्चित रूप से करना चाहिए। आज जब मशीनों और पूरे संसाधनों के साथ हमें मुश्किलें पेश आती हैं, चुनौतियां होती हैं, तो तब तो कितनी सारी रही होंगी। ये सिर्फ उनका कौशल ही था, प्रबंधन था, कि उनके पास उनका अपना विज्ञान था। कि आपने जैसे बताया कि वो महज पानी के आसपास की जगह की वनस्पतियां देखकर बता देते थे कि यहाँ पे पानी कहाँ होगा, कितना गहरा होगा। और ये एक और आश्चर्यजनक बात आपने हमें पूजा जी बताई कि किस तालाब का पानी अंदर से रिसकर किस जगह पर और जा सकता है और फिर से एक तालाब को नया जीवन मिल सकता है। तो रानी ने मतलब जिस विद्या को प्रश्रय दिया, न सिर्फ प्रश्रय दिया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। उनके जो अधीनस्थ थे, जो अधीन उनके काम करते थे, वो भी प्रेरित हुए उनसे।
0: हाँ बिल्कुल, रानी कई मायनों में हमको बहुत प्रभावित करती हैं
1: जी।
0: उन्होंने तो विद्या अध्ययन के लिए भी बहुत काम किया। एक ये वो समय था जबकि जबलपुर लघु काशी के रूप में जाने लगा।
1: अच्छा,
0: विद्या अध्ययन का ये स्तर पाया तो दूर दूर से लोग बाग यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत विद्यापीठ का निर्माण किया गया था। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक राधा बल्लभ पचपटा मंदिर है। पचपटा मंदिर जो है वो गोंड पीरियड की, गोंड काल की खास शैली है मंदिर निर्माण की
1: जी।
0: और ये जैसे कि नाम से पता चलता है कि मठ थे
1: जी, जी।
0: तो मठ में जो है साधु संत या विद्यार्थी रहते हैं और वो सीखते हैं। तो एक राधा बल्लभ पचमठा मंदिर था, और इसमें एक अभिलेख आज भी हम देख सकते हैं। अभिलेख कहता है कि 1564 ईस्वी में पुष्टि मार्गीय संत थे एक चतुर्भुजा दास
1: जी,
0: वो यहाँ पर पधारे थे
1: जी।
0: और जब रानी ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्कृत विद्यापीठ की रचना की, और इस विद्यापीठ की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली कि जबलपुर उस समय या गढ़ा राज्य उस समय लघु काशी तक कहलाने लगा। तो आज भी आप देखें तो हम उसी कारण से जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो क्योंकि जो आपने तालाबों की कहानी बताई तो वो जल संस्कार भी हो गया, ये शिक्षा संस्कार भी हो गया, और जबलपुर में कलाओं का भी आज हम देखें तो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर मिलता है, चाहे वो संगीत कला हो या चित्रकला हो। इतिहास के पन्नों से एक कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और पूजा जी से हम बात कर रहे हैं, हमारी पुरातत्वविद, और कितनी अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। तो गोंड जाति, गोंड जनजाति ने जो हमारे लिए काम किया है आज तक, देखिए हमेशा से हम कहते रहे हैं कि पानी के इर्द गिर्द ही, जल के आसपास ही सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास हुआ है, और जबलपुर, आज का जबलपुर जो है इसकी जीती जागती मिसाल है। पूजा जी ने बताया कि रानी के शासनकाल में और उनके आगे वाली पीढ़ियों के, यहाँ तक कि उनकी दासी तक ने तालाब वहाँ पर बनवाया, तो आज भी उन्हीं तालों के नाम पर जबलपुर के अलग अलग इलाकों के नाम हमें मिलते हैं, कालांतर में भले ही वो तालाब अब नहीं रह गए। पूजा जी, इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे आगे भी जारी रहेंगी।

0: हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। लेकिन आज समय पूरा हो चुका है तो हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब समय हो गया है तकनीकी की जानकारी से परिपूर्ण कार्यक्रम टेक गुरु का। तकनीक हमारे जीवन का मुख्य आधार बन गई है। इसका सही तरीके से किया गया प्रयोग हमारे जीवन को सुखद बना सकता है। चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, नेट हो, तकनीक से हम सभी जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आपको बहुत सी रोचक बातों से भी अवगत कराया जाता रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। वर्तमान में साइबर सिक्योरिटी की बारीकियों से तो युवा कहीं हद तक परिचित है, पर हमारे बुजुर्ग या कहें वरिष्ठ नागरिक जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की ज्यादा जानकारी न होने के कारण उनके साथ बहुत से फ्रॉड हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा की। आज हमारे बीच टेक गुरु यानी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रदेश प्रमुख हेल्प एज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। संस्कृति जी, रेडियो आजाद हिंद की ओर से आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: संस्कृति जी, वर्तमान में वृद्ध जनों के लिए डिजिटल सुरक्षा क्या है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें बुजुर्गों के साथ फ्रॉड किस प्रकार से किया जाता है?
1: ये जानकारी बहुत आवश्यक है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि हमने जिस प्रकार से कोविड में देखा कि वरिष्ठ नागरिक एक ऐसा व्यक्ति थे जो हर परिवार से और अपने समाज से कट चुके थे, क्योंकि उनके पास आने जाने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक ही माध्यम था जो लोगों को जोड़े हुए था, वो था टेक्नोलॉजी। और जो वीडियो कॉलिंग कर पाते थे या फिर अपने स्मार्टफोन से अगर बात कर पाते थे, सिर्फ वही अपने परिवार से संपर्क में थे। तो वहाँ से हमने इस चीज़ की शुरुआत करी कि क्या हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे कोई चीज़ ला सकते हैं जो उनको परिवार के ज्यादा करीब ला सकता है। तो उस समय हेल्प एज इंडिया ने सोचा कि हम वरिष्ठ नागरिकों की किस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती, किस प्रकार से वो हमसे जानकारी की आवश्यकता होती उनको, उस प्रकार से हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमने कोशिश करी कि हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और कोविड के बाद से पेमेंट से लेकर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, वीडियो कॉलिंग भी है और बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगे हैं। उसको एक्सेस कैसे करना है मोबाइल को, उनको वो नहीं समझ में आता था। फिर उसको एक्सेस करने पे कई बार उनकी गलतियां होती थी, उन गलतियों को कैसे सुधार पाएं। फिर उसको वीडियो कॉलिंग भी करना है या उनको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, उनको वो नहीं पता था। और छोटी छोटी सी जानकारी कि अगर उन्होंने कोई अकाउंट खोल लिया या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो वो करने के लिए पासवर्ड उनको कैसे सिक्योर करना है, सारी चीज़ें हम उनको सिखाना। तो हमने डिजिटल लिटरेसी उनको सिखाना शुरू करा। उसके बाद में हमें आवश्यकता ये पड़ी कि लोगों ने जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन, पहले वरिष्ठ नागरिकों की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5% हुआ करती थी, 2011 की बात करें तो पॉपुलेशन 8.5% हो गई टोटल पॉपुलेशन की, और अगर हम 2022 से 24 की बात करें तो अभी उनकी पॉपुलेशन 10.5% हो चुकी है एल्डरली की। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनके लिए सुरक्षा के लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारे पास जिस प्रकार से कंप्लेंट आई, पहले एक दो बार लोगों ने हमसे शेयर किया वरिष्ठ नागरिकों ने कि हमारे पास अकाउंट है और उनकी मोस्टली सेविंग एक ही अकाउंट में होती है वरिष्ठ नागरिकों की, और बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि बहुत ही वो अपने भोलेपन से बता देते हैं कि ये हमारा अकाउंट है, इसमें पासवर्ड है, बच्चों से कई बार हेल्प ली कैसे हम इसको करें, आप हमारा एटीएम से पैसे निकाल के दे, तो छोटी छोटी चीजें वो हेल्प के लिए। उस वजह से उनके साथ फ्रॉड होना शुरू हुआ। तो जब ये कंप्लेंट हमारे पास में आना शुरू हुई तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ पर उनको थोड़ा सतर्क करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वरिष्ठ नागरिकों को इन सब चीजों से बचा सके। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण आने लगे कि जिनको देख करके हमने फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना आप हमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करें जिसमें हम वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी से एक सुरक्षित कर सकें। तो हमने एक सुरक्षित के नाम से एक प्रोजेक्ट हमें गूगल ने सपोर्ट किया, और उस सुरक्षित प्रोजेक्ट में हमने साइबर सिक्योरिटी से लेकर के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट करा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो ये कार्यक्रम हमने स्टार्ट करा है और इसमें हम बहुत सारे आयामों को कवर कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट आती है वैसे वैसे हम उसको उनके पास एग्जांपल्स और अलग अलग तरह की चीजें हम
0: जी बताते हैं। आपने बताया कि आप हेल्पेज इंडिया से जुड़ी हुई हैं और प्रदेश प्रमुख भी हैं, आपके साथ जो बुजुर्ग या कहें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आप साइबर सिक्योरिटी या वृद्ध जनों के लिए जो डिजिटल सुरक्षा है उसकी जानकारी आप किस तरह से उनको परिचित कराती हैं, किस तरह से उनको जानकारी देती हैं?
1: सबसे पहले तो हमने उनके लिए गाइड बुक बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बनाई है, जिसमें हम लोग उनको किस प्रकार से हर एक एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, एक तो उनके साथ में कि पासवर्ड कैसे बनाना, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लोग पासवर्ड बना लेते हैं और पासवर्ड एक पासवर्ड वो हर जगह यूज करते हैं, और हर जगह पासवर्ड जब यूज होता है तो उनको अगर एक जगह का पासवर्ड उनका क्रैक कर लिया तो सभी जगह से उनका पासवर्ड क्रैक हो जाता है। तो उनको पहले तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाना वो हमने, कहने के लिए बहुत छोटी बात है लेकिन वो बहुत गहरी चीज है जो हम भी शायद आजकल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिकों को जरूर एडवाइस देते हैं कि वो करें इम्प्लीमेंट। तो एग्जाम्पल की हम जैसे उनको एक सेंटेंस बताते हैं कि जैसे हरी हैज टू डॉग्स नेम टॉम एंड जेरी, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाती हैं, एच कैपिटल आता है, हैज का एच स्मॉल आता है, टू में न्यूमेरिकल भी आ जाता है, डी में कैपिटल डी आ जाता है, नेम में एन स्मॉल है, देन टी कैपिटल और एंड का सिंबल वाला एंड आ जाता है। तो उस तरह से उनको हम सेंटेंस के थ्रू सिखाते हैं ताकि उनको याद रहे और वो भूले नहीं, क्योंकि ये चीजें हम लोग भी कई बार पासवर्ड रख के भूल जाते हैं अगर हमने बहुत दिन यूज नहीं करा तो ये कॉमन चीज है जो भूल जाते हैं, उसको हम किस प्रकार से याद रखें उस तरह से भी उनको सिखाते हैं। दूसरा जो हमारे पास वॉइस कॉल आता है मोबाइल पर, वॉइस कॉल आने के बाद में उसको क्लोनिंग की जाती है और आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके फिर आपको उसके लिए फिर थ्रेफ्ट किया जाता है। कुछ आते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू आते हैं कि वीडियो कॉलिंग आपको कर रहे हैं व्यक्ति और आपका फिर वीडियो बना रहे हैं, देन आपको फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं
0: जी।
1: तीसरे एक तरह का जो हमारे पास इसमें जो केसेस आते हैं वो है वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से आता है, जिसमें वो एल्डरली के साथ में आजकल जो कॉमन होने लगे जो पहले कभी नहीं होता था कि उनको फीमेल कॉल कर रही है और फिर उसका वीडियो बना के फिर वो ब्लैकमेलिंग करती है
0: जी, जी, जी।
1: और उसके अलावा हमारे पास में आपने भी देखा होगा कि अगर हमारा एमपीबी से कॉल आ गया कि एमपीबी से आपका आज ये बिल पे करें इस पे और नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, और ये बहुत कॉमन हो गया, तुरंत वो फ्रॉड जो करते वो कॉल करते हैं जबकि एमपीबी से कॉल नहीं आता है। एक और ऑप्शन है कि बच्चे को उन्होंने बोला आपका बेटा इस समय कहाँ पर है, तो वो बताएंगे हमारा बेटा कहीं बाहर गया है, तो वो बोलेंगे नहीं आपका बेटा हमारे पास बैठा हुआ है और उसने कहीं ड्रग्स में फंस चुका है और आप हमें इतने पैसे ट्रांसफर करें, तो हम उसको किसी को नहीं बताएंगे, रिलीज कर देंगे, वो हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। कहीं से भी वो अपनी एक डिग्निटी बताते हैं और उस तरह से बात करते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमें बचाना है उसको कैसे भी करके, और वो कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास में केसेस आते हैं, अब उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये हमारा एक दूसरा।
0: जो आपकी पुस्तक है उसमें और भी चीजें जो बताई गई होंगी उसके बारे में आप बताइए ना कि
1: इसमें हमने एक तो किस प्रकार से आपको किस तरह की लिंक को क्लिक करना है, कि जैसे HTTPS होता है HTTP होता है, तो HTTP अगर है सिर्फ तो उसको आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती है, जब तक HTTPS नहीं होगा तब तक आप उसको क्लिक नहीं करें, वो सिक्योर साइट नहीं होती है
0: जी।
1: दूसरा इसमें कई चीजें हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का है, तीसरा हमने इसमें मेंशन किया हुआ कि आपको किस प्रकार से डिजिटली एक्सेस करना है कि मोबाइल के ऑपरेशंस कैसे करना है
0: जी जी।
1: चौथा हमने इसमें डाला हुआ है कि क्या क्या ऑप्शंस है, अगर आप कभी फंस जाते हो तो आप किसको हेल्प के लिए अप्रोच करेंगे, वो हमने इसमें डाला हुआ है। इस प्रकार से हमने 5-6 पहलू को इसमें डाला हुआ है, और यदि आप कोई ऑनलाइन स्कैम में फंस रहे हैं तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे। हमने जो सिक्योर पासवर्ड की बात करी कि सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए इसमें, फिर बैंकिंग में अगर ऑनलाइन यदि आप करें तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना है, बिल्स आपको कैसे पे करना है वो हमने इस नोटबुक में कवर किया हुआ है, फिर प्रोटेक्शन कैसे करना है अपने पासवर्ड का, फिर आप स्कैम यदि हो रहा है तो उसको आप कैसे सिक्योर करेंगे, व्हाट्सएप आप कैसे यूज करें जिसमें आप सेफली रहें और आपके साथ कोई थ्रेफ्ट ना हो, और कैब बुकिंग यदि करना है तो कैब बुकिंग में भी कई बार
0: फ्रॉड
1: हो जाता है फ्रॉड, तो वो आप कैसे सिक्योर करते, हमने मेजरली ये चीजें कवर करी है इसमें।
0: वृद्ध जनों के साथ हुए फ्रॉड के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है क्या जिस पर वे तत्काल बात कर अपनी समस्या बता सके?
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी है और जिसका नंबर है 1930
0: जी।
1: जब भी कभी भी किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल जो गोल्डन आवर्स हम कहते हैं कि तुरंत आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है तो वो इस नंबर पर है। इस नंबर पर जब भी आप कॉल करें उसके पहले जिस प्रकार का आपके पास फ्रॉड हुआ है उसकी पूरी जानकारी पहले आप एक पेपर में लिख लें, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया तो उसका अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट गया है, किस डेट को गया है, किस बैंक से गया है, कि बस कोई लिंक अगर आया था जिस पे आपने क्लिक करा उसके बाद गया है, या किसी पर्सन पे आपको लगता है कि किसी पर्सन ने भेजा था, तो आप उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आप पूरी पहले एक पेपर पे लिख ले, फिर उनको कॉल करें, क्योंकि आपसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप वो जानकारी लेने के बाद में तुरंत आप उनको कॉल करें, तो वो फिर पूरा कोशिश करते हैं उसको ट्रैकिंग करने के लिए। और साइबर क्राइम का जो गवर्नमेंट का साइट है उसका cybercrime.gov.in वेबसाइट है, इसको आप क्लिक करके बहुत सी आप जानकारी, गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी हेल्पलाइन, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं।
0: संस्कृति जी, आपके साथ में या आपके साथ जो वृद्धजन हैं उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, फ्रॉड हो गया, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
1: जैसा कि मैंने बताया कि फ्रॉड कई तरह के होते हैं, तो जैसे हमारा वीडियो कॉल सेक्सटॉर्शन के नाम से एक फ्रॉड होता है। तो एक वरिष्ठ नागरिक ने, जब ये हम डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करते हैं, तो कई लोग अपनी अलग अलग केसेस सुनाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया। पैसे निकलना तो एक बहुत कॉमन चीज है, जो कम से कम हर वर्कशॉप में कम से कम 4-5 एल्डरली हमें बताते हैं उनके साथ हो चुका है। ये वर्कशॉप होने के बाद में किसी एल्डरली के पास में, जबकि सब कुछ प्रिवेंशन सब कुछ बताया था, फिर भी कम से कम 15-20 दिन बाद एक एल्डरली का कॉल आता है। उन्होंने बताया कि किसी फीमेल ने उनको वीडियो कॉल किया, कुछ 2-3 मिनट बात करी और उसने कॉल रख दिया। उसके बाद में उसने उनका पिक विक लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हीं के वीडियो बना करके उनको भेजा गया। और वो एल्डरली इतना डर चुके थे कि वो फैमिली को बता नहीं पा रहे थे कि उन्होंने एक नॉर्मल टॉकिंग करा था, लेकिन उसको उन्होंने मोल्ड करके AI के थ्रू बहुत उसको एनिमेटेड कर दिया था। मतलब उनका ये स्थिति हो गई थी, वो सुसाइड करने के मूड में आ गए थे। फिर उन्होंने हमारे यहाँ जो डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं राकेश, उनको कॉल किया कि ऐसा सा हुआ है मेरे साथ में, क्या कोई बचाव है इसमें? तो उन्होंने बोला कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही परिवार से आपको छुपाने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें बाहर का व्यक्ति यदि आपको परेशान कर रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में जाएं, वहां पर कंप्लेंट करें, रिटर्न में कंप्लेंट दें, और उसके बाद में फिर आपको सहायता दी जाएगी। तो तब जाके वो थोड़ा सा उनको एश्योरेंस मिला कि नहीं, हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से भी उन्होंने हेल्प ली, प्लस जाकर के उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उसमें साइबर सिक्योरिटी करी। तो ये चीजें भी ऐसी, तो जो एल्डरली सोचते उनके साथ ये चीजें नहीं होंगी, या यंग जनरेशन सोचती उनके साथ में होगा, लेकिन होता है ये चीजें। इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ एल्डरली के केसेस आए थे, जिसमें वो वॉइस को लेकर के था, उनका बेटे की वॉइस में किसी एल्डरली को कॉल कर रहे हैं, पापा मुझे अभी अर्जेंट में, मतलब मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, अब मैं अपने दोस्त के फोन से लगा रहा हूँ, आप मुझे इतना इतना अमाउंट पे कर दो, मेरे अकाउंट में अभी नहीं है। अब पिताजी हैं, उन्होंने तुरंत उसको भेज दिया अकाउंट, पता पड़ा बेटे ने कॉल ही नहीं किया था, क्योंकि बेटे की वॉइस रिकॉर्ड करके उन्होंने खुद कॉल किया था। तो जो पैसा हमारा हमारी गलती से चला जाता है, उसको वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा यही एम है डिजिटल सेफ्टी से, कि हम किस प्रकार से उनको प्रिवेंट कर पाए, पहले ही हम गलती करने के पहले उनको रोक पाए, ताकि वो इस स्टेज पे जा ही नहीं पाए।
0: जैसे बुजुर्ग जो है आम साइबर सिक्योरिटी के खतरों से खुद को वो कैसे बचा सकते हैं,
1: उसके लिए कुछ डोंट एंड डूज हैं कि क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि ये मत करो, चलोगे गिर जाओगे, लेकिन ये चीज ऐसी जिसको आप इमेजिन नहीं करते हो। आज आपके पास में कोई थ्रेफ्ट सामने आया, आपने उसको प्रिवेंशन कर लिया, कल को कोई नई चीज आ जाएगी, तो उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। और क्योंकि वरिष्ठ नागरिक, तो AI एक ऐसी चीज है जो बहुत टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही, दिन पे दिन नई नई चीजें आती जा रही है। तो हमारी अगर एज ग्रुप की बात करें, मिडिल एज ग्रुप, यंग एज ग्रुप की, हर चीज हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, जबकि हम डेली उस चीज को यूज कर, हम डेली लैपटॉप पे बैठते हैं, काम करते हैं, हम मोबाइल पे एक्सेस करते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हो जो हम भी नहीं समझ पाते। तो उसको इजी बनाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कुछ चीजें उनको एडवाइस जो है वो होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे साइट्स हैं, जैसे हमने कोई भी साइट यदि वो सर्च भी कर रहे हैं, कई बार किसी को लर्निंग की आदत होती है कि एल्डरली है तो लैपटॉप बैठ कर कुछ सीखना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो URL जब भी क्लिक करें तो वो सेफ है या नहीं है उस साइट को देख करके करें, जिसमें HTTPS हो तो ही देख करके वो उस पर क्लिक करें। दूसरा, यदि कोई आपको कॉल करके, मिस कॉल करके छोड़ रहा है या बार बार आ रहे हैं, तो वो आप कॉल बैक ना करें। अगर अर्जेंट होगा तो आपको दोबारा कॉल बैक करेगा, और उसको अगर अननोन पर्सन है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फोन काट दें, जब तक वो अगर अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं बता रहा है। तीसरा एक ये होता है चीजें कि जब व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल यदि अननोन नंबर से आ रहा है तो आपको कॉल उठाना ही नहीं है उसको। तो वीडियो कॉल जब आते हैं और हम उसको बिल्कुल देख करके करते हैं, तो वो चीजें आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि हम उस चीज को, वीडियो कॉल है उसको नहीं उठाएं। अगर हमारे कोई परिचित भी कर रहे होंगे तो फिर हम टेक्स्ट करें पहले कि हाँ मैं हूँ या कुछ है, उसके बाद यदि आपको देख भी रहा कि अननोन पर्सन, तो तुरंत उसको, गलती से आपने अटेंड भी कर लिया तो तुरंत उसको काट दें। दूसरा एक ऑप्शन है कि ओटीपी होता है। ओटीपी यदि आपके पास में आ रहा है तो ओटीपी आप पहले देख लें सिक्योर है नहीं है। यदि आपको किसी बैंक यदि आप ट्रांजैक्शन करें तो आप बैंक में कंफर्म भी कर सकते हैं फोन करके कि हमने ये ट्रांजैक्शन करने के लिए किया था, क्या आपके ये भी सिस्टम है या नहीं है, आपको श्योर है तो ही करें, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। हर जगह हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं और दे विल रिस्पॉन्ड। कुछ होता है कि जैसे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो वेरिफिकेशन के लिए कॉल के लिए आप वो बोलेंगे हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम आपका डाटा वेरीफाई करना है, तो आप पहले उस बैंक को कॉल करेंगे क्या आपने किसी व्यक्ति को वेरिफिकेशन के लिए कॉलिंग पे लगाया हुआ है। हम वेरिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही देना चाहेंगे, हम किसी भी अननोन पर्सन को वेरिफिकेशन के लिए नहीं दे सकते। तो एल्डरली मना कर सकते हैं साहब कि हम वेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। और लिटरेसी की बात, कोई भी पेपर्स है तो यूजुअली कई बार आते हैं कि किसी ने कुछ अप्लाई कर दिया है कि आपके बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया और वो आपके पास आ गए साइन करवाने कि बच्चे ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ साइन करना, तो आपको किसी को एंटरटेन ही नहीं करना है। कोई भी अननोन पर्सन एंटरटेन किसी और के नाम से आपको कॉल कर रहा है तो आपको बोलना नहीं, पहले हम खुद आप खुद उससे उसी के नंबर पर बात करें उसके बाद ही उसको एंटरटेन करें, किसी और के नंबर से आप एंटरटेन ना करें। और बाकी मेन हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो ओटीपी शेयर कर देते हैं कि जैसे हमसे नहीं हो पा रहा तो हमने किसी और को बोला, तो आप किसी मतलब किसी भी चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे आपके पड़ोसी हो चाहे इनमेट्स हो चाहे आपका कोई भी उसको ओटीपी कभी शेयर ना करें। अधिकतर ये गलती करते हैं कि उनसे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा तो बोलते अच्छा बेटा मैं ओटीपी भेज रहा हूँ तुम कर दो, क्योंकि उनको वो प्रोसेस करने में तकलीफ हो रही है, तो हम वो प्रोसेस को सीख लें बजाय कि उसको हम शेयर करने के।
0: संस्कृति जी, जैसा कि बहुत से मोबाइल्स में हमारे पास में भी मैसेजेस आते हैं, आज ये कंपनी इतने इतने फलाने का इतना इतना रिचार्ज आपको उपलब्ध करा रही है, तो ये जो मैसेजेस होते हैं ये किस कारण से होते हैं, या सही होते हैं या फ्रॉड होते हैं?
1: ये जो हम बात करें कि किसी की तरफ से अगर मैसेज आ रहा है तो कोई भी कंपनी हो सकता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी का भी है, तो बेटर है कि आप पहले अपने ही जिस कंपनी का है उसको आप कॉल करें और उनसे वेरीफाई करें बजाय कि उस पर भरोसा करने के। और हर चीज आपको वेबसाइट पर जो है वो करेक्ट लिंक करेक्ट फोन नंबर्स मिल जाते हैं, उनके थ्रू आप उसको एक्सेस करें।
0: नहीं, जैसे कि बुजुर्गों के पास में भी मोबाइल है, आजकल सब एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, या छोटे मोबाइल भी है, कीपैड मोबाइल्स भी है, उनके अंदर भी जैसे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं कि आप इसको दबाइए, इसको प्रेस करने से आपके खाते में इतने इतने लाख रुपए पहुंच जाएंगे।
1: बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सबसे इनसिक्योर चीज यही लिंक होती है। किसी भी प्रकार के लिंक पे हमें क्लिक करना ही नहीं है, और यदि हमने क्लिक कर दिया तो हो सकता है उसके तुरंत बाद ही आपके अकाउंट से पूरा पैसा चला जाए। और एक और चीज इसमें होती है कि जब हम लिंक कोई भेजता है तो अगर वो सिक्योर जगह से नहीं आई है तो हमको वैसे भी उसको एंटरटेन नहीं करना है, और यदि सिक्योर आती है तो भी नहीं होता। कई बार एक एग्जाम्पल ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट के साइड हमने देखी, वहीं से एक नंबर लिया और कॉल किया, लेकिन वो व्यक्ति फ्रॉड निकला, उसने हमें लिंक भेज के और पैसा निकाल लिया हमारे अकाउंट से और हमें पता नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमने नंबर जो लिया था गवर्नमेंट के साइट से लिया था। तो हम पहले ये भी वेरीफाई करें कि क्या ये उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नंबर है या नहीं है। तो आजकल मोबाइल नंबर के चेंज हो जाते हैं, पहले सिर्फ लैंडलाइन नंबर होते थे तो हमें भरोसा होता था कि ये लैंडलाइन नंबर पर्टिकुलर ऑफिसर्स का ही है या गवर्नमेंट के जितने नंबर है उस पर दिया हुआ है। आजकल मोबाइल नंबर होने से एक इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, तो हमें किसी भी चीज को लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है।
0: मान लीजिए अगर किसी ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में उसके साथ जो फ्रॉड होता है उसके लिए क्या किया जा सकता है?
1: उसके लिए सबसे पहले तो जिस बैंक का अकाउंट है वहां पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अकाउंट को ब्लॉक करवाना पड़ता है, और दूसरा जो हमने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर वो कॉल करें ताकि वो अपने लेवल पे उसको कुछ एक्शन ले पाए। अगर कैसे हो भी गया किसी के साथ तो तुरंत ही 1930 पर कॉल करें और वो जो गोल्डन आवर आपका जो रहता है एक घंटे उसके अंतर्गत वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प दे पाए, क्योंकि पैसा निकल जाने के बाद में हमारी गलती से थोड़ा मुश्किल होता है वापस आना।
0: अच्छा, संस्कृति जी, हम अपने मोबाइल कंप्यूटर को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं?
1: उसके लिए कुछ तरीका आप अपना सकते हैं, खास करके हमारे वरिष्ठ नागरिकों को हम ये सलाह देते हैं कि आप हमेशा एक तरह का लॉक ना रखें अपने मोबाइल पर। कभी आप पिन नंबर डालें उसमें पासवर्ड का, कभी आप फिंगरप्रिंट रखें, कई बार आप फेस रिकॉग्निशन के हिसाब से आप उसको डाल के रखें, या उसका पैटर्न वाला लॉक करें। तो समय समय से उसको चेंज करते रहें सो दैट आप सिक्योर रहेंगे। और दूसरी चीज़ें जो अक्सर वरिष्ठ नागरिक नहीं करते हैं वो है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन कि अपडेट्स जो आते हैं मोबाइल पर वो हम लोग नहीं करते हैं, तो उसकी भी उनको सलाह देते हैं कि आप लोग समय समय पर जो अपना मोबाइल जिस कंपनी का उसके अपडेट्स आते हैं वो आप उसको अपडेट कर देना ताकि आप सिक्योरिटी से बच सकते हो।
0: जी जी जी। यदि किसी को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप करानी है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है?
1: डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप जो हम करवाते हैं उसमें हम अधिकतर जो हमारा भी फोकस रहता है सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस कि जितने भी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनको हम संपर्क करते हैं और हम एक बैच जो रखते हैं 35 से 40 लोगों का ताकि अच्छे से हम एक एक सीनियर सिटीजन तक पहुँच सके
0: जी,
1: और उनको हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कराते हैं। तो ये हमारा सेशन करीबन 1.5 से 2 घंटे का रहता है जिसमें हम 1 से 1.25 घंटे का सेशन रहता है और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं। एक एक व्यक्ति हमसे कई चीजें पूछता है कि ये मोबाइल पे मेरे इसमें ये सिक्योरिटी नहीं दिखा रहा, आपने बताया करना, तो हम कैसे करें। तो हम अपने वॉलंटियर्स भी साथ में रखते हैं ताकि कुछ उनको गाइड करते जाए। तो ये वर्कशॉप जो हम करते हैं 2 घंटे का, इसमें उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते जाते हैं साथ साथ में। और ये सब एक बार यदि हो जाता है, दूसरी बार हो सकता है कि आधे लोग ऐसे जो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, उनको लगा हमने समझ लिया, लेकिन जब ये घर पे जाके कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाए। उसके लिए हम इनसे बोलते हैं आप दोबारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हम दूसरी बार भी आप लोगों के लिए रख सकते हैं, या हम जिस जगह दूसरी वर्कशॉप कर रहे हैं तो उनको इनवाइट कर लेते हैं जिनको रिक्वेस्ट हमारे पास में आई है कि हमें कुछ चीजें और समझनी है। एग्जाम्पल जैसे हमने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उनको हमने ये डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप करा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के संपर्क में एसोसिएशन वालों के कम से कम हमारे पास में 20 और ट्रेनिंग के रिक्वेस्ट आई कि हर एरिया वाइज अलग अलग होते हैं एसोसिएशंस बने होते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: तो लगता है कि हमारे पास तो इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं और हर व्यक्ति चाहता है इसकी ट्रेनिंग लेना, तो हम हर व्यक्ति को समय और एक निश्चित स्थान अपना फिक्स कर लेते हैं और उनकी सुविधा के अनुसार हम लोग करते हैं, वरिष्ठ नागरिक जब सुविधाजनक रहे और वो हमसे संपर्क करें। दूसरा इसमें हम ये करते हैं कि हम इनके साथ में एक फीडबैक सेशन भी रखते हैं कि जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो उनको एक फीडबैक फॉर्म हम फिल करवाते हैं, उसमें उन्होंने जो सीखा है वो क्या समझ में आया उनको और क्या वो नई चीज और सीखना चाह रहे हैं जो हमने नहीं एड ऑन करी थी, या उनको लगता है कुछ एग्जाम्पल है उनको लगता है ये हमारे संपर्क में आया ऐसा केस और आपने नहीं इसके बारे में बताया, तो वो भी हम उसको एड ऑन कर लेते हैं। उनका हम 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनाते हैं कि उनका फीडबैक कैसा रहा, बहुत उनको अच्छा लगा। तो अधिकतर सब सीनियर सिटीजन बोलते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग हमें फीडबैक हमें मिलता है और वो चाहते हैं कि ऐसी वर्कशॉप में लगातार हम करें
0: करते हैं।
1: और संपर्क करने के लिए हम से यदि आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्पेज इंडिया के वेबसाइट पे जब मध्य प्रदेश डालेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि आप एक नंबर लिखना चाहें तो आप एक नंबर लिख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के ही राज्य प्रमुख का नंबर है 9973-01230। ये नंबर पर आप संपर्क करके और हमें कॉल कर सकते हैं। फीडबैक जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद में जब लोग चले जाते हैं अपने घर में तो हो सकता है 10 दिन बाद किसी के साथ में कुछ कॉल हुआ। तो जैसे एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे जिसमें हमने एक वीडियो कॉलिंग वाला एग्जांपल भी दिया था कि उनके साथ में वीडियो कॉलिंग हुआ पर वो अपने आप को डर के और सुसाइड करना चाह रहे थे तो उनको प्रिवेंट हमने किया, नहीं तो वो व्यक्ति परिवार से समाज से और लोगों से डर के सुसाइड कर रहे थे क्योंकि उनको ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से इस उम्र में उनके साथ में इस तरह की गलत घटना हो जाएगी कि महिला आपको वीडियो कॉल कर रही है फिर आपके लिए उल्टे सीधे वीडियोस आपके बना के भेज रही है और वो बोल रही मैं आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसा डालो नहीं तो मैं क्या आपके संपर्क के लोगों को भेज दूंगी वीडियो, अगर वायरल हो जाएगा तो वो किसी मतलब उनको लगता मैं समाज के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा गिल्ट फीलिंग आ गई थी कि वो सुसाइड करने को जा रहे थे, तब उन्होंने हमें संपर्क किया कि मैंने आपकी ट्रेनिंग की थी आप लोग हमें गाइड करो। फिर उनको हमने गाइड किया थे आप पहले साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन करें, डरने की जरूरत नहीं है, वो गलती आपने नहीं करी है, कोई और व्यक्ति आपको फंसा रहा है तो उसके लिए आप ना डरें, और उस तरह से हमने उनको प्रिवेंट किया था। ऐसे ही हमसे एक लिंक जैसे भेज देते हैं लोग, किसी ने लिंक भेजी तो वहां से उन्होंने हमारे एम्प्लॉई को फोन किया कि ये वाली लिंक मेरे पास में आई है क्या इसको क्लिक करके मैं भेजूं, और वो उनके काम की थी लिंक
0: जी।
1: तो हमारे व्यक्ति ने उनको साफ मना कि नहीं ये आप पहले जिस डिपार्टमेंट का है जिस जगह का बैंक का बोल रहे हैं पहले आप उस बैंक में संपर्क करें उनसे बात करें श्योर हो जाएं कि क्या आपके अधिकारी ने हमें भेजा है। तो उन्होंने बोला था नहीं ये किसी थर्ड पर्सन ने भेजा था बैंक से नहीं आया था। तो ये इस तरह से हम उनको प्रिवेंट करते हैं। तो लोग क्वेरी के लिए हमें रेगुलरली फोन करते जाते हैं आफ्टर वर्कशॉप।
0: संस्कृति जी ये जो डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग वर्कशॉप है ये कितने दिनों की होती है?
1: ये सिर्फ 2 घंटे की होती है, 1 दिन में 2 घंटे की, यदि कई बार 3 घंटे भी चल जाती है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आंसर। कई बार एल्डरली बोलते नहीं हम तो आप तो हमें 1 घंटा और बैठो लेकिन हमें सारी क्वेरीज सॉल्व करके जाओ। हमारा जो सिखाने का समय होता है वो मैक्सिमम 1.5 घंटे होता है, 1.5 घंटे के बाद में आप जितना समय क्वेरी और समझने में उसको प्रैक्टिकल में दे पाए।
0: इसमें क्या सेशंस होते हैं?
1: 3 घंटे मैक्सिमम आप लेके चले सेशन, और 1 दिन में हम 3 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं पर क्लैश नहीं होना चाहिए वो।
0: संस्कृति जी क्या ट्रेनिंग होने के बाद में यदि किसी को आवश्यकता होती है तो आप किस तरह से उनकी सहायता करते हैं?
1: ट्रेनिंग की बात में दो तरह के हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है। एक तो प्रिवेंशन के लिए आती है कि हमने जैसे हमारे परिचित हैं इनके साथ में हो गया, अब आप इनको बताओ कैसे करना है, जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है तो वो हेल्प चाहते हैं। पहले तो हम सजेशन देते हैं कि अब हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग इस जगह पर होने वाली है तो आप यहाँ पर आके उसको अटेंड कर लें। और दूसरा, अगर इंस्टेंट हेल्प की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ फ्रॉड हो गया, उनको तुरंत हेल्प की जरूरत है, तो हम तुरंत उसको फोन कॉल के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं, जो उनको डिटेल होता है वो भेजते हैं और हम उनको हमारे लेवल की हेल्प होती है वो कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है जो पैसा जाने के बाद हम भी कुछ नहीं कर पाते, बैंक भी कुछ नहीं कर सकता, बट हम उनको गाइडेंस दे पाते हैं सही कि आपको कब किससे संपर्क करना है ताकि आप उसको प्रिवेंशन कर सके। दूसरा, लोग हमें फीडबैक देते हैं कि आप कुछ हमें नई चीजें और हैं जो एड ऑन कर, जैसे किसी के साथ कोई नया एग्जांपल हो गया कि एक हमसे सीनियर सिटीजन ने कर रहा था कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे आजकल मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर के गेम्स खेल रहे थे। अब गेम्स खेलते खेलते वो ऐसे साइट उन्होंने क्लिक कर दी जिससे उनका पैसा निकल गया। उनको पता नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बच्चे क्या कर देंगे, ये उनकी गलती नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों को हम मोबाइल अक्सर दे देते हैं, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को मोबाइल ना दें, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको क्लिक करने से हम गलत ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं बच्चे
0: जी, जी।
1: तो वो उसके लिए हमें संपर्क किया जाता है। और तीसरा होता है कि वो हमें चाहते हैं कि आपने एक ट्रेनिंग कर दी, हमारे कई साथी ऐसे जिनको ट्रेनिंग करना है, तो उनके लिए आप हमें दोबारा ट्रेनिंग सेशन करें, उस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं। तो ये तीन चार तरह की मदद हम लोग कर पाते हैं।
0: संस्कृति जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं अंत में एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि हम सभी लोगों पे भरोसा करते हैं, तो सब पे ना भरोसा करके सिर्फ परिवार वालों पे भरोसा करें। कोई भी चीज आपको सीखनी हो, खास करके मोबाइल ट्रांजैक्शन को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के, तो सिर्फ अपने ही व्यक्तियों को पासवर्ड शेयर करें या किसी से भी शेयर ना करें। ऑनलाइन अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, चार बार पूछ लें करने के पहले, क्योंकि वो एक क्लिक पे आपका कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और अननोन व्यक्ति का फोन उठाए नहीं, वीडियो कॉल ना उठाए आप लोग, और अननोन किसी भी साइट पे क्लिक ना करें, और जब भी आपको आवश्यकता हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारे साथ टेक गुरु के रूप में जुड़ी हुई थी प्रदेश प्रमुख हेल्पेज इंडिया सुश्री संस्कृति खरे जी। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि संस्कृति जी ने जो हेल्पलाइन नंबर हमें बताए हैं उन्हें हम दोहरा रहे हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें। किस पर करें? 1930 पर। और साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हेल्पेज इंडिया से वरिष्ठ जनों को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग देने के लिए 9977301230 पर संपर्क कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा टेक गुरु कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम की परिकल्पना अदिति गौड़। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
2: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
1: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थी, लेकिन अवसर भी थे।
2: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
1: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। ये स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
2: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
1: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
2: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
1: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायम कुलन के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है, जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
2: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
1: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है, लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
2: जी हाँ बिल्कुल, कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
1: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
2: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
3: है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके ये है बॉम्बे मेरी जान।
2: मुंबई पहुँचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे, जहाँ तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
1: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था। रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
2: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
1: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
2: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्रॉइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
1: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक है जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
2: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
1: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
2: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
1: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
2: बिल्कुल, जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता, और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
1: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
2: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे, लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार

0: पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
1: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की, अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
0: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं, लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
0: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
1: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
0: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
1: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
0: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
1: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
0: बिल्कुल, और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
1: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
0: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था, जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
1: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
0: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी, शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
1: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनके कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थीं। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
0: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
1: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है, वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो, लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
0: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं, लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
1: एक दिलचस्प घटना है, 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
1: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
0: बिल्कुल। और आर के लक्ष्मण, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था, कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
1: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। यह सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
0: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
1: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
0: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम, जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन हैं, जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहां आते रहते हैं।
1: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
0: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
1: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा जिसकी मां चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा ना बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
0: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है। वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
0: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
1: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। नमस्कार।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां 17 अगस्त की शाम आयोजन किया गया जश्न आजादी मुशायरे का, जिसमें रचनाकारों ने अपने कलाम सुनाए।
1: जश्न

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में।
1: मोहतरमा भावना, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव साहिबा,
2: मैं अपने सफर का आगाज करती हूँ और सबसे पहले जश्न आज़ादी के हवाले से अपने भाव कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। सुने कि

0: बहुत शुक्रिया। मेरे नज़दीक आज़ादी का मतलब शायरी से भी है। शायरी हमें एक ज़हनी आज़ादी देती है, जहाँ हम दुनियावी मसाइल को छोड़कर कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, कहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, तो वो भी एक तरह से आज़ादी है। और उसी सिलसिले में एक मतला और एक शेर देखें, सुने कि एक मुद्दत पे आईना देखा, मतलब यूं कहा कि एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा। एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा। और शेर सुने कि रंग भरते हुए सलाखों में, रंग भरते हुए सलाखों में मैंने चिड़ियों का काफिला देखा। बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में एक मतलब कुछ अशार देखें कि एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा।
1: वाह।
0: एक मुद्दत पे आईना देखा, हूबहू अक्स आपका देखा, रंग भरते हुए सलाखों में, रंग भरते हुए सलाखों में मैंने चिड़ियों का काफिला देखा।
1: क्या
0: बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, किस लिए चुनता है कोई खामोशी का रास्ता। धीरे धीरे ये हमारी भी समझ में आ गया, किस लिए चुनता है कोई खामोशी का रास्ता। चलते चलते इस नए जंगल में कैसे आ गए, चलते चलते इस नए जंगल में कैसे आ गए, हम तो समझे थे कि है ये वापसी का रास्ता, हम तो समझे थे कि है ये वापसी का रास्ता।
1: बहुत अच्छा।
0: रात रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, रात वो नेमत है जो रोशन है अपने नूर से, वो भला कब देखती है रोशनी का रास्ता।
1: क्या कहने हैं।
0: बहुत शुक्रिया। सुने कि उसी पे तालियां मिलने लगी जमाने की, जो दास्तां ही नहीं थी कहीं सुनाने की।
1: वाह।
0: उसी पे तालियां मिलने लगी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसी पे तालियां मिलने लगी जमाने की, जो दास्तां ही नहीं थी कहीं सुनाने की।
1: वाह।
0: खुद अपनी लत सी लगी है मुझे इधर ऐसी,
1: वाह।
0: खुद अपनी लत सी लगी है मुझे इधर ऐसी, मैं राह देखती रहती हूँ सबके जाने की।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं।
0: शुक्रिया।
1: बहुत अच्छे।
0: खुद अपनी लत सी लगी है मुझे इधर ऐसी, मैं राह देखती रहती हूँ सबके जाने की। और शेर सुने कि अना भी तरके ताल्लुक की वजह बनती है,
1: अना भी तरके ताल्लुक की वजह बनती है,
0: अना भी तरके ताल्लुक की वजह बनती है, सलाहियत नहीं होती है जब निभाने की।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने।
0: शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सुने कि अना भी तरके ताल्लुक की वजह बनती है, सलाहियत नहीं होती है जब निभाने की। हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, खबर मिली है मुझे जब से उसके आने की।
1: क्या कहने हैं। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, बहुत बहुत शुक्रिया। अना भी तरके ताल्लुक की वजह बनती है, सलाहियत नहीं होती है जब निभाने की। हजार नुक्स निकल आए हैं मेरे घर में, खबर मिली है मुझे जब से उसके आने की। बहुत शुक्रिया। सुने कि मुस्कुरा लेने की आसानी अभी मौजूद है, मुस्कुरा लेने की आसानी अभी मौजूद है, शुक्र कीजिए इश्क लाफानी अभी मौजूद है। मुस्कुरा लेने की आसानी अभी मौजूद है, शुक्र कीजिए इश्क लाफानी अभी मौजूद है। मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं,
1: मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं,
0: मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, पत्थरों के बीच में पानी अभी मौजूद है।
1: वाह अच्छा है भाई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह।
0: मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, बहुत शुक्रिया। मछलियाँ ये सोच कर तालाब में ठहरी रहीं, पत्थरों के बीच में पानी अभी मौजूद है, यूं तो है सुनसान घर बाजार रस्ते सब मगर,
1: वाह,
0: यूं तो है सुनसान घर बाजार रस्ते सब मगर शहर दिल में एक सैलानी अभी मौजूद है,
1: वाह वाह वाह,
0: यूं तो है सुनसान घर बाजार रस्ते सब मगर शहर दिल में एक सैलानी अभी मौजूद है। मछलियाँ ये सोचकर तालाब में ठहरी रहीं, पत्थरों के बीच में पानी अभी मौजूद है। और शेर देखें कि शायरों से पूछते हैं और क्या करते हैं आप,
1: शायरों
0: से पूछते हैं
1: और क्या करते हैं आप,
0: शायरी में ये परेशानी अभी मौजूद है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। सुने कि कारे उल्फत में अभी काम बचा है कितना, कैसे बतलाऊं कि नुकसान हुआ है कितना, यूं तो रंगों से मेरी खूब शनासाई थी, यूं तो रंगों से मेरी खूब शनासाई थी, रंग जो उसका चढ़ा है वो नया है कितना।
1: हाय हाय हाय,
0: और शेर सुने कि उसको बस इतना पता है कि उसे देर हुई, उसको बस इतना पता है कि उसे देर हुई, काश वो जानता नुकसान हुआ है कितना,
1: क्या
0: काश वो जानता नुकसान हुआ है कितना। और आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है, सुने कि आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है, इससे अंदाजा लगाएं वो खफा है कितना आजकल।
1: अच्छा है, आ हा हा भाई, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है,
0: आजकल वो मेरी हर बात पे हाँ कहता है,
1: आहा,
0: इससे अंदाजा लगाएं वो खफा है कितना, इससे अंदाजा लगाएं वो खफा है कितना, जिस तरह राहे तगाफुल को चुना है उसने, जिस तरह राहे तगाफुल को चुना है उसने, कौन जाने कि सफर साथ बचा है कितना,
1: क्या कहें।
0: और एक और शेर जिसे आप सब रिलेट करेंगे कि उसके बिगड़े हुए लहजे से पता चलता है,
1: वाह,
0: उसके बिगड़े हुए लहजे से पता चलता है, आज दफ्तर में वो हलकान हुआ है कितना,
1: क्या कहने क्या कहने।
0: किसे मालूम है कैसे उजाला कर रहे हैं हम, कि शब भर जाग के जुगनू इकट्ठा कर रहे हैं हम,
1: वाह।
0: और शेर की हमें मालूम है उसकी तवज्जो कैसे मिलनी है,
1: वाह,
0: हमें मालूम है उसकी तवज्जो कैसे मिलनी है, सो बस मसरूफ होने का दिखावा कर रहे हैं।
1: आहा, अच्छा है भाई, वाह वाह वाह वाह,
0: हमें मालूम है उसकी तवज्जो कैसे मिलनी है, सो बस मसरूफ होने का दिखावा कर रहे हैं हम, बहुत हिम्मत जुटा के फिर भरोसा कर तो लें लेकिन, बहुत हिम्मत जुटा के फिर भरोसा कर तो लें लेकिन, हमें डर है वही गलती दोबारा कर रहे हैं हम, हमें डर है वही गलती दोबारा कर रहे हैं हम, और ढलेगी रात कब तक ये नहीं परवाह है हमको, ढलेगी रात कब तक ये नहीं परवाह है हमको, है जब तक रोशनी खुद में उजाला कर रहे हैं हम।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत कलाम डॉक्टर भावना श्रीवास्तव साहिबा पेश कर रही थी। दोस्तों, जनाब संतोष चौबे साहब,
2: जब जब भी 15 अगस्त आता है तो मुझे अपनी अम्मा की याद आती है। अम्मा का एक रेडियो था जो वो अपने पास रखती थी, और 15 अगस्त के समय ज़रूर उसका उपयोग करती थी। तो ये कविता है अम्मा का रेडियो, जो 15 अगस्त की याद भी दिलाती है। इसका नाम है अम्मा का रेडियो। सिराने रहता था वो उनके किसी दोस्त की तरह, कि जब भी चाहें कर सकें उससे बात। सुबह सवेरे बिस्मिल्ला खान करते मंगल ध्वनि से उनके दिन की शुरुआत, और फिर हरिओम शरण के भजनों के साथ वे लेती अपनी पहली चाय। हम सोकर उठते उसके पहले वे कर लेती अपने पौधों की देखभाल, संगीत सरिता के शास्त्रीय गीतों का रस लेते हुए। लंबी दोपहरी में जब हम रहते काम पर, वे चौपाल पर सुनती लोकगीत, और अक्सर शाम को लौटने पर सुनाती कोई नीति कथा जिसने गहरे छुआ होता उनका मन। 15 अगस्त और 26 जनवरी अब भी विशेष दिन थे उनके लिए। देशभक्ति के गीत अब भी उन्हें जोश से भरते और याद दिलाते उन पुराने दिनों की, जब दादा के साथ वे जाती थी शाला में झंडा वंदन करने। सुबह सुबह नहाने और साफ सुथरी साड़ी पहनने के बाद वे बैठती रेडियो के सामने और ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण कि सबने मिलकर लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी है तो सब कुछ है। तब जब समय नहीं था हमारे पास उनसे बात करने के लिए, रेडियो से बांटा उन्होंने अपना अकेलापन। उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सराहने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं सर, वाह वाह वाह।
2: उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सराहने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़। हम सभी लोग 50 साल के होते हैं और अपने अपने अनुभव भी होते हैं। इस कविता का नाम है सुई। सुई धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से हर पार। धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से हर पार, पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग। सुई अलग थी धागा अलग, पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग। सुई अलग थी धागा अलग। हाथ धीरे से कांपा दिल। अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा, कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा। अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार, कहाँ बन पाया है ठीक ठीक अपना सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के पोर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु अद्भुत संतुलन के साथ, उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था एक आंसू, गिरा कि अब गिरा। उसी तरह जैसे आंखों की कोर में टिका था एक आंसू, गिरा कि अब गिरा। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इस तरह इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर।
1: वाह,
3: ये थी आज की रेड रिपोर्ट। अगली रेड रिपोर्ट तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना गंगा के पावन तट पर खड़ा वो तेजस्वी दानवीर जिसके लिए त्याग कोई प्रदर्शन नहीं, स्वभाव था। सूर्य की प्रखर किरणों के मध्य जल में स्थिर कर्ण मानो तप, तेज और करुणा का संगम बन गया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस दृश्य को जिस दिव्यता से रचा है, वो केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि भीतर उतरता है।
1: जी हाँ, अब कथा उस संधि क्षण में प्रवेश कर रही है जहां भाग्य अपनी अगली चाल चलने वाला है। गंगा की धारा अभी भी उतनी ही निर्मल है, आकाश में सूर्य उतना ही दैदीप्यमान, किंतु प्रकृति के इस शांत विस्तार के भीतर कोई अदृश्य हलचल जन्म ले चुकी है। कर्ण अपनी उपासना पूर्ण कर चुका है। जल से उठता हुआ वह सूर्य पुत्र मानो स्वयं तेज का प्रतिरूप प्रतीत होता है। तभी तट पर एक सूक्ष्म सी आहट सुनाई देती है। देखने में तो वह क्षण साधारण है, पर महाकाव्य अक्सर ऐसे ही मौन पलों में दिशा बदलते हैं। कौन जानता है कि ये आने वाला अतिथि एक याचक है, देवता है या स्वयं नियति का दूत।
0: श्रोताओं, मनुष्य का वास्तविक मूल्य तब नहीं आका जाता जब उसके पास सब कुछ सुरक्षित हो, बल्कि तब परखा जाता है जब उसके सामने अपने ही तेज का अंश अर्पित करने की घड़ी आ रही हो। कर्ण अब ऐसे ही एक धर्म संकट के द्वार पर खड़ा है जहां दान केवल उदारता नहीं रहेगा बल्कि उसके व्यक्तित्व की अंतिम कसौटी बनने वाला है। आगे का प्रसंग त्याग, तपस्या और आत्मगौरव की ऐसी गाथा है जो शताब्दियों बाद भी हृदय को आंदोलित करती है। आइए अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 की ओर, जहां सूर्य पुत्र कर्ण की महिमा एक नए शिखर को स्पर्श करती है। सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग 3 का काव्य पाठ। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया और बोला,
2: जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी, नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं, आश्वासन से ही अभी तो हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है, लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रह्लाद कोटि में आप गिने जाते हैं, सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं, ऐसा है मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है, क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है, अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा, नहीं केवल ऊंची अभिलाषा।
0: ब्राह्मण सबसे पहले कर्ण की दानशीलता, सत्यनिष्ठा और वचन पालन की प्रशंसा करता है। वो उन्हें केवल महान योद्धा नहीं बल्कि शिवी, दधीची और प्रहलाद जैसी त्यागमयी परंपरा का उत्तराधिकारी बताता है। ये प्रशंसा केवल अलंकार नहीं है। दिनकर जी यहां कर्ण के चरित्र की उस ऊंचाई को स्थापित करते हैं जहां मनुष्य अपने वैभव से नहीं अपने त्याग से महान बनता है। यही भारतीय संस्कृति का शाश्वत आदर्श भी है। किंतु यदि हम इस संवाद को ध्यान से सुने तो अनुभव होगा कि यह केवल स्तुति नहीं है। प्रत्येक शब्द मानो कर्ण की आत्मा की परीक्षा ले रहा है। ब्राह्मण बार बार उन्हें उनके वचन, उनके साहस और उनके दान धर्म का स्मरण कराता है। वो जानता है कि जिस मनुष्य का जीवन उसके सिद्धांतों पर टिका हो उसे पराजित शस्त्रों से नहीं बल्कि उसके अपने धर्म की कसौटी पर ही किया जा सकता है। यही इस प्रसंग का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सौंदर्य है।
1: दिनकर जी की लेखनी की यही तो विलक्षणता है। ये संवाद के भीतर भी अनेक स्तर रच देते हैं। ऊपर से यह एक साधारण बातचीत प्रतीत होती है किंतु भीतर नियति अपना जाल बुन रही है। श्रोता भी नहीं जानते कि यह ब्राह्मण वास्तव में कौन है, लेकिन वातावरण संकेत दे रहा है कि आज जो भी मांगा जाएगा वह साधारण दान नहीं होगा, यह ऐसा दान होगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा।
0: दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की महानता इसी में है कि वो पात्रों के बाहरी कर्मों के साथ साथ उनके अंतर मन का भी उतना ही सूक्ष्म चित्रण करता है। रश्मिरथी में दिनकर जी केवल महाभारत की कथा नहीं कहते बल्कि मनुष्य के चरित्र, उसके धर्म, उसकी निष्ठा और उसके आत्मसम्मान का ऐसा विश्लेषण करते हैं जो हर युग में प्रासंगिक बना रहता है। यही कारण है कि ये काव्य केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि प्रत्येक बार नए अर्थों के साथ आत्मा में उतरता है। ये प्रसंग हमें एक और गहरी शिक्षा देता है। किसी मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है और उससे वही सबसे प्रिय वस्तु मांगी जाती है। कर्ण के सामने भी अब ऐसा ही क्षण आने वाला है। उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय, उनकी दानवीरता की सबसे बड़ी परीक्षा और उनके चरित्र की सबसे ऊंची कसौटी अब कुछ ही क्षण दूर है।
1: तो आइए अब सुनते हैं इस अमर प्रसंग का अगला चरण, जहां एक साधारण सा प्रतीत होने वाला याचक ऐसा दान मांगता है जिसे सुनकर स्वयं देवता भी विस्मित रह जाते हैं। आगे की कथा केवल दान की नहीं बल्कि धर्म, वचन, त्याग और अमर मानवीय गरिमा की कथा है। फिर कर्ण कहते हैं,
3: वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वो भला कहां जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वो कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी, डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा।
1: भली भांति कसकर दाता को बोला तुच्छ भिखारी,
2: धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी, ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहां दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जगभर को, सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा, अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूं।
1: बोल उठा राधेय,
3: आपको मैं अद्भुत पाता हूं, सुर हैं या यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काटकर पद पर यहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका धोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही, एक बार भी नाही।
0: श्रोताओं, जब ईश्वर परखते हैं तो वे केवल हमारे बाहुबल को नहीं हमारे धैर्य को देखते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी में धैर्य ही मनुष्य का असली कवच होता है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक प्रश्नों से घिर जाता है, जब परिस्थितियां हमारी निष्ठा को तौलने लगती हैं, तब लगता है मानो ईश्वर स्वयं विभिन्न रूप धरकर हमारी परीक्षा ले रहे हों।
1: हाँ, और सच तो ये है कि जिनका हृदय विशाल होता है, जिनका संकल्प निर्मल होता है, उनकी देहरी पर तो परीक्षा स्वयं चलकर आती है। यहाँ कर्ण के साथ परिस्थिति साधारण नहीं है, यह केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, यह इतिहास का मोड़ है। फिर भी देखिए, वह महामानव अपने सिद्धांत से डिगता नहीं, अपने वचन से हटता नहीं, यही तो महानता है। जब नियति द्वार खटखटाए और मनुष्य शांत स्वर में कहे, आइए मैं तैयार हूं, इस निस्तब्ध तट पर शब्दों का भी शस्त्र परीक्षण हो रहा है। एक ओर भाग्य की धुंधली रेखा, एक ओर भुजबल का उन्मेष प्रखर हो रहा है। यह क्षण अभी प्रस्तावना है, परीक्षा की पूर्ण रात्रि शेष है। आई श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग के भाग चार की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां कर्ण जीवन के इस महासंग्राम में स्वयं को भी दान देने को तैयार है।
0: सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला,
2: धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें, कृपा कर कवच और कुंडल दे।
0: कवच और कुंडल? विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को।
3: समझा तो ये और ना कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा स्वयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत ना जान सका मैं। छिपकर आया आप, नहीं इसे पहचान सका मैं। तीन विप्रही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश ना लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों, प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे। व्यर्थ ना उसके शर अमोग मुझसे टकराकर टूटे। उधर करें बहु भांति पार्थ कि स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से।

0: भी रिपु के सम्मुख होना है।
1: देवराज, हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वो और किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वो भी विभेद हरता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वो इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला।
2: दोस्तों, गंगा अब भी उसी शांति से बह रही है। संध्या की अंतिम स्वर्णिम आभा धीरे धीरे जल में विलीन हो रही है। हवा थम सी गई है, मानो प्रकृति स्वयं इस संवाद को सुनने के लिए मौन धारण कर चुकी हो। सामने खड़े हैं कर्ण, निश्चल, तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरे हुए। और अब रहस्य का पर्दा उठ चुका है। याचक कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं देवराज इंद्र है। किंतु आश्चर्य ये है कि सत्य प्रकट होने पर भी कर्ण के स्वर में न क्रोध है न शिकायत, वहां केवल विनम्रता है, आत्मगौरव है और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा है।
3: यही कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। वे इंद्र को पहचान लेने के बाद भी उन्हें कठघड़े में खड़ा नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि स्वर्ग का राजा मेरे द्वार पर याचक बनकर आया है। यह वाक्य केवल दानवीरता का परिचय नहीं देता, बल्कि उस भारतीय संस्कृति का भी परिचायक है, जहां याचक का सम्मान उसके परिचय से नहीं, उसके आग्रह से किया जाता है। कर्ण जानते हैं कि उनके साथ छल किया जा रहा है, फिर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते, यही उन्हें असाधारण बनाता है।
2: लेकिन दिनकर जी कर्ण को केवल दानी नहीं दिखाते, वे उन्हें एक विचारक के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कर्ण इंद्र से प्रश्न करते हैं, यदि अर्जुन को बचाना ही उद्देश्य है तो क्या ये युद्ध न्यायपूर्ण रहेगा? क्या किसी योद्धा का कवच पहले ही उतार लेना वीरता कहलाएगा? ये प्रश्न केवल इंद्र से नहीं है, ये हर उस व्यवस्था से है जो विजय के लिए न्याय का मार्ग छोड़ देती है। कर्ण यहाँ पराजय से नहीं डरते, वे केवल अन्याय से असहमत होते हैं।
3: ये काव्यांश सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मैं स्वयं उस तट पर खड़ी होकर वह संवाद सुन रही हूँ। गंगा का वेग कानों में गूंजता है, मध्याह्न का सूर्य जल पर स्वर्ण रेखाएं खींचता है और वातावरण में एक विराट स्तब्धता ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे गंगा स्वयं कर्ण से संवाद कर रही हो, हे सूर्यपुत्र मत टिको, मेरी धारा की तरह निरंतर बहो, शिलाओं से टकराकर भी अपना मार्ग न छोड़ो। तुम्हारा जन्म संग्रह के लिए नहीं, समर्पण के लिए हुआ है। तुम दान के लिए आए हो और आज देवता भी तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर खड़े हैं। यह तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारे तेज का उत्कर्ष है। सूर्य की किरणें मानो उसके कंधों पर हाथ रख कहती हो, स्थिर रहो, क्योंकि जब मनुष्य अडिग रहता है तभी वह

0: देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है।
1: श्रोताओं, आज हम उस क्षण के साक्षी बने जहां कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि वीरता केवल शस्त्र की धार में नहीं आत्मा की दृढ़ता में बसती है। कवच कुंडल उसके शरीर की रक्षा करते थे, पर उसका सच्चा कवच उसका वचन था। देवराज सामने खड़े थे, नियति प्रश्न बनकर उपस्थित थी, फिर भी कर्ण के स्वर में कंप नहीं आया। उसने तर्क दिया, धर्म की बात की, युद्ध की मर्यादा की बात की और अंततः स्वयं को समतल भूमि पर लाने का निर्णय लिया। ये दान नहीं, यह आत्म गौरव की ज्योति थी। ये घोषणा थी कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य होकर ही लड़ूंगा। और अब ये काव्य कथा उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां इस महादान के दूरगामी परिणाम सामने आने लगेंगे। नियति ने अपना बीज बो दिया है, समय उसे फलित करने की तैयारी में है। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग से भाग 5 का काव्य पाठ।
2: जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही चलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा मेरे पर हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज कर घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का ये फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे ही क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी ना सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी ना सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वो कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है ये कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रतुल में। वो कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य मनुष्य तब भी ना कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वो आगे चल सकता है। वो कर्तव्य है ये कि युद्ध में मारो और मरो तो, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए ना पांव धरो तुम। वो कर्तव्य है ये कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर ना लगाओ। देवराज छल छदम स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल। धर्म छोड़ भजते ना कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वहीन में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निहसीम चलेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई नापना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक ना घबराएंगे। निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा।
1: श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना।
0: यह अंश जैसे ही समाप्त होता है, एक क्षण को श्रोताओं के भीतर भी वही मौन उतर आता है जो स्वयं कर्ण के हृदय में था। यहाँ कर्ण केवल अपने दुख का वर्णन नहीं कर रहा, वह नियति से संवाद कर रहा है, देवताओं से प्रश्न कर रहा है और मनुष्य को उत्तर दे रहा है।
1: कर्ण नियति से हार कर भी नियति को ललकारता है। वो कहता है कि वंश नहीं पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, परिस्थिति नहीं चरित्र बड़ा है, और विजय नहीं सत्य पथ का निर्वाह ही असली जय है। यहां कर्ण केवल राधेय नहीं रहता, वो उन सब का प्रतीक बन जाता है जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया, पर जिन्होंने भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दिया। दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो केवल वीरों की विजय का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके आंसुओं को भी उतनी ही गरिमा देता है। दिनकर जी ने कर्ण की पीड़ा को करुणा का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे आत्मसम्मान की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए रश्मि रथी पढ़ते समय हमें कर्ण पर दया नहीं आती, बल्कि उनके प्रति गहरा सम्मान जाग उठता है। यही किसी महान कवि की सबसे बड़ी सफलता होती है,
0: और यही रश्मि रथी की महानता है। यहाँ महाभारत की कथा धीरे धीरे जीवन दर्शन में बदल जाती है। कर्ण अपने दुखों की गिनती अवश्य करते हैं, किंतु किसी से दया नहीं मांगते। वे अपने भाग्य को कोसते हैं, किंतु अपने साहस को कभी छोटा नहीं होने देते। ये अंतर ही उन्हें साधारण मनुष्य से असाधारण व्यक्तित्व बना देता है। वे परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने चरित्र की कसौटी बना लेते हैं। श्रोताओं, संध्या की यह बेला अब धीरे धीरे रात्रि की गोद में समाने लगी है। कर्ण की वाणी अभी भी गंगा की लहरों पर गूंज रही है, और उनके आदर्श हमारे मन में दीपक की लौ की तरह जल रहे हैं। अब समय है आज की इस काव्य यात्रा को यहीं विराम देने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, समन्वय सहयोग था सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, और इसे आप तक पहुंचाया हम सभी साथी कलाकारों ने। मैं भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा,
2: और मैं आपका दोस्त दीपक नेमा।
0: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं पर विराम लेती है। आप सभी से हम फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक हमें दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
3: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन,
4: और मैं दीपक।
3: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आपको बताते हैं हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें पूरा देश और ये दुनिया ही मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही अर्थों में वे एक महान वैज्ञानिक हैं और मिसाइलों के सृजक के रूप में विख्यात हैं।
4: श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्म एक गरीब पर ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, दक्ष और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पिता के लिए अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान काम नहीं था, पर वे विनम्र और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने और लाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली बालक अब्दुल कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
3: डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक लेख के अनुसार उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। इस पुजारी परिवार के मानवीय मूल्यों ने कुछ हद तक कलाम साहब को प्रभावित किया। भगवद गीता में कही गई गूढ़ बातों और उनके संदर्भ को उन्होंने समझा। वे आज भी शुद्ध शाकाहारी और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें इस सुसंस्कृत पड़ोसी से बहुत प्रेम और स्नेह मिला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम जिला मुख्यालय के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक उनके साथ भी गए। उन्होंने कलाम को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
4: डॉक्टर कलाम ने शॉर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल का संचालन रामेश्वरम के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता था। वहां वे छात्रावास में रहे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा। पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने अध्यापकों का भी दिल जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए सन 1950 में वे समीप के नगर तिरुचरापल्ली गए और वहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। डॉक्टर कलाम वहाँ 4 वर्ष तक रहे। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में उनकी रुचि भौतिकी में हो गई। BSc उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम यानी एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि वे विमान चालक बनेंगे। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अंत में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
3: मद्रास का DMIT कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में प्रवेश लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उनके सामने 2 अवसर थे। दोनों उनकी पसंद के थे। पहला था वायुसेना में भर्ती होकर पायलट के रूप में आगे बढ़ना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDAP में निदेशक का कार्यभार संभालना। उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे और दोनों ही स्थानों पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे समय पर वायुसेना के साक्षात्कार के लिए गए और साक्षात्कार उनकी आशा के अनुकूल हुआ। इस साक्षात्कार के 1 सप्ताह बाद उन्हें देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना था। यहाँ शारीरिक योग्यता के साथ साथ अन्य अनेक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का साक्षात्कार था। 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया जाना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। उन्हें लगा कि वे वायुसेना में जाने का अवसर गंवा चुके हैं। उन्हें दुख भी था। फिर उसके बाद वहां से वे ऋषिकेश गए। पावन गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे पास ही स्थित शिवानंद आश्रम में गए। स्वामी जी के दर्शन कर वे बेहद प्रभावित हुए। वे स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वायुसेना में काम करने का अवसर खो देने के कारण वे दुखी हैं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना था वो हो चुका है, इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि ये बेहतरी और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की ये बातें सुनकर डॉक्टर कलाम जी को शांति मिली। इसके बाद वो वहां से चल दिए और दिल्ली आ गए।
4: कुछ समय पश्चात ही उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। शायद उनके भाग्य में यही काम करना लिखा था। वे 3 वर्ष उत्तर भारत में ही रहे। इस दौरान 1 वर्ष तक वे औद्योगिक नगरी कानपुर में भी रहे। अलग अलग लोगों से उनका संपर्क हुआ, पर उनका मन हमेशा रामेश्वरम की शांति के लिए लालायित रहता था।
3: इसके बाद उनका स्थानांतरण बेंगलुरु में नव स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। डॉक्टर कलाम कार्यभार संभालने के लिए बेंगलुरु गए। कुछ समय बाद उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया। इस दल को 3 वर्ष में पूर्ण रूप से स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व सौंपा गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कराना चाहते थे। वे जब भी बेंगलुरु का दौरा करते तब इस परियोजना की प्रगति को अवश्य देखते थे। हॉवरक्राफ्ट का नाम भगवान शिव के वाहन के नाम पर नंदी रखा गया था।
4: उसके बाद कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया और यह परियोजना भी ताक पर रख दी गई। एक बार वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के प्रमुख ने कलाम से कहा कि एक उच्चाधिकारी इस परियोजना को देखने आ रहे हैं। वे उच्चाधिकारी नियत दिन आए। उन्होंने परियोजना और उसकी प्रगति के विषय में पूछताछ की और कई सवाल भी किए। डॉक्टर कलाम को यह पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। वास्तव में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के निदेशक प्रोफेसर MG के मेनन थे।
3: कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु एक साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन ने कलाम का साक्षात्कार लिया और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस तरीके से साक्षात्कार किया, डॉक्टर कलाम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया है। अगले दिन से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर विभाग में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का माहौल बहुत ही अच्छा और अनुकूल था और सरकार के अन्य विभागों से पूरी तरह से अलग।
4: सन 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के लिए चुना गया। पूरे परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का अवसर मिला है। 6 महीने बाद कलाम भारत लौटे। देश का प्रथम रॉकेट नाइक अपाशे विदेश से उपहार में मिला। इसे 21 नवंबर 1963 को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। डॉक्टर कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। उसकी सफलता के बाद वैज्ञानिक और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। इसके बाद डॉक्टर साराभाई द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि उपग्रह विमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV और कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया।
3: और इसी बीच सन 1968 में भारतीय रॉकेट समिति यानी इंडियन रॉकेट सोसाइटी की स्थापना की गई। भारत के पूर्वी किनारे पर मद्रास से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में श्री हरिकोटा द्वीप में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नामक एक नई सरकारी एजेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए थुम्बा में विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए इस प्रयोगात्मक स्टेशन की सुविधा का उपयोग करना और उसका लाभ उठाना सुनिश्चित हो गया।
4: स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती 15-20 वर्षों के दौरान हमारी सेना को अतिरिक्त पुर्जे और अन्य रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी शक्तियां अपनी पुरानी और अप्रचलित सैन्य सामग्री हमारे जैसे विकासशील देशों को देकर यह जताती थी जैसे वे हम पर कृपा कर रही हों। विदेशी इन उपकरणों की आपूर्ति कर विकासशील देशों से बहुत अधिक धन कमाते थे। इस कमी को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए एकीकृत नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। प्रोग्राम के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 12 से 15 घंटे तक प्रतिदिन काम करके डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मिसाइलों का जब गहन और विस्तृत अध्ययन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 4 प्रकार की मिसाइलें बहुत ही आवश्यक हैं।
3: पहली है जमीन से जमीन पर मार करने वाली और दुश्मन के टैंकों, जहाजों और सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली मिसाइल।
4: दूसरी है जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सकती है।
3: और तीसरी है आकाश से आकाश में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो आकाश में आने वाले दुश्मन के बम वर्षक विमानों और मिसाइलों की टोह लगाकर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर सके। और चौथी मिसाइल है श्रोताओं, ऐसी मिसाइल जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मन के ठिकानों और उनकी सैन्य सामग्रियों का सफाया किया जा सके।
4: इसके बाद रोहिणी परियोजना के प्रमुख के रूप में डॉक्टर कलाम ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने और मिलने जुलने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने उपग्रह प्रमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का कार्य किया और SLV-3 की सफल उड़ान में कामयाब रहे। डॉक्टर कलाम को महसूस हुआ कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मिसाइलों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए डॉक्टर कलाम आज भी उनके कृतज्ञ हैं।
3: अंतरिक्ष विभाग में कार्यभार संभाल लेने के बाद भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं का लाभ उठाया। वे संगठन के निकट संपर्क में रहे। वहां पर वैज्ञानिकों के समूह ने मिसाइलों को विकसित करने में उनकी सहायता की थी। मिसाइलों के विकास में डॉक्टर कलाम ने सबसे अधिक योगदान दिया था। उनके अनुसार अग्रभाग यानी कि सामने के हिस्से पर बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल वास्तव में एक विध्वंसक हथियार है। अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों और भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया या यंत्र विधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइल निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता लगा सकती हैं। मिसाइल भेदी मिसाइलों का प्रयोग दागी गई मिसाइलों को उनके मार्ग में ही रोककर नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन देश मिसाइलों का उत्पादन करते थे। भारत ने पृथ्वी, आकाश, नाक, अग्नि जैसी अलग अलग मिसाइलों के उत्पादन और निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। श्रोताओं, भारत विश्व में छठा मिसाइल उत्पादक देश है।
4: एक दिन 30 दिसंबर 1971 को दिल्ली में एक विशिष्ट समिति की बैठक में भाग लेने के बाद डॉक्टर कलाम थुम्बा वापस लौट रहे थे। उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई थुम्बा में ही थे। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली से उन्हें टेलीफोन कर बैठक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनसे कहा कि वे मुंबई जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर साराभाई से थुम्बा हवाई अड्डे पर मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु डॉक्टर कलाम जब थुम्बा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ घंटे पहले डॉक्टर साराभाई का स्वर्गवास हो गया है। इस घटना से डॉक्टर कलाम को बहुत गहरा दुख पहुंचा। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग का कार्यभार डॉक्टर सतीश धवन को सौंपा गया। डॉक्टर धवन ने SLV-3 की व्यवस्था डॉक्टर कलाम के हाथों सौंप दी।
3: इसके बाद सन 1975 में इसरो एक सरकारी संगठन बन गया और उसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। सन 1976 में 102 वर्ष की आयु में डॉक्टर कलाम के पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद ही उनकी माताजी का भी देहांत हो गया।

0: प्रगति देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी परीक्षण स्थल पर गए थे। अगस्त 1985 में डॉक्टर कलाम को अमेरिकी वायुसेना ने अपनी निपुणताओं का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनके साथ उनके तीन अन्य सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। इसी बीच 16 सितंबर 1985 को श्री हरिकोटा परीक्षण रेंज से त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर श्री हरिकोटा रेंज से पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम भार वाले बम ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पश्चिमी राष्ट्रों ने सफलता पर चिंता प्रकट की और 7 देशों ने भारत को आवश्यक कच्चा माल नहीं देने का निर्णय किया। परंतु इसके बाद भी अपनी क्षमता को सिद्ध करते हुए भारत ने 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साथ ही जादवपुर विश्वविद्यालय और उसके बाद आईआईटी मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 25 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। वे प्रधानमंत्री को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों और साथ ही वैज्ञानिक विकास के संबंध में परामर्श देते और उनका मार्गदर्शन करते रहते।
1: केंद्र सरकार ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल विकसित की। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी मालवाहन क्षमता 1000 किलोग्राम है। इसका प्रयोग एक युद्ध अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने पराध्वनि प्रणाली यानी सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो शत्रु के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए भी डॉक्टर कलाम ने एक शक्तिशाली मिसाइल विकसित की है। यह मिसाइल आकाश से जमीन पर मार कर सकती है। अब वे इसे राडार प्रणाली से जोड़कर और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस प्रकार चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग पत्र दे दिया और विज्ञान की सेवा करने की योजना बनाई। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला और इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने उनसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2002 को काफी बहुमत से डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और इस प्रकार श्रोताओं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्रोताओं,
1: सदैव मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर कलाम सरल, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे मित्रों और सहकर्मियों की बात शांतिपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सरल ढंग से समझाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सरल और महान वैज्ञानिक अपने प्रयासों में प्रगति करते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करें।
0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जो आज केंद्रित था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हुए राजस्थान के अलवर नगर में गए थे और लोगों के अनुरोध पर कई दिन ठहरे भी थे। हम लोगों ने उनके द्वारा लिखित पत्रों और दूसरे संस्मरणों से ये जाना कि वहां के महाराजा मंगल सिंह जी से उनकी भेंट हुई थी और कैसे पश्चिमी सभ्यता के कायल महाराजा ने स्वामी जी की संगत में असली भारतीय संस्कारों को पहचाना और उनके अनुयायी संस्कारों का विवरण हमें प्राप्त है। स्वामी जी से जुड़ी अनेकों कहानियां और घटनाएं आज भी अलवर वासियों से सुनी जा सकती हैं। अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी ने अलवर वासियों को बेहद प्रभावित किया था। उनके उदाहरणों, उपदेशों और जोशीले कथनों से वहां के लोगों ने एक नया आस्वाद पाया और वे उनके प्रति अधिक आकृष्ट हुए।
1: एक वृद्ध भी स्वामी जी के पास नित्य आते, प्रश्न पर प्रश्न करते रहते और स्वामी जी के आशीर्वाद की याचना करते। स्वामी जी ने भी उन्हें कुछ साधना प्रणाली सिखाई थी, किंतु वृद्ध उसका अभ्यास नहीं करते थे। अंत में स्वामी जी के धैर्य की सीमा टूट गई। उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन उसे दूर से आते देखते ही मौन धारण कर लिया। उन्होंने उस वृद्ध के किसी प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, दूसरे बंधु बांधवों के अभिवादन आदि का भी कोई उत्तर नहीं दिया। कोई भी यह सोच समझ नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। इस प्रकार 1.5 घंटे बीत जाने पर भी स्वामी जी जब काष्ठ मूर्तिवत बैठे रहे, तब क्रुद्ध और क्षुब्ध हो वृद्ध अपने आप बड़बड़ाता हुआ चला गया। तभी स्वामी जी बच्चे की तरह हंसी से खिलखिला पड़े और अन्य लोग भी साथ ही हंसने लगे। अंत में एक युवक ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप उस बूढ़े के प्रति इतने कठोर क्यों हुए? तब स्वामी जी ने अत्यंत सरल और मृदु भाव से कहा,
2: देखो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे उपदेश का पालन करना चाहते हो और करने की सामर्थ्य भी है। किंतु देखा ना, ये बूढ़ा अपने जीवन के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इंद्रिय भोग में व्यतीत कर अब सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन के अयोग्य होकर सोचता है कि चाहने मात्र से भगवान को पा जाएगा। सत्य की उपलब्धि के लिए पौरुष और उद्यम, जो उद्यम नहीं कर सकता उस पर भगवान की दया होगी कैसे? जिसमें पौरुष नहीं है वो तो तमोगुण से भरा है। अर्जुन अपने पौरुष का परित्याग कर रहे थे, इसी से तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वधर्म पालन का आदेश दिया था, जिससे वे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर सत्व गुण, चित्त शुद्धि, कर्म त्याग एवं आत्मसमर्पण के योग्य हो सके। शक्तिमान हो, पौरुषयुक्त बनो। मनुष्य यदि वीर्यवान और शक्तिवान हो सके तो उसके दुष्कर्म करने पर भी मैं उसके प्रति श्रद्धा करता हूं, क्योंकि उसका साहस और वीरत्व ही एक दिन उसे कुपथ त्याग की प्रेरणा देंगे और फिर वो कभी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म नहीं करेगा और इस प्रकार अंततोगत्वा वो सत्य की उपलब्धि करने में समर्थ हो सकेगा।
0: स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण कर अलवर के कई युवकों ने संस्कृत सीखना चाहा। स्वामी जी उन लोगों को पढ़ाया करते थे। वे कहा करते थे,
2: संस्कृत पढ़ो और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों के विज्ञान का भी अनुशीलन करो और सभी वस्तुओं को समीचीन एवं यथार्थ रूप से देखना और बोलना सीखो। परिश्रम करो ताकि हम लोगों के इतिहास को विज्ञान सम्मत भित्ति पर नए रूप से प्रस्तुत कर सको। अभी तो हम लोगों के इतिहास का कोई सिर पैर ही नहीं, इसकी घटनाएं कालानुक्रम की यथार्थता और शुद्धता से रहित हैं। अंग्रेजी ने हम लोगों के देश का जो इतिहास लिखा है उससे हम लोगों के मन में दुर्बलता ही आएगी, क्योंकि वे केवल हमारे पतन और अवनति का ही उल्लेख करते हैं। जो विदेशी हम लोगों की रीति नीति तथा हम लोगों के धर्म और दर्शन से बहुत कम परिचित हैं, वे विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से भारत का इतिहास कैसे लिख सकते हैं? इसलिए स्वभावतः अनेक भ्रांत धारणाएं और गलत निष्कर्ष आ गए हैं। तथापि ये बात भी माननी होगी कि विदेशियों ने ही हमें ये मार्ग दिखाया है कि हम लोगों को अपने प्राचीन इतिहास के संबंध में किस प्रकार अन्वेषणा करनी होगी।
0: स्वामी जी देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे और ये भी जानते थे कि अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति को जाने बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वे कहते थे,
2: भारत का इतिहास भारतीयों को ही लिखना होगा, अतएव विस्मृति के सागर से अपना लुप्त और गुप्त राशि के उद्धार के लिए कमर कस लो। किसी के बच्चे के खो जाने पर कैसे वो जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन नहीं लेता, उसी तरह जब तक भारत के गौरवमयी अतीत को जन मन में पुनरुज्जीवित नहीं कर पाते हो तब तक विश्वास मत करो। वही होगी सच्ची और स्वाभाविक राष्ट्रीय शिक्षा, और इस शिक्षा की प्रगति के साथ साथ राष्ट्रीय भावना जागृत हो उठेगी।
0: एक दिन स्वामी जी ने पूछा, नजदीक में कोई साधु रहता है क्या? उत्तर में एक व्यक्ति ने बताया, थोड़ी दूर पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी रहते हैं। स्वामी जी उसी समय उस व्यक्ति के साथ ब्रह्मचारी से मिलने चले। ब्रह्मचारी संभवतः वैष्णव और सन्यास विरोधी थे। गेरुआधारी सन्यासी को दूर से देखते ही उन्होंने क्रुद्ध स्वरों से गेरुआ की निंदा और सन्यासियों पर गालियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। स्वामी जी के इन सब पर ध्यान दिए बिना ब्रह्मचारी के सम्मुख उपस्थित होने पर ब्रह्मचारी ने अभद्र भाव से कहा,
3: तू गेरुआ क्यों पहनता है? मैं गेरुआधारी सन्यासी को फूटी आंखों भी देख नहीं सकता।
4: जी माफ कीजिए, मैं तो अपने गुरुजी के कहने पर गेरुआ वस्त्र पहनता हूँ। मुझे तो आपके जैसा उजला सफेद वस्त्र ही पसंद है।
3: ठीक है, बता क्यों आया है मेरे पास?
4: जी ईश्वर और धर्म के संबंध में आपसे जानना चाहता हूँ।
3: तुझे क्या यह गंभीर विषय समझ में आएगा?
4: जी कोशिश करूंगा समझने की।
3: ठीक है, कुछ खाएगा? भूखा है?
4: जी नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ।
3: भीख में मिला ही क्या होगा जो खाने की बात कर रहा है? मैं तुझे अच्छा भोजन दूंगा।
4: जी मैं तो सन्यासी हूँ, जो रूखा सूखा मिल जाता है उसी में संतोष कर लेता हूँ।
3: अच्छा, हम अच्छा खाना खाते हैं जानकर तुझे जलन हो रही है? जा दूर हो जा, खाएगा नहीं तो दूर हो।
0: स्वामी जी प्रणाम करके वापस आ गए और बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे,
4: बच्चा तूने अच्छा साधु दिखाया, कितना तीखा मिजाज और कैसी गाली गलौज की चोट। अरे बाप, मैं तो उसकी भाव भंगिमा देखकर मन ही मन खूब आनंद ले रहा था।
0: वे ब्रह्मचारी की बातों और भंगिमाओं की नकल कर खूब हंसने लगे। साथियों ने भी मजा लिया। नकल करके वे बोलते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह भी बीत कर जब 7 सप्ताह पूरे हो गए तब स्वामी जी ने कहा, अब यहाँ और रहना ठीक नहीं होगा। सन्यासी के लिए एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहना ही अच्छा है। ये सुनकर एक शिष्य ने उन्हें अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने को निमंत्रित किया। स्वामी जी जब उक्त शिष्य के घर पहुंचे उस समय वो शिष्य शरीर पर तेल मल रहा था।
5: स्वामी जी तेल मलने से क्या कोई फायदा होता है?
4: हाँ बेटा, होता क्यों नहीं, एक छटाक तेल मलने पर एक पाव घी खाने जैसा लाभ मिलता है।
0: शिष्य झेप गया और तेल मलना बंद करके जल्दी से नहाने चला गया।
1: भोजन के बाद शिष्य ने बातचीत शुरू की। उसने कहा,
5: स्वामी जी आप सत्यनिष्ठा, साहस, उद्यम, निष्काम कर्म इत्यादि उपदेश देते हैं। इन उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अर्थोपार्जन के लिए नौकरी करते हैं, अतः हम इसे निस्वार्थ सेवा कैसे कह सकते हैं? नौकरी करना तो अनंत दासत्व है। इसके अतिरिक्त इन दिनों व्यवसायी जीवन ऐसा हो गया है कि एक व्यापारी के लिए सत्य और सरलता का निर्वाह करना एक प्रकार से असंभव हो गया है। स्वामी जी अगर हमें इस संसार में कार्य करना है तो अपनी नैतिकता का दृढ़ता से पालन करना संभव नहीं है।
4: देखो इस विषय पर मैंने भी बहुत चिंतन किया है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अपने चरित्र की रक्षा करते हुए कोई भी सचमुच अर्थोपार्जन करना नहीं चाहता है। यहां तक कि कोई भी इस विषय में विचार तक नहीं करता है और न कोई इसे समस्या के रूप में अनुभव ही करता है। ये हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष है।
5: फिर हमें क्या करना चाहिए? जीने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। नैतिकता की रक्षा करते हुए धन कमाना क्या संभव है?
4: मुश्किल की बात क्या है जानते हो? लोग समझते हैं शिक्षा का मतलब है नौकरी करना। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूँ कि यदि कोई शिक्षित युवा कृषि कार्य को अपना पेशा या व्यवसाय बना लेता है तो इसमें कोई क्षति नहीं है, मगर यदि तुम किसी को ऐसा करने की सलाह दो तो वो मुंह तोड़ जवाब देता है, तब मैंने इतनी शिक्षा क्यों अर्जित की? क्या देश में प्रत्येक के लिए किसान बनना आवश्यक है? हमारा देश पहले से ही किसानों से भरा पड़ा है, इसी से इसका विनाश हुआ है।
5: हाँ, ये बात तो है, पढ़ लिख कर आदमी हल क्यों चलाएगा?
4: राजर्षि जनक ने एक हाथ से हल पकड़ा और दूसरे से वेद का अध्ययन किया। हमारे प्राचीन ऋषिगण कृषक थे। इतना ही नहीं, देखो अमेरिका ने कृषि का विकास कर कितनी प्रगति की है। मेरा ये तात्पर्य नहीं कि हमें इस पेशे को उस प्रकार अपनाना चाहिए जिस प्रकार अपने देश के अशिक्षित करते हैं। हमें इसके विज्ञान को जानना चाहिए और अपने कृषि के विकास में उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक ज्ञान अर्जित कर हमें बुद्धिमान व्यक्तियों की भांति कार्य करना चाहिए। किंतु इन दिनों ज्यों ही गांव के लड़के अंग्रेजी की एक दो किताब पढ़ लेते हैं त्यों ही वे शहर की ओर भागते हैं। वे नगरीय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और नौकरी शुरू करते हैं। इसी से अन्य देशों की भांति भारतीयों ने प्रगति नहीं की है।
5: पर हमारे देश में किसानों की तो बहुत दुर्दशा है स्वामी जी।
4: इन सब का मुख्य कारण ये है कि हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ग्रामवासियों की नगरों में जाने की प्रवृत्ति ध्यान देने योग्य है। एक किसान का बेटा थोड़ी सी शिक्षा पा लेने के बाद अपनी पैतृक वृत्ति छोड़कर शहर में जाता है और गोरे लोगों के अधीन नौकरी करता है। यदि शिक्षित लोग गांव में रहने जाएं तो छोटे गांव भी विकसित हो जाएंगे और यदि कृषि कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो तो उपज भी अधिक होगी। इस प्रकार कृषक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी, वे अधिक और बेहतर चीजें खरीद सकेंगे और इस तरह हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप भी समाप्त हो जाएगा।
5: अभिशाप? वो क्या है स्वामी जी?
4: हमारी जात पात की प्रथा, ऊंच नीच की भावना, दूसरों को नीचा और हीन समझना। भाईचारे की भावना तो समाज में है ही नहीं। यदि तुम्हारी तरह के शिक्षित लोग गांव में जाएं, कृषि कार्य करें, ग्रामीणों से मिलें जुलें और उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार करें, घृणा ना करें, तो तुम देखोगे कि वे इतने अभिभूत हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देंगे। और हम लोगों के लिए आज अत्यावश्यक है जन साधारण को शिक्षा देना, अशिक्षित लोगों को धर्म के ऊंचे ऊंचे भाव बताना और पारस्परिक सहानुभूति तथा प्रेम का होना। और ये होगा।
5: वो कैसे होगा स्वामी जी?
4: क्यों, क्या तुम नहीं देखते हो? यदि कोई ग्रामवासियों से घुलता मिलता है तो शिक्षित व्यक्ति की संगति के लिए वे कितने उत्सुक रहते हैं। ज्ञान पिपासा प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। इसी से जब वे शिक्षित व्यक्ति का सहचर्य पाते हैं तो वे उसे घेर कर बैठ जाते हैं और वो जो कुछ भी कहता है उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं। यदि शिक्षित लोग ग्रामवासियों की इस मनोवृत्ति का लाभ उठावें, हर शाम उनकी एक टोली को अपने घर बुलाकर कहानियों और नीति कथाओं के द्वारा उन्हें शिक्षा दें, तो राजनैतिक आंदोलन कर हजारों वर्षों में जो हम नहीं कर सकेंगे उससे 100 गुना अधिक फल ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग 10 वर्षों में ही प्राप्त कर लेंगे।
1: दूसरे दिन 28 मार्च को स्वामी जी ने अलवर के भक्तों से विदा ली। अलवर में स्वामी जी के आचार्य भाव का विकास हुआ था। उन दिनों वे ज्ञान, भक्ति और भाव का निसंकोच भाव से मुक्त वितरण करते थे।
0: अलवर से निकलकर स्वामी जी वहां से 18 मील दूर पांडुपोल की तरफ चले। उनकी इच्छा तो पैदल चलने की थी, पर तीखी धूप होने से मित्रों ने मना किया और कहा, रथ नामक एक तरह की ढकी हुई बैलगाड़ी से चढ़कर जाना उचित है। तब वे उन लोगों की बातों को टाल नहीं सके। केवल यही नहीं, अलवर के समस्त अनुरागी भक्तों ने उनके साथ कम से कम 50-60 मील तक चलने की अनुमति मांगी। उन लोगों को छोड़ देने की स्वामी जी की इच्छा थी, परंतु सब आग्रह देखकर तथा नहीं कहने से उन लोगों को दुख होगा ये जानकर वे सहमत हुए।
1: पांडुपोल पहुंचकर उन लोगों ने स्थानीय हनुमान मंदिर के प्रांगण में रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन उन लोगों ने पैदल 16 मील दूर स्थित टाहला गांव को प्रस्थान किया। उस पर्वतीय पथ के वन से आच्छादित एवं जंगली पशुओं से भरपूर होने पर भी स्वामी जी की कभी गंभीर और कभी रसिकता पूर्ण मधुर बातों और सुमधुर संगीत से मुग्ध हो सबने आनंद पूर्वक रास्ता तय किया।

0: कहला में नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर के बगल में उन लोगों ने रात्र भर वास किया। विश्राम काल में स्वामी जी ने उन लोगों को समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, विष की उत्पत्ति, विषपान कर महादेव का मृत्युंजय नाम धारण करना आदि विषयों की एक नवीन व्याख्या की।
1: समुद्र का तात्पर्य है माया रूपी समुद्र। ये रूप रस गंधाधिमय माया रचित ये विचित्र संसार, यहां इंद्रियों के भोगने योग्य अनेक वस्तुएं हैं। इन सब का जितना भोग किया जाए उस भोग के फल स्वरूप उससे उतना ही विष उत्पन्न होता है। ये विष आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक है, अतएव सर्वत्यागी सन्यासी के निकट वो विष व्यर्थ एवं निस्तेज होता है। सन्यासी माया के इंद्रजाल में नहीं फंसते। माया का नाश कर मृत्यु के ग्रास से संसार की रक्षा करते हैं और सबको दिखा देते हैं कि माया जयी पुरुष मृत्यु को भी जीत लेते हैं।
2: ये कहकर स्वामी जी मृत्युंजय महादेव के सम्मुख ध्यान मग्न हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यात्रा शुरू हुई और 18 मील दूरवर्ती नारायणी नामक एक देवी स्थान में समाप्त हुई। नारायणी में हर वर्ष एक खास दिन को विशाल मेला लगता है और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से अनगिनत नरनारी एकत्रित होते हैं। यहाँ रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और एकाकी 16 मील रास्ता पार कर बसवा नामक रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए। वहां से उन्होंने जयपुर की यात्रा की। थोड़ी दूर पर बंदीकुई नामक स्टेशन पर अलवर का उनका एक पूर्व परिचित भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी के साथ जयपुर जाने के लिए वे भी उसी ट्रेन पे सवार हुए। जयपुर पहुंचने पर वो व्यक्ति स्वामी जी का एक चित्र खींचने के लिए बारंबार आग्रह करने लगा। अनिच्छा पूर्वक ही स्वामी जी को राजी होना पड़ा। परिवारजक रूप में स्वामी जी का यही प्रथम चित्र है।
0: इतने ज्ञानी होने के बावजूद स्वामी जी के मन में हमेशा ज्ञान की प्यास रहती थी। मौका पाते ही वे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर लेते थे। कोई विद्या सीखने के लिए उन्होंने कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। जहाँ भी जो भी मिले गुरु मानकर कुछ सीख लिया। जयपुर में स्वामी जी मात्र 2 सप्ताह ठहरे थे। इस अवधि में एक सुपंडित व्याकरण विद से परिचय होने पर उन्होंने उनसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ना शुरू किया। किंतु इस शास्त्र में विलक्षण पांडित्य होने पर भी पंडित जी की अध्यापन प्रणाली सहित प्रथम सूत्र की व्याख्या किए जाने पर जब उन्होंने देखा कि उनका तात्पर्य स्वामी जी को बोधगम्य नहीं हुआ, तब चौथे दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मुझे लगता है कि जब 3 दिनों में भी मैं आपको प्रथम सूत्र का ही अर्थ नहीं समझा सका तब मुझसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
2: इस प्रकार की बात से स्वभावतः विशेष लज्जित हो स्वामी जी ने दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जैसे हो अपने ही प्रयास से वे उक्त भाष्य का अर्थ समझेंगे और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे अन्य किसी और मन नहीं लगाएंगे। संकल्प कर एकांत स्थान में उसे गंभीर मनोयोग के प्रभाव से पंडित जी के द्वारा जो 3 दिन में नहीं हो सका उसे अपनी चेष्टा से स्वामी जी ने 3 घंटों में प्राप्त कर लिया। कुछ ही देर बाद वे पंडित जी के समक्ष उपस्थित हो उस भाष्य की व्याख्या करने पर प्रवृत्त हुए। तब उनकी सुचिंतित सरल एवं गूढ़ तर्कपूर्ण व्याख्या सुनकर पंडित जी स्तंभित हो गए। स्वामी जी बिना प्रयास के ही सूत्र पर सूत्र अध्याय पर अध्याय पढ़ने लगे। इस घटना का उल्लेख कर वे बाद में कहा करते,
1: मन में यदि प्रबल आग्रह हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। यहां तक कि पर्वत भी चूर चूर होकर धूलीकरण में बदला जा सकता है।
0: जयपुर में स्वामी जी संसार चंद्र सेन नामक एक सज्जन के घर पर 3-4 दिन ठहरे थे। वहां प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता था। स्वामी जी भी बिना थके देर रात तक उन्हें भजन कीर्तन आदि सुनाया करते थे।

सेन महाशय की पत्नी ज्योतिर्मयी देवी अत्यंत धर्म परायणा महिला थी। स्वामी जी के चरणों में बैठकर वे अपने को धन्य मानती थी। स्वामी जी ने जाते समय उन्हें गीतों की एक पुस्तक दी थी, जिसमें स्वरचित एवं स्वहस्त लिखित कई गीत थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आइए श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरव। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:10 से, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के दूसरे मंडल से सूक्त 1 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम हम लेकर आएंगे सुबह 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन प्रातः 8 बजे। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे बाल सभा कार्यक्रम में प्रातः 8:30 से। सुबह 9 बजे का समय होगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व सुनने का, भारतीय सशस्त्र सेनाएं। इस विषय पर आप सुनेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखली की बातचीत। 9:30 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे साहित्य संस्कार एवं राष्ट्रीय बौद्ध खलील उर रहमान और गजल। दिन में 10 बजे का समय होगा देश के संस्थान कार्यक्रम का। कल आप सुनेंगे BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पर केंद्रित देश के संस्थान कार्यक्रम। सुबह 10:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम केंद्रित रहेगा एस सत्यमूर्ति की जयंती पर। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम में दिन में 11 बजे। 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद आप सुनेंगे। कल इस कार्यक्रम का 23वां भाग हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। और अब रात्रि के ठीक 10 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 7 बजे हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।